ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलो हर्ट्ज पर। आज बुधवार है, सक संवत 1948 के ज्येष्ठ माह की छहवीं तिथि तदनुसार 27 मई 2026। इस समय सुबह की 5:57 होने को है। हमारी आज की पहली सभा अब आरंभ होती है।

0: ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। सवेरे के 6 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी में समाचार रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल शाम नई दिल्ली में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग के साथ 17वें विदेश मंत्रियों के द्विपक्षीय संवाद बैठक की सह अध्यक्षता की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि इसमें हिंद प्रशांत क्षेत्र, पश्चिम एशिया की स्थिति, वैश्विक और बहुपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। उन्होंने दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी की प्रगति की समीक्षा की। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक कल नई दिल्ली में संपन्न हुई। सदस्य देश वैश्विक ऊर्जा बाजारों में व्यवधान के समय एक दूसरे की ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए। भारत और रोमानिया ने कल नई दिल्ली में रक्षा सहयोग पर संयुक्त समिति की दूसरी बैठक की। इसमें दोनों देशों के बीच जारी रक्षा सहयोग की समीक्षा की गई और प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के बारे में बातचीत की गई। दोनों पक्षों ने साइबर सुरक्षा, सैन्य चिकित्सा सहयोग, संयुक्त प्रशिक्षण, क्षमता विकास और रक्षा औद्योगिक सहयोग पर आपसी रक्षा सहयोग योजना को अंतिम रूप दिया। भारत ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के बारे में चीन और पाकिस्तान के अवांछित संदर्भों को सिरे से खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत का रुख सुसंगत है और संबंधित पक्षों को इसकी जानकारी है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अविभाज्य अंग हैं और हमेशा रहेंगे। प्रवक्ता ने कहा कि किसी अन्य देश को इस पर टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी पर रोक के लिए अगले 6 महीने में ड्रोन रोधी प्रणाली स्थापित करेगी। राजस्थान में बीकानेर की सांचू सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल के जवानों को संबोधित करते हुए गृहमंत्री ने कल ये घोषणा की।
2: ड्रोन और अन्य उपकरणों के लिए भारत सरकार ड्रोन रोधी संयंत्र लगाने की शुरुआत अगले 6 माह में ही कर लेगी, परंतु ड्रोन उतरता तो भारत की भूमि में है, कौन इसके अंदर के मटेरियल को देश विरोधी कार्यों के लिए उपयोग करता है, इस पर हमारी पैनी नजर होनी चाहिए और इसके न्यूट्रलाइजेशन के लिए सिविल अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट पुलिस से हमारा जीवंत संपर्क होना चाहिए और परिणाम लक्षी कार्यवाही भी हमने करनी पड़ेगी।
1: सरकार ने प्याज का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1,270 रुपये से बढ़ाकर 1,580 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है। ये वृद्धि राज्य सरकारों के अनुरोध पर की गई है। नई दरें कल से लागू हो गई। अमेरिका के राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रशासन नासा ने चंद्रमा पर अपना केंद्र बनाने के लिए भेजे जाने वाले रोबोटिक लैंडर्स, हॉपिंग ड्रोन और अन्य वाहनों का विवरण जारी किया है। अमेरिका की वर्ष 2028 में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कार्यकाल समाप्त होने से पहले अमरीकियों को चंद्रमा पर उतारने की योजना है। चीन की भी वर्ष 2030 तक चंद्रमा पर मानव उतारने की योजना है। रेल मंत्रालय ने देश की पहली हाइड्रोजन ईंधन आधारित 10 कोच वाली DEMU रेलगाड़ी के संचालन को मंजूरी दे दी है। ये रेलगाड़ी जींद और सोनीपत के बीच अधिकतम 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। रेल डीजल या बिजली की जगह हाइड्रोजन फ्यूल सेल के जरिए ऊर्जा उत्पन्न करेगी। इसकी कुल क्षमता 1200 किलोवाट होगी। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकीय बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नावलेकर करेंगे। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव होंगे। पश्चिम बंगाल में एक विशेष अदालत ने मालदा के मोथाबाड़ी में न्यायिक अधिकारियों पर हमले के सिलसिले में 15 और लोगों को 5 जून तक राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण की हिरासत में भेज दिया है। आरोपियों को सोमवार देर रात मोथाबाड़ी और उसके आसपास के इलाकों में केंद्रीय एजेंसी द्वारा की गई छापेमारी के दौरान गिरफ्तार किया गया। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि वर्ष 2036 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी के भारत के दावे को ध्यान में रखते हुए योगासन को भविष्य के ओलंपिक खेलों की सूची में शामिल करने

0: के लिए प्रयास किए जाएंगे। डॉक्टर मांडविया ने नई दिल्ली में कहा कि अहमदाबाद में 4 से 8 जून तक पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप आयोजित की जाएगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलो हर्ट्ज पर। सवेरे के 6:05 हो रहे हैं। आइए सुने श्री रामचरितमानस। आज आप सुनेंगे एपिसोड संख्या 8। मुख्य गायक स्वर हैं सुधा मल्होत्रा और साथियों के, संगीत संयोजन सतीश भाटिया का।

श्री राम की प्रभुता असीम है, ऐसा समझकर गोस्वामी तुलसीदास अपने को उनका गुणगान करने में सर्वथा असमर्थ पाते हैं। अपनी विनयशीलता के अनुरूप गोस्वामी अपने को न तो कवि कहलाने योग्य मानते हैं, न ही सच्चिदानंद भगवान के गुणगान में चतुर और सक्षम पाते हैं। फिर भी मति अनुरूप राम गुण गावं। अपने पूर्ववर्ती बुद्धिमान प्राकृत कवियों का, जिन्होंने अपनी समर्थ भाषा में प्रभु चरित्रों का वर्णन किया है, तथा उनका भी जो वर्तमान में हैं और भविष्य में होंगे, उन सबको नमन करते हुए तुलसीदास ने रघुनाथ गाथा का आरंभ किया है।

अभी आपने सुना श्री रामचरितमानस, ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलो हर्ट्स पर। सवेरे के 6:15 हो रहे हैं। सुविचार।

भक्ति एक ऐसा भाव है जो मनुष्य को अहंकार से मुक्ति दिलाकर जीवन में सुकून और शांति प्रदान करता है। इस सुविचार के बाद आइए सुने भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदन।

जब तक मन में ईमानदारी, भक्ति और विश्वास है, तब तक हर कार्य में सफलता और शक्ति मिलती है। आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदन।

इस भक्ति रचना के साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदन अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलो हर्ट्ज पर। सवेरे के 6:45 हो रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। फिल्म संगीत में पहला गीत सुनिए श्रोताओं फिल्म कारवां से। आवाज़ें हैं लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी की, गीत के बोल मजरू सुल्तानपुरी के और संगीत है आर डी बर्मन का।

फिल्म संगीत का अगला गीत सुनिए श्रोताओं, फिल्म खुदा गवाह से आवाज़ें हैं अलका याग्निक मोहम्मद अजीज की, गीत के बोल आनंद बख्शी के और संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

फिल्म संगीत का आखिरी गीत सुनिए श्रोताओं, फिल्म जमीन आसमान से। आवाज़ है लता मंगेशकर की, गीत के बोल अनजान के और धुन है आर डी बर्मन की।

इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलो हर्ट्ज पर। सवेरे के 7 बज रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत।

मंजिल दूर सही लेकिन रास्ता तय करना जरूरी है। जो कल से सीखता है वही आज को बेहतर कर पाता है। जी हाँ, इसी पॉजिटिविटी के साथ हाजिर हो गए हैं हम लेकर आपका पसंदीदा कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत। जिनमें बातें होती हैं आपकी और हमारी और साथ खूबसूरत से नगमों का। तो चलिए आगाज करते हैं कार्यक्रम का इस पहले गीत के साथ।

बात अगर सवेरे की करें, सुबह की करें, तो जी हाँ, ठंडी हवा, फ्रेश मॉर्निंग और पक्षियों की चहचहाट, ये सब फिलहाल जो है हम सिर्फ सोच ही सकते हैं, क्योंकि बात अगर आज के माहौल की करें, आज की अभी की करें, तो अगर थोड़ा सा आप लेट उठने वालों में से हैं, तो आपकी मुलाकात जो है वो सीधे दोपहर से होती है। जी हाँ, गर्मियों की सबसे ज़्यादा 9 दिन, जिनमें हम कहें कि भीषण गर्मी जो है, जिससे हर कोई प्रभावित है, मनुष्य, जानवर, पक्षी, सभी के सभी। और इन्हीं अवधि के दौरान जो हम कह रहे हैं कि साइंटिफिक रीज़न की बात करें, तो सूर्य की किरणें जो सीधी पृथ्वी पर पड़ती है, और जिसे हम नौतपे के रूप में भी जानते हैं, और ऐसे में दोस्तों, थोड़ी सी लापरवाही बहुत बड़ा कारण बन सकती है आपकी हेल्थ को लेकर। तो ऐसे में अलर्ट रहना बहुत ज़रूरी है, और ख़ुद को सेफ रखना भी।

दोस्तों, प्रकृति का हर रूप मनुष्य के लिए संतुलन बनाए रखना होता है। जी हाँ, और इसी के चलते जो है प्रकृति का हर फेस जो है वो कहीं ना कहीं इंसानों के लिए जो है एक तरह से बेनिफिशियल ही होता है। जी हाँ, कई बार अगर अभी की बात करें तो साल के सबसे 9 दिन, गर्म 9 दिन, जी हाँ, यानी कि 25 मई से 2 जून की तक जो है इस दौरान सूर्य और पृथ्वी के बीच जो है वो दूरी बहुत कम होती है, जिससे कि सूर्य की किरणें सीधी और तेज़ पड़ती हैं, जिससे ज़मीन जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म रहती है। और इन दिनों प्रचंड गर्मी और लू से बचाव भी बेहद ज़रूरी है, और जिनके चलते कुछ सावधानियां हमेशा हमें रखनी चाहिए, जैसे खुद को हाइड्रेट रखें, धूप से बचाव रखें, दोपहर के समय बाहर ना निकलें, यदि बाहर जाना बहुत ज़रूरी हो तो आप खुद का बचाव कर सकते हैं, सर को ढक कर रख सकते हैं, और कपड़े भी हैं जहाँ तक हो आप कॉटन के पहन सकते हैं। इसी तरह से जो है कुछ आदतों में भी बदलाव कर सकते हैं, जैसे धूप से घर लौटने के बाद तुरंत जो है वो ठंडा पानी या कोल्ड ड्रिंक पीने से बचें, और जो बॉडी का टेम्परेचर है उसे भी

खाते हैं, धैर्य रखना सिखाते हैं, साथ ही साथ एक दूसरे के साथ सामंजस्य बिठाकर जीना भी सिखाते हैं। प्रकृति का हर रूप हमें जीवन की जीने के लिए एक अनमोल प्रेरणा देता है। और बातें करेंगे इसी की तरफ और भी, लेकिन फिलहाल के लिए ये म्यूजिकल ब्रेक।

आप हंसते रहिए, जिंदगी हसीन होती रहेगी, और शिकवे ही करेंगे तो जाहिर है जिंदगी बुरा ही मानेगी। जी हाँ दोस्तों, जीवन जो है वो जीने के लिए प्रेरणा की ज़रूरत होते हैं, और प्रेरणा की जब हम बात करें तो जी हाँ, प्रकृति से बढ़कर प्रेरणा कहीं नहीं मिल सकती। प्रकृति हमारे जीवन की सबसे बड़ी मार्गदर्शक होती है, और कई सारी विपरीत परिस्थितियों में भी मुस्कुरा कर आगे बढ़ना सिखा

दोस्तों, प्रकृति की हम बात कर रहे हैं और उसी की तरफ बात करें तो प्रकृति एक माँ की तरह, एक गुरु की तरह मनुष्य को हमेशा आगे बढ़ना सिखाते हैं। हर स्थिति, हर परिस्थिति से लड़ने की सीख देती हैं और उसी के चलते प्रकृति सिखाती है निरंतर चलते रहने की सीख। जी हाँ, नदियाँ, चट्टाने और बाधाओं से लड़कर भी कभी रुकती नहीं है, बल्कि अपने लिए रास्ता बनाते हुए हमेशा आगे बढ़ती रहती है। और साथ ही धैर्य और सहनशीलता का पाठ भी जो है प्रकृति हमें सिखाती है कि हमें जो है हर तरह से, हर परिस्थिति में शांत रहना चाहिए। पेड़ पौधों पर मौसम, तेज धूप, सर्दी, बारिश को सहकर भी हमें फल और छाया देते हैं। इसी तरह से त्याग और परोपकार का संदेश भी प्रकृति हमें देती है। सूर्य, हवा और पेड़ कभी भी अपना उपभोग खुद नहीं करते, वे हमेशा दूसरों की भलाई और जीवन के लिए काम करते हैं।

पतझड़ के मौसम में दोस्तों पत्ते झड़ने के बाद भी पेड़ कभी भी निराश नहीं होते, बल्कि वसंत आते ही फिर से नए जीवन और हरियाली से भर जाते हैं। यहाँ पर भी प्रकृति हमें कठिनाइयों में मुस्कुराना सिखाती है, सकारात्मक और संतुलन का ज्ञान भी देती है। प्रकृति में दिन में के बाद जो है वो रात और हर मौसम का चक्र बहुत ही संतुलित तरीके से चलता है, जो हमें जीवन में अनुशासन और संतुलन बनाए रखने की प्रेरणा देता है।

दोस्तों, प्रकृति हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो हमारा भी पर्यावरण की तरफ कुछ जिम्मेदारियां ज़रूर बनती हैं। और इस भीषण गर्मी में कुछ छोटे से उपाय अगर हम करें तो जी हाँ, एक बड़ा कदम बन सकते हैं। अगर गर्मियों में दोस्तों पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए हम जो है पानी की बर्बादी जितना हो सके उतना कम करें, और साथ ही एयर कंडीशन्स की जगह भी हम प्राकृतिक कूलिंग तरीकों का उपयोग करें, तो ये भी एक बहुत बड़ा कदम होता है। एक छोटे से कदम न सिर्फ बिजली और पानी की बचत करते हैं बल्कि बढ़ते तापमान यानी कि ग्लोबल वार्मिंग को भी कम करने में मदद करते हैं। गर्मी के मौसम में पर्यावरण की रक्षा करने और तापमान को नियंत्रित रखने के लिए कई सारे प्रयास किए जा सकते हैं। उन्हीं प्रयासों में अपने आसपास खाली जगह कहीं पर भी आपको दिखे तो वहाँ पर आप पौधे लगा सकते हैं। पेड़ हवा को शुद्ध करते हैं और तापमान भी कम करते हैं। अगर आपके आसपास जगह कहीं नहीं दिख रही है आपको, तो आप छत पर भी गमले लगा सकते हैं। पौधे लगाने से जो नीचे के कमरे हैं वहाँ पर भी तापमान कम रहता है।

एक बड़ी जिम्मेदारी हम सब की ये भी बनती है कि हम जो है जल का संरक्षण करें। जी हाँ, पौधों को आप सुबह शाम पानी दे सकते हैं, लेकिन आरओ और एसी से निकलने वाले जो पानी, वेस्ट पानी है, उसका उपयोग भी आपको करना चाहिए। जैसे पौधों में डालकर भी आप उसका उपयोग कर सकते हैं। शावर का कम इस्तेमाल करें, साथ ही ऊर्जा और बिजली की भी बचत करें। एसी का सीमित उपयोग करें। एसी चलाने से बहुत अधिक गर्मी और ग्रीन हाउस गैसेस जो निकलती हैं, इसके कंपैरेटिव आप जो है प्राकृतिक हवा और पंखों का उपयोग कर सकते हैं। और साथ ही साथ प्लास्टिक का भी कम यूज़ करें। सिंगल यूज़ प्लास्टिक को छोड़ने की कोशिश करें। प्लास्टिक की पानी की बोतलों की जगह आप तांबे या मिट्टी के, यानी कि मटके के बर्तन का इस्तेमाल कर सकते हैं। कपड़े के थैलों का भी प्रयोग कर सकते हैं। और फिलहाल के लिए इन्हीं सारी बातों के साथ आज का कार्यक्रम बस यहीं तक। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में नई बातें और नए गीतों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत, ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। सवेरे के 8 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से पहले समाचार प्रभात, उसके बाद मॉर्निंग न्यूज रिले किए जाएंगे।
1: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया। देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा।

0: मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से जनसंख्या आंकड़ों में परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। सर्वोच्च न्यायालय एसआईआर को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज फैसला सुनाएगा। सीबीएसई ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रही उन अफवाहों को खारिज किया जिनमें उसके ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम के उल्लंघन की बात कही गई थी। मौसम विभाग ने उत्तर भारत के अनेक राज्यों में तेज गर्मी का अनुमान व्यक्त किया और महाराष्ट्र के विदर्भ में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया। नासा ने चंद्रमा पर अपना केंद्र बनाने के लिए भेजे जाने वाले रोबोटिक लैंडर्स, हॉपिंग ड्रोन और अन्य वाहनों का विवरण जारी किया। और आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पहले क्वालिफायर मैच में गुजरात टाइटंस को 92 रन से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकी बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नवलेकर करेंगे। जनगणना आयुक्त के साथ साथ पूर्व आईएएस अधिकारी दुर्गा शंकर मिश्र, पूर्व आईपीएस अधिकारी बालाजी श्रीवास्तव और अर्थशास्त्री डॉ शमिका रवि को इस समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव के रूप में काम करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल 15 अगस्त को लाल किले से जनसांख्यिकी परिवर्तन पर उच्च स्तरीय समिति के गठन की घोषणा की थी।
1: मैं आज देश के सामने एक चिंता, एक चुनौती के संबंध में आगाह करना चाहता हूं। षड्यंत्र के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है, एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं और ये घुसपैठी मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। ये देश सहन नहीं करेगा और इसलिए एक हाई पावर्ड डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया।
0: इस समिति के कार्यों के बारे में और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता।
2: ये उच्च स्तरीय समिति अवैध अप्रवासन और अन्य अप्राकृतिक कारणों से पूरे देश में हो रहे जनसांख्यिकीय परिवर्तनों का व्यापक आकलन करेगी। ये धार्मिक और सामाजिक समुदायों के स्तर पर असामान्य जनसंख्या स्थानांतरण का भी विश्लेषण करेगी और इसके लिए एक योजनाबद्ध और समयबद्ध समाधान प्रस्तुत करेगी। समिति एक वर्ष के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। वहीं आवश्यकता पड़ने पर समिति का कार्यकाल 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है। अनुपम मिश्र के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल शाम नई दिल्ली में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वॉन्ग के साथ 17वें विदेश मंत्रियों के द्विपक्षीय संवाद बैठक की सह अध्यक्षता की। डॉ जयशंकर ने कहा कि इसमें हिंद प्रशांत क्षेत्र, पश्चिम एशिया की स्थिति, वैश्विक और बहुपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। उन्होंने दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी की प्रगति की समीक्षा भी की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत कनाडा आर्थिक साझेदारी का अगला अध्याय विश्वास पर आधारित होगा जिससे दोनों देशों की साझा समृद्धि सुनिश्चित होगी। कनाडा में आयोजित मंत्री स्तरीय सत्र को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच बढ़ते विश्वास से व्यापक आर्थिक साझेदारी के अंतर्गत नए व्यापार और निवेश के अवसरों पर कार्य हो रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था की गतिशीलता पर श्री गोयल ने कहा कि भारत अगले 3 दशकों तक विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बना रहेगा। सर्वोच्च न्यायालय निर्वाचन आयोग के मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज निर्णय सुनाएगा। ये याचिकाएं बिहार में पिछले साल जून में एसआईआर प्रक्रिया शुरू करने के निर्वाचन आयोग के फैसले के बाद दायर की गई थीं। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की पीठ ने मामले की सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रखा था। एक रिपोर्ट।
3: याचिकाओं में एसआईआर प्रक्रिया की वैधता को चुनौती दी गई थी। इसमें कहा गया था कि एसआईआर प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 326, जन प्रतिनिधित्व कानून 1950 और इनके अंतर्गत बनाए गए नियमों में निर्वाचन आयोग को दी गई शक्तियों के दायरे से बाहर थी। याचिकाकर्ताओं की ये भी दलील थी कि एसआईआर प्रक्रिया ने बड़ी संख्या में गरीब और विस्थापित लोगों को वोट देने के अधिकार से वंचित कर दिया। सुनवाई के दौरान सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर प्रक्रिया से प्रभावित मतदाताओं के बीच पारदर्शिता को

0: बढ़ावा देने और कठिनाई को कम करने के लिए अंतरिम निर्देश जारी किए थे। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने 1983 में बिहार में 5 लोगों की हत्या के मामले में कई दोषियों की सजा बरकरार रखते हुए कहा है कि इस घटना की क्रूरता न्यायिक अंतरात्मा को झकझोर देती है। न्यायमूर्ति संजय करोल और एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने कल कहा कि निचली अदालत और पटना उच्च न्यायालय दोनों ने सही कहा है कि इस मामले में किसी भी तरह की सहानुभूति या नरमी की गुंजाइश नहीं है। न्यायालय ने कहा कि घटना मार्च 1983 में मुजफ्फरपुर जिले के एक गांव में हुई थी, जहां कम से कम 58 लोगों की भीड़ ने चंद्रशेखर चौधरी के घर में आग लगा दी, जिसके बाद 5 लोगों की बेरहमी से हत्या की गई और कई लोग घायल हो गए थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने सोशल मीडिया पर किए गए इस दावे को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। CBSE ने स्पष्ट किया है कि उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए उपयोग की जाने वाली ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली में कोई सुरक्षा उल्लंघन नहीं हुआ है। बोर्ड ने कहा कि उत्तर पुस्तिकाओं के वास्तविक मूल्यांकन के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला पोर्टल पूरी तरह से एक अलग URL पर काम करता है। एक रिपोर्ट।
2: CBSE बोर्ड ने कहा है कि cbse.onmarks.co.in केवल एक टेस्टिंग साइट है जिसमें सैंपल डाटा होता है, जिसका इस्तेमाल पूरी तरह से आंतरिक टेस्टिंग और समीक्षा के उद्देश्यों के लिए किया जाता है और इसमें परीक्षा से संबंधित कोई भी वास्तविक जानकारी नहीं होती है। बोर्ड ने कहा है कि ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली शिकायतों के निवारण के साथ साथ मूल्यांकन में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए लागू की गई है। बोर्ड ने संबंधित पक्षों को आश्वस्त किया कि मूल्यांकन प्लेटफॉर्म की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कड़े और ठोस उपाय किए गए हैं। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
1: अमेरिका के राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रशासन नासा ने चंद्रमा पर अपना केंद्र बनाने के लिए भेजे जाने वाले रोबोटिक लैंडर्स, हॉपिंग ड्रोन और अन्य वाहनों का विवरण जारी किया है। एक रिपोर्ट।
2: अमेरिका की वर्ष 2028 में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कार्यकाल समाप्त होने से पहले अमरीकियों को चंद्रमा पर उतारने की योजना है। चीन की भी वर्ष 2030 तक चंद्रमा पर मानव उतारने की योजना है। मार्च में नासा ने वर्ष 2032 तक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर परमाणु और सौर ऊर्जा से संचालित एक स्थायी अड्डा बनाने के लिए $20 अरब के कार्यक्रम की घोषणा की थी। जेफ बेजोस की अंतरिक्ष कंपनी ब्लू ओरिजिन को इन मशीनों का निर्माण करने के लिए चुना गया है। समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
1: कोलकाता की एक विशेष अदालत ने मालदा के मोथाबाड़ी में न्यायिक अधिकारियों पर हुए हमले के मामले में 15 और लोगों को 5 जून तक राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA की हिरासत में भेज दिया है। इन आरोपियों को केंद्रीय एजेंसी द्वारा सोमवार देर रात मोथाबाड़ी और उसके आसपास के इलाकों में की गई छापेमारी के दौरान गिरफ्तार किया गया था। भारतीय वायुसेना ने अधिकारी काडर के तकनीकी शाखा में भर्ती के लिए अभियांत्रिकी स्नातक अभिक्षमता परीक्षा GATE के अंकों के आधार पर चयन करने की योजना बनाई है। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि GATE के अंकों के आधार पर उम्मीदवारों को वायुसेना चयन बोर्ड में परीक्षा के लिए सीधे चयनित किया जाएगा। रेल मंत्रालय ने देश की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली 10 डब्बों वाली DEMU रेलगाड़ी को चलाने की स्वीकृति दे दी है। यह निर्णय रेलवे क्षेत्र में हरित और टिकाऊ परिवहन को प्रोत्साहन देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हाइड्रोजन रेलगाड़ी के बारे में और जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी कृष्णकांत शर्मा।
3: यह रेलगाड़ी जींद और सोनीपत के बीच अधिकतम 75 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलेगी। इसमें 2 ड्राइवर पावर कार और 8 पैसेंजर कोच शामिल हैं, जिनकी कुल क्षमता 2500 यात्रियों की है। इसकी कुल विद्युत क्षमता 1200 किलोवाट है। यह ट्रेन शून्य कार्बन उत्सर्जन करती है। इसकी परिचालन गति 110 से 140 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। इसमें यात्रियों के लिए आधुनिक डिजिटल डिस्प्ले, ऑटोमेटिक दरवाजे और एयर कंडीशनिंग जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सिक्किम की यात्रा के दूसरे दिन आज नाथुला दर्रे का दौरा करेंगी। राष्ट्रपति नाथुला में तैनात सैनिकों से बातचीत करेंगी। वरिष्ठ सैन्य अधिकारी उन्हें क्षेत्र में जारी विभिन्न गतिविधियों की जानकारी देंगे। राष्ट्रपति बाबा हरभजन मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगी।

0: अमरीकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने अमरीका और ईरान के बीच मध्यस्थता के लिए पाकिस्तान की भूमिका की आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि इसराइल के प्रति पाकिस्तान के लंबे समय से चले आ रहे विरोध के कारण उसे तटस्थ नहीं माना जा सकता। श्री ग्राहम ने दावा किया कि ईरानी सैन्य विमान पाकिस्तानी हवाई अड्डे का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसराइल के बारे में पाकिस्तानी नेताओं की टिप्पणियां चिंताजनक हैं। ये टिप्पणियां पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ के एक टीवी चैनल को दिए साक्षात्कार में अब्राहम समझौते में पाकिस्तान के शामिल होने से इनकार के बाद आई हैं। मौसम विभाग ने उत्तर भारत के अनेक राज्यों में तेज गर्मी का अनुमान व्यक्त किया है और महाराष्ट्र के विदर्भ में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है और अगले दो से तीन दिनों तक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, ओडिशा, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी भीषण गर्मी की आशंका व्यक्त की है। वहीं केरलम में मॉनसून एक या दो दिन की देरी से आ सकता है। आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कल पहले क्वालिफायर मैच में गुजरात टाइटंस को 92 रन से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। 255 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए गुजरात टाइटंस 162 रन पर सिमट गई। प्रतियोगिता में आज सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल राजस्थान के बीच एलिमिनेटर मैच खेला जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। और लीजिए अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
1: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों ने क्वाड समूह की एकजुटता और सीमावर्ती क्षेत्रों में घुसपैठ रोकने के लिए सख्ती को सुर्खियों में जगह दी है। साथ ही कई स्थानीय मुद्दे भी मुखपृष्ठ पर प्रमुखता से प्रकाशित किए गए हैं। वीर अर्जुन की सुर्खी है, क्वाड हिंद प्रशांत क्षेत्र में बढ़ाएगा निगरानी। पत्र ने भारत, अमरीका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्रियों की तस्वीरों को भी समाचार के साथ प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर ने घुसपैठ से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति के गठन संबंधी अमित शाह के ऐलान को सुर्खी बनाया है। पंजाब केसरी ने अपने संपादकीय को शीर्षक दिया है, धर्मशाला नहीं है भारत। पत्र लिखता है, जनसांख्यिकी संरचना बदल जाने से स्थानीय समुदायों में ये भावना बढ़ रही है कि घुसपैठिए सरकारी योजनाओं और राजनीतिक संरक्षण का लाभ उठा रहे हैं, जिससे भाषा और भूमि को लेकर तनाव बढ़ रहा है। जनसत्ता ने दिल्ली में सीएनजी के दाम 2 रूपये प्रति किलोग्राम और बढ़ाए जाने को पहली खबर बनाया है। अमर उजाला ने भी इस खबर को पहले पन्ने पर सबसे ऊपर जगह दी है, जबकि दैनिक ट्रिब्यून ने दिल्ली रेस क्लब को राहत न मिलने और जिमखाना पर सरकार के कुछ नर्म रुख को पहली खबर बनाया है।
0: और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से जनसंख्या आंकड़ों में परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। सर्वोच्च न्यायालय एसआईआर को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज फैसला सुनाएगा। सीबीएसई ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उन अफवाहों को खारिज किया है जिनमें उसके ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम के उल्लंघन की बात कही गई है। मौसम विभाग ने उत्तर भारत के अनेक राज्यों में तेज गर्मी का अनुमान व्यक्त किया। महाराष्ट्र के विदर्भ में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी। और आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पहले क्वालिफायर मैच में गुजरात टाइटंस को 92 रन से हराकर फाइनल में जगह बनाई। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम वीसी प्रमोद। द हेडलाइंस। सेंटर फॉर्म्स हाई लेवल कमिटी टू स्टडी डेमोग्राफिक चेंज कॉज्ड बाय इन्फिल्ट्रेशन एंड अदर रीजंस। सुप्रीम कोर्ट टू डिलीवर इट्स वर्डिक्ट टुडे ऑन पिटिशंस चैलेंजिंग स्पेशल इंटेंसिव रिविजन ऑफ इलेक्टोरल रूल्स। CBSE rejects claim circulating on social media about breach of its on-screen marking system, saying it was only testing site and not actual platform. IMD issues red alert for severe heat wave conditions in Madhya Pradesh, Uttar Pradesh and Vidarbha today.

आपकी नई सुबह इतनी सुहानी हो जाए, दुखों की सारी बात पुरानी हो जाए, दे जाए इतनी खुशियाँ यह नया दिन कि खुशी भी आपकी दीवानी हो जाए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अभिनंदन, स्वागत, सुप्रभात, नमस्कार।

0: बिल्कुल श्रोताओं, 27 मई का आज दिन है और आज के इस अंक के साथ हाजिर हैं हम सभी। तो कार्यक्रम नमस्कार में एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। और इस कार्यक्रम में ढेर सारी बातें करेंगे श्रोताओं, लेकिन पहले आपको करवाते हैं हमारी टीम से परिचय। ट्रांसमीटर से हमारा साथ दे रहे हैं नरेंद्र सिंह राठौड़ और प्रकाश पंवार।
1: कंट्रोल रूम से कंट्रोलिंग कर रहे हैं विक्रम सिंह भाटी।
0: अनाउंसर ऑन ड्यूटी हमारे साथ है आकांक्षा वैष्णव।
1: और एफएम पर हमारे साथ हैं उद्घोषक बलवीर सिंह।
0: श्रोताओं नमस्कार, प्रोग्राम के प्रोग्राम प्रोड्यूसर है संजय व्यास।
1: कार्यक्रम का संयोजन किया है राजेश नामरोड़ ने।
0: और इन सभी के साथ मैं सूफिया खान
1: और मैं मीता मुल्तानी।
0: और इसी के साथ श्रोताओं, गीत नए नए वेले के तहत सुनते हैं ये पहला गीत।

बल्कि अपनी पूरी तैयारी के साथ मिलती है। तो इसी के साथ मैं आपको सुनाती हूँ एक प्रेरणादायक कहानी। एक गांव में दो किसान रहते थे। एक दिन दोनों के बीच शर्त लगी कि अगले 6 वर्षों में कौन सबसे ज्यादा फसल उगाकर कमाएगा। पहले किसान ने जैसे ही बीज बोए, कुछ ही हफ्तों में फसल लहलहाने लगी। वह एक साल में दो दो फसलें उगाने लगा। गांव वाले उसकी बहुत तारीफ करने लगे। दूसरा किसान, उसने बीज बोए लेकिन महीनों तक खेत में कोई हरियाली नहीं आई। उसने फिर से मेहनत की, पानी दिया लेकिन फिर भी कुछ नहीं उगा। अब धीरे धीरे गांव वाले उसका मजाक उड़ाने लगे। पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे साल भी मित्रों यही हुआ। पहले किसान के खेत में फसलें कटती रहीं लेकिन दूसरे किसान के खेत में केवल सन्नाटा ही सन्नाटा पसरा रहा। 4 साल बीत गए लेकिन दूसरे किसान ने हार नहीं मानी। वह लगातार खेत की देखभाल करता रहा। 5वें साल ऐसा हुआ कि खेत से छोटे छोटे पौधे बाहर आए और जब 6ठा साल आया तो खेत में 100-100 फीट ऊंचे बांस के पेड़ खड़े हुए। असल में दूसरे किसान ने जो बीज बोए थे श्रोताओं, वे चाइनीज बांस के बीज थे। शुरुआती वर्षों में वह पौधा अपनी जड़ों को मजबूत कर रहा था लेकिन जब उसने 6ठे साल अपनी फसल बेची तो उसने पहले किसान से कई गुना ज्यादा मुनाफा कमाया। तो श्रोताओं, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। सफलता हमेशा तुरंत नहीं मिलती, कभी कभी हमें अपनी जड़ें मजबूत करने में समय लगता है। लेकिन आप परिणाम की चिंता नहीं करें। जब आप सही दिशा में मेहनत कर रहे हों तो लोगों की बातों में न आए अपना काम करते रहना ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। यदि हम धैर्य और निरंतरता के साथ कार्य करें तो की गई मेहनत का परिणाम हमेशा शानदार होता है। मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाती मित्रों।

श्रोताओं, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का इस बेहतरीन सी गीत के बाद। और श्रोताओं, हम बात कर रहे थे कि हार जो है वो हमें ये सिखाती है कि जीतना कितना ज़रूरी है। और जीत तभी मिलेगी श्रोताओं जब छोटी छोटी गलतियां जो हैं हम करेंगे, क्योंकि गलतियां हमें काफ़ी कुछ सिखाती है।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं गाने नए नवेले, और इन नए नवेले गानों के साथ हम ये बात करें कि हमारे जीवन में कौन सी बातें ऐसी होनी चाहिए जिनका ध्यान रखते हुए हम हमेशा खुश रह सकते हैं। तो मित्रों, यदि आप जीवन में सुख, शांति और सफलता पाना चाहते हैं तो चार बातें मुख्य रूप से हमेशा ध्यान रखें। पहली बात, अपनी चीजों से संतुष्ट रहें, क्योंकि संतुष्टि जीवन में हमेशा इंसान को संतोष और सुख का आभास कराती है। दूसरी, स्वतंत्रता के साथ जिएं, तो हमेशा अपने आप को आप खुला खुला महसूस करोगे। तीसरी, परिवार के करीब रहें, ताकि परिवार में साथ रहकर जो सुख प्राप्त हमें मिलता है वह सबसे सच्चा सुख है। और चौथी, अच्छे लोगों से मित्रता करें। यदि हमारे मित्र अच्छे होंगे तो वह हमें सही राय देंगे, हमें हमेशा मोटिवेट करेंगे। और इन चार बातों के साथ श्रोताओं, यदि हर काम हम सकारात्मक सोच के साथ करेंगे तो हमारा जीवन जरूर सफल होगा। तो

क्रोध नहीं हो सकती, और जब हम इस आराम से निकलेंगे तभी तो छू पाएंगे ऊंचाइयों को। यानी कंफर्ट जोन से निकलना जो है वो बेहद ज़रूरी है। याद कीजिए अपने बचपन को, जब हमने साइकिल चलाना सीखा था। लगता था उस टाइम कि अब नहीं चला पाएंगे क्योंकि बार बार गिर जो जाते थे, लेकिन जब बैलेंस बना तो ऐसा बना कि सब कुछ सीख गए, वो भी फटाफट से। इसीलिए खुद की सोच का बदलाव ज़रूरी है। अगर हम डर का सोचकर कुछ नहीं करेंगे तो लाइफ में कभी भी चेंज नहीं आएगा। इसीलिए हमेशा अपने डर को दूर भगाना ज़रूरी है।

श्रोताओं, अक्सर ना हमें अपनी पुरानी आदतों और पुराने ढर्रे में रहना काफ़ी पसंद होता है क्योंकि वो हमारा कंफर्ट जोन जो बन जाता है। लेकिन दोस्तों, अगर कंफर्ट जोन में रहकर कभी हमारी

श्रोताओं, जैसा अभी हमने सुना कि मितवा तो ये जो मीठी वाणी है, प्रेम से बढ़कर हम कहते हैं कि क्या है, तो प्रेम से बढ़कर त्याग है, दौलत से बढ़कर मानवता है, परंतु सुंदर रिश्तों से बढ़कर इस दुनिया में कुछ भी नहीं। इसलिए हमेशा अपने रिश्ते अच्छे बनाइए, मधुर बनाइए, अपने अच्छे दोस्त बनाइए। जरूरी नहीं कि मिठाई खिलाकर ही हम दूसरों का मीठा मुंह कर सकते हैं। अगर आप मीठा बोलकर भी लोगों को खुशियां दे सकते हैं तो हमेशा मीठी वाणी बोलिए। कहते हैं ना, मीठी वाणी बोलिए तो हमेशा आप दूसरों को अपनी मुस्कुराहट

और श्रोताओं, अब 9 बजने वाले हैं और हम रुकेंगे एक न्यूज ब्रेक के लिए और 9:10 पर फिर से हाजिर होंगे कार्यक्रम नमस्कार लेकर।

0: कार्यक्रम नमस्कार जारी रहेगा। ये आकाशवाणी का जोधपुर केंद्र है। सवेरे के 9 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आकाशवाणी जयपुर से हिंदी में प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे।
1: आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से उत्पन्न जनसांख्यिकीय परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। राज्य में जल संरक्षण को नई गति देने के लिए मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 के लिए 688 करोड़ रुपए से अधिक की वित्तीय स्वीकृतियां जारी। प्रदेश का पहला आदर्श स्ट्रीट वेंडिंग जोन जयपुर में बनेगा। रेहड़ी पटरी वालों का कामकाज व्यवस्थित हो सकेगा। और प्रदेश में प्रचंड गर्मी के दौर के बीच कई शहरों में दिन और रात के तापमान के बीच केवल 10 से 15 डिग्री सेल्सियस का ही अंतर देखा जा रहा है।

0: समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले आबादी बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। ये समिति सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नावलेकर की अध्यक्षता में बनाई गई है। इसमें जनगणना आयुक्त मृत्युंजय कुमार के साथ दुर्गा शंकर मिश्रा, बालाजी श्रीवास्तव और डॉ शमिका रवि को सदस्य नियुक्त किया गया है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि ये समिति अवैध प्रवासन और अन्य कारणों से पूरे देश में हो रहे जनसांख्यिकीय बदलावों का व्यापक आकलन करेगी। ये धार्मिक और सामाजिक समुदायों के स्तर पर असामान्य जनसंख्या स्थानांतरण का भी विश्लेषण करेगी और इसके लिए एक योजनाबद्ध और समयबद्ध समाधान प्रस्तुत करेगी। समिति एक साल में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पिछले साल लाल किले से अपने स्वतंत्रता दिवस भाषण में इस तरह की समिति बनाने की घोषणा की थी।
1: देश के सामने एक चिंता, एक चुनौती के संबंध में आगाह करना चाहता हूं। षड्यंत्र के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है, एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं और ये घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। ये देश सहन नहीं करेगा और इसलिए एक हाई पावर डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया।
0: राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 के दूसरे और तीसरे चरण के लिए करीब 688 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृतियां जारी की है। इससे जल संरक्षण और भूजल संवर्धन कामों को गति मिलेगी। जल ग्रहण विकास और भू संरक्षण विभाग की निदेशक कल्पना अग्रवाल ने बताया कि अभियान के दूसरे चरण के लिए इससे पहले भी 300 करोड़ रुपए की राशि जारी की जा चुकी है। उन्होंने बताया कि इससे प्रदेश भर में जल संरक्षण और जल ग्रहण विकास से जुड़े कामों को व्यापक स्तर पर क्रियान्वित किया जाएगा। इस बीच प्रदेश में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत श्रमदान कार्यक्रम और अन्य जन जागरूकता गतिविधियां हो रही हैं। कल कोटा, जोधपुर, जैसलमेर, बारा, पाली, हनुमानगढ़ और सवाईमाधोपुर सहित अन्य जिलों में हुए कार्यक्रमों में जल संरक्षण के लिए सामुदायिक सहभागिता का संदेश दिया गया। प्रदेश में औद्योगिक इकाइयों में कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट CETP स्थापित करने के लिए 150 करोड़ रुपए तक का अनुदान दिया जाएगा। रीको और नॉन रीको औद्योगिक क्षेत्रों में हाइब्रिड एन्यूटी मॉडल पर आधुनिक तकनीक वाले जीरो लिक्विड डिस्चार्ज वाले प्लांट लगाए जाएंगे। उद्योग विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव शिखर अग्रवाल ने बताया कि प्रदेश में ज्यादातर औद्योगिक इकाइयों में रिसाइक्लिंग प्रणाली की कमी है, जिससे पानी का दोबारा उपयोग सीमित हो जाता है। नई योजना के तहत लगने वाले प्लांट से जल का पुनर्उपयोग हो सकेगा। योजना की गाइडलाइन जारी कर दी गई है। कोटा के न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल और जेके लोन अस्पताल में हाल ही में हुई प्रसूताओं की मौत के मामले में ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन को इसका कारण बताना तथ्यात्मक रूप से सही नहीं माना गया है। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खेवसर ने बताया कि कुछ मीडिया संस्थानों ने ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन को सीधे तौर पर मौत का कारण बताया है, जबकि विशेषज्ञों के अनुसार ऐसा कोई निष्कर्ष प्रमाणित नहीं हुआ है। उन्होंने बताया कि औषधि नियंत्रण विभाग ने विभिन्न दवाइयों और चिकित्सा उपकरणों के 37 सैंपल जांच के लिए भेजे हैं। श्री खेवसर ने बताया कि अब तक मिली रिपोर्ट्स में सभी दवाएं मानक गुणवत्ता वाली पाई गई हैं।
2: ये जो प्रसूताओं की जो डेथ हुई है वो इस इंजेक्शन के कारण नहीं हुई है, जिसके अंदर ऑक्सीटोसिन नहीं था। अभी जो है इक्विपमेंट्स की जो है कोलकाता से रिपोर्ट आएगी, हमें मालूम पड़ेगा कि उसके अंदर कोई कमी रही है और उसको हमारे पास रिपोर्ट कुछ दिनों में आ जाएगी तो हम इसके बारे में बता पाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय भी इस ये जो प्रसूताओं की डेथ हुई है उसको बहुत गंभीर तरीके से उन्होंने लिया है और वो पर्सनली इसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि जांच होके जो एक्चुअल कारण है उसके बारे में हमें मालूम पड़े।
0: ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश का पहला आदर्श स्ट्रीट वेंडिंग जोन जयपुर में बनेगा। ये जोन जवाहर नगर में बनाया जाएगा। इसके लिए नगर निगम ने जगह चिन्हित कर तैयारियां शुरू कर दी हैं। गौरतलब है कि शहर में रेहड़ी पटरी वालों को व्यवस्थित करने के लिए 27 वेंडिंग जोन चिन्हित किए गए हैं। मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना के तहत इन जोनों में बिना किसी गारंटी के आसान ऋण और बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। इससे 5,000 से ज्यादा स्ट्रीट वेंडर्स को फायदा होगा। केंद्रीय युवा कार्य

0: कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि योगासन को ओलंपिक खेलों में शामिल करने के प्रयास किए जाएंगे। कल नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि साल 2036 की ओलंपिक खेलों की मेजबानी के भारत के दावों को ध्यान में रखते हुए ये कोशिश की जाएगी। डॉ मांडविया ने बताया कि पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप अगले महीने अहमदाबाद में होगी। 4 से 8 जून तक इसका आयोजन किया जाएगा।
1: योग ये हमारे देश की संस्कृति भी है, हमारी जीवन शैली भी है। आज से सदियों पहले योग भारत से निकल के सारे दुनिया में गया है। फिर से योगासना की फर्स्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप करके उसको पुनः भारत में एक बड़ा कार्यक्रम के रूप में आयोजित करेंगे। वर्ल्ड चैंपियनशिप है, अभी प्रारंभ भारत से कर रहे हैं और सारी दुनिया के अलग अलग कंट्री में उसको भविष्य में करा जाएगा।
0: प्रचंड गर्मी के कारण प्रदेश में कई शहरों में दिन और रात के तापमान के बीच केवल 10 से 15 डिग्री सेल्सियस का अंतर देखा जा रहा है। कल 5 शहरों में दिन का पारा 45 डिग्री से ऊपर रहा। श्रीगंगानगर 47 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे गर्म रहा। उधर कोटा में रात का तापमान 32 डिग्री से ऊपर मापा गया। हमारे संवाददाता ने बताया कि पिछले कई दिनों से अधिकतर स्थानों पर दिन का तापमान 40 डिग्री के पार बना हुआ है। वहीं कुछ जिलों में पारा 44 से 46 डिग्री के बीच मापा जा रहा है। झुलसाने वाली गर्मी से लोग बेहाल हैं।
2: तेज धूप और गर्म हवाओं ने लोगों की परेशानियां बढ़ा दी है। दिन में सड़कों पर आवाजाही कम दिखाई दे रही है, वहीं रात के समय भी गर्मी से राहत नहीं मिल पा रही। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के कई इलाकों में अगले कुछ दिनों तक हीट वेव की स्थिति बने रहने के आसार हैं। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
0: मौसम विभाग के अनुसार कल से नए पश्चिमी विक्षोभ के असर से प्रदेश के कुछ हिस्सों में आंधी बारिश की गतिविधियां शुरू हो सकती हैं। इस बीच झुंझुनू में कल दिन भर तेज गर्मी और उमस के बाद शाम को कुछ देर तेज बारिश हुई। ईद उल अजहा का पर्व कल मनाया जाएगा। ये त्योहार कुर्बानी और त्याग का प्रतीक माना जाता है। हर साल ये पर्व इस्लामिक कैलेंडर के आखिरी महीने जिल हज की 10 तारीख को मनाया जाता है। ईद उल अजहा के मौके पर ईदगाह और अन्य मस्जिदों में विशेष नमाज सामूहिक रूप से अदा की जाएगी। इस बीच हज यात्रा 2026 में भारत सहित दुनिया भर से लाखों जायरीन सऊदी अरब के अराफात मैदान में इकट्ठा हुए। एहराम पहने अकीदतमंदों ने निमरा मस्जिद में एक साथ नमाज अदा की। जायरीन आज कुर्बानी और शैतान को पत्थर मारने की रस्म के लिए मीना पहुंचेंगे। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने स्पष्ट किया है कि उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन की ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली में किसी तरह का सुरक्षा उल्लंघन नहीं हुआ है। CBSE ने कहा कि वास्तविक मूल्यांकन कार्य के लिए उपयोग किए जा रहे पोर्टल पर ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है। बोर्ड ने कहा कि ये मार्किंग प्रणाली पारदर्शिता बढ़ाने के लिए लागू की गई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से उत्पन्न जनसांख्यिकीय परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। राज्य में जल संरक्षण को नई गति देने के लिए मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 के लिए 688 करोड़ रूपये से अधिक की वित्तीय स्वीकृतियां जारी। प्रदेश का पहला आदर्श स्ट्रीट वेंडिंग जोन जयपुर में बनेगा। रेहड़ी पटरी वालों का कामकाज व्यवस्थित हो सकेगा। और प्रदेश में प्रचंड गर्मी के दौर के बीच कई शहरों में दिन और रात के तापमान के बीच केवल 10 से 15 डिग्री सेल्सियस का ही अंतर देखा जा रहा है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
3: फिर से स्वागत है श्रोताओं आपका मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम नमस्कार में। और अब जानते हैं कि आज का दिन इतिहास में क्यों है खास।
4: श्रोताओं, वर्ष 1937 में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में दुनिया के सबसे प्रसिद्ध गोल्डन गेट ब्रिज को पहली बार पैदल यात्रियों के लिए खोला गया था आज ही के दिन।
3: साल 1951 की श्रोताओं, आज के दिन भारत के मुंबई में देश के सबसे प्रसिद्ध एक्वेरियमों में से एक तारा पूर्वाला एक्वेरियम का उद्घाटन हुआ था। समय के साथ इसमें काफी परिवर्तन भी किए गए और इसके नवीनीकरण के बाद आधुनिक सुविधाओं के साथ फिर से 3 मार्च को खोला गया 2015 में और बाद में नई प्रजातियों के साथ अप्रैल 2025 में भी इसको खोला गया।

श्रोताओं, वर्ष 2010 और दिन था आज का, यानी 27 मई को भारत ने उड़ीसा के चांदीपुर में बालासोर जिले में परमाणु तकनीक से लैस धनुष और पृथ्वी 2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया। पृथ्वी 2 मिसाइल धरती से धरती पर मारक क्षमता वाली बैलिस्टिक मिसाइल है मित्रों, जिसकी रेंज 350 किलोमीटर है, जबकि धनुष पृथ्वी मिसाइल का नौसेना संस्करण है।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर, माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार सुबह 11 बजे मन की बात।
1: श्रोताओं, कार्यक्रम में अब बात काम की बात। श्रोताओं, अक्सर हम खाना खाने के बाद जो हैं वो ज़्यादातर बेड पर बैठकर फ़ोन में मशगूल हो जाते हैं या फिर सो जाते हैं और फिर शुरू होता है पेट में गैस का काम और वज़न भी तो हमारा बढ़ ही जाता है। तो एक काम जो इन दोनों से हमको राहत दिलाए वो है भोजन करने के बाद वॉक। हमेशा से शरीर के लिए फायदेमंद बताई गई है ये वॉक जो है श्रोताओं, वो कैलोरी बर्न करके वजन बढ़ाने से हमको बचाती है और कई बीमारियों से भी बचाती है। इसके और फायदों की अगर हम बात करें तो पाचन हमारा बेहतर होता है, बॉडी का मूवमेंट होने पर आंतों में जो खाने का मूवमेंट होता है वो तेज हो जाता है जिससे खाना जल्दी और आसानी से पचता है।
2: साथ ही श्रोताओं, खाना खाने के बाद वॉक या बॉडी में मूवमेंट होने पर ब्लड शुगर का खतरा कम हो जाता है और हृदय रोगों का खतरा ये भी घटाने का ही काम करती है मॉर्निंग खाना खाने के बाद वॉक। अब इसमें श्रोताओं कुछ बातों का ध्यान भी जरूरी है, जैसे खाना खाने के बाद कभी भी तेज नहीं दौड़ना चाहिए या ज़्यादा तेज़ी से ना चलें, हमेशा सामान्य या हल्की गति से टहलें। भोजन के तुरंत बाद के बजाय 10-15 मिनट बाद आप टहलना शुरू करें। तो जब भी खाना खा लें उसके बाद वॉक जरूर करें, सेहत भी बनी रहेगी और मूड भी फ्रेश रहेगा। तो साथ ही मूड को और अच्छा करते हैं ये प्यारा सा गीत सुनकर।

0: श्रोताओं, आप सभी का स्वागत है मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम नमस्कार में। आज अब हम बात करते हैं कुछ खास। तो आज की खास बात हम कर रहे हैं मारवाड़ का महाकुंभ कहे जाने वाले भोगीशैल परिक्रमा की। श्रोताओं, जोधपुर की भोगीशैल परिक्रमा मारवाड़ की एक ऐतिहासिक और आध्यात्मिक आस्था यात्रा है। यह करीब 100 साल पुरानी परंपरा है, जिसमें श्रद्धालु भीषण गर्मी, जो अभी नौतपा भी चल रहा है, उसमें भी लगभग 11 किलोमीटर की पैदल यात्रा करते हैं। यह यात्रा हर 3 साल में एक बार आयोजित की जाती है और इस वर्ष यह 25 मई से शुरू होकर 31 मई तक चलेगी। 7 दिनों तक चलने वाली इस पदयात्रा में श्रद्धालु दुर्गम पहाड़ियों और कठिन रास्तों से गुजरते हुए कुल 11 किलोमीटर की परिक्रमा पूरी करते हैं। दोस्तों, इस दौरान भक्त जोधपुर के 50 से अधिक प्राचीन मंदिरों और धार्मिक स्थलों के दर्शन करते हैं। इस यात्रा का शुभारंभ शहर के ऐतिहासिक घंटाघर पर ध्वज पूजन के साथ होता है और उसके बाद पड़ाव आगे से आगे बढ़ता रहता है। इस यात्रा में आम श्रद्धालुओं के साथ साथ जोधपुर राज परिवार के सदस्य भी पूरे उत्साह के साथ हिस्सा लेते हैं और श्रद्धालुओं का जो सेवा करने वाले लोग हैं वो भी पूरे तन मन धन से सेवा करते हैं।
1: और ये जो मारवाड़ के कुंभ के रूप में प्रसिद्ध भोगीशैल परिक्रमा है, श्रोताओं, उसका जो आज का पड़ाव है वो सुबह 4 बजे से रवाना होकर चौपासनी से रवाना होकर दंताल माताजी मंदिर, श्रीजी बैठक, अरना झरना, भद्रेशिया महादेव मंदिर और कदमकंडी होते हुए बरली भैरव जी मंदिर पड़ाव स्थल पहुंचेगी। और श्रोताओं, परिक्रमा मार्ग पर संस्थाओं ने जो है वो श्रद्धालुओं के लिए अल्पाहार, चाय, फलाहार, चिकित्सा और पेयजल की व्यवस्थाएं भी की है।

0: दोस्तों, आज बुधवार है और आज के हमारे सेगमेंट इतिहास में हम बात करते हैं किसी एक ऐतिहासिक जगह के बारे में। और आज हम बात करेंगे धरती के स्वर्ग कहे जाने वाले कश्मीर की ऐसी जगह जिसे दुनिया परियों का निवास भी कहती है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक पहचाना आपने। आज हम बात करेंगे परी महल की, जो जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में जबरवान पर्वत श्रृंखला की चोटी पर स्थित एक 7 मंजिला सीढ़ीदार मुगल गार्डन है। इसका निर्माण लगभग 1650 ईस्वी में मुगल सम्राट शाहजहां के सबसे बड़े बेटे दारा शिकोह ने करवाया था।
1: और दारा शिकोह ने इसे खगोल विज्ञान और ज्योतिष की पढ़ाई के लिए केंद्र के रूप में जो है वो विकसित किया था। और यहाँ की जो मेहराबदार दीवारें हैं श्रोता,

0: और सुंदर बगीचे हैं, प्राचीन पत्थर के नक्काशीदार गलियारे इसकी जो ऐतिहासिक भव्यता है उसको काफ़ी अच्छा दर्शाते हैं। और यहाँ की जो ऊंचाई है वहाँ से डल झील और श्रीनगर शहर का बेहद ही खूबसूरत नज़ारा दिखाई देता है। और बर्फबारी के दिनों की बात करें तो उस टाइम पे तो ये पूरा महल जो है और इसके बगीचे पूरे सफ़ेद चादर से ढक जाते हैं और जो इसे किसी परियों की कहानी जैसा रूप देते हैं। ये काफी मनोरम दृश्य होता है उस वक्त।
1: साथ ही इस महल की वास्तुकला भी बड़ी अनोखी है। सीढ़ीदार बगीचों में विभाजित इस महल में पानी पहुंचाने के लिए एक जटिल हाइड्रोलिक प्रणाली का पुराने समय में उपयोग किया जाता था और यहाँ की दीवारों को मेहराबों से सजाया गया है। तो श्रोताओं, डल झील और पूरे श्रीनगर शहर का एक शानदार और शांत दृश्य प्रस्तुत करता है यह पर्यटन स्थल। तो आप भी जरूर परी महल का नज़ारा देखने के लिए कश्मीर हो आइए इन गर्मी की छुट्टियों में।

0: और श्रोताओं, आज जयंती के दिन पर हम याद कर रहे हैं जाने माने मलयाली कवि और गीतकार ONV कुरुप को। श्रोताओं, 27 मई 1931 में आज ही के दिन इनका जन्म हुआ था और इन्हें साल 1979 में फिल्म वैशाली के लिए सर्वश्रेष्ठ गीतकार का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला। गीतकार के रूप में इन्हें 13 बार केरल राज्य फिल्म पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। उनके 20 कविता संग्रह भी है, आलोचना की किताब, बाल साहित्य पर किताब और कार्ल मार्क्स की कविताओं का अनुवाद भी प्रकाशित हो चुका है और साल 2007 का ज्ञानपीठ पुरस्कार भी इन्हें प्रदान किया गया था। 1998 में पद्मश्री, साल 2011 में पद्म विभूषण से भी इन्हें सम्मानित किया जा चुका है और श्रोताओं, 13 फरवरी 2016 को इनका निधन हो गया था।
1: श्रोताओं, साथी, आज हम याद कर रहे हैं मराठी लेखक, उपन्यासकार, कवि, शिक्षाविद भालचंद्र नेमाड़े को। 27 मई 1938 को जन्मे भालचंद्र नेमाड़े के उपन्यास काफी चर्चित रहे थे, जिसमें हिंदू, झूल, कोसला है। इसके अलावा उनके कहानी संग्रह, कविता संग्रह भी प्रकाशित हुए। साल 2014 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। साल 2011 में पद्मश्री, साल 1990 में टीका स्वयंवर के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी आपको सम्मानित किया जा चुका है।

0: श्रोताओं, भारतीय क्रिकेट में एक ऐसा नाम जिन्होंने खिलाड़ी, कैप्टन और कमेंटेटर के रूप में क्रिकेट को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। जी हाँ, बिल्कुल ठीक पहचाना आपने। बात कर रहे हैं आज हम रवि शास्त्री जी की, जिनका आज जन्म दिवस है। 27 मई 1962 को जन्मे रवि शास्त्री अपनी आक्रामक बल्लेबाजी, बाएं हाथ की स्पिन गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं।
1: और साल 1981 में श्रोताओं, न्यूजीलैंड के खिलाफ उन्होंने बाएं हाथ के स्पिनर के रूप में अंतर्राष्ट्रीय करियर की शुरुआत की थी। और सबसे सुनहरा पल रहा 1985 का, उसमें बेंसन एंड हेजेस वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ क्रिकेट उस टाइम था। इसमें बल्ले और गेंद दोनों से उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया। टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने 80 टेस्ट मैचों में 11 शतकों और 12 अर्धशतकों की मदद से 3,830 रन बनाए, 151 विकेट लिए। 1992 में घुटने की चोट के कारण क्रिकेट को उन्होंने अलविदा कहा और बाद में कमेंट्री में कदम रखा, और अपनी दमदार आवाज, खेल की गहरी समझ से फैंस का दिल उन्होंने जीत लिया।
0: वर्ष 1985 में रणजी ट्रॉफी के एक मैच में बड़ौदा के खिलाफ उन्होंने एक ओवर में 6 छक्के लगाने का अद्भुत कारनामा भी किया था। वर्ष 2017 से 2021 तक वे भारतीय टीम के हेड कोच रहे, जिसके दौरान भारत ने कई ऐतिहासिक सीरीज जीती। और संन्यास के बाद उन्होंने लोकप्रिय और दमदार कमेंटेटर के रूप में दुनिया भर में अपनी एक अलग पहचान बनाई। आज उनके जन्मदिन पर हम पूरे आकाशवाणी टीम की ओर से उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं।

0: सकता हूँ, आज पुण्य अतिथि के अवसर पर हम याद कर रहे हैं प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को। स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री बनने का गौरव उन्हें प्राप्त हुआ था और 14 नवंबर 1879 को उनके जन्मदिवस को, श्रोताओं जैसा कि आप जानते ही हैं, बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी योगदान की अगर हम बात करें तो साल 1912 में बांकीपुर कांग्रेस में एक प्रतिनिधि के रूप में उन्होंने भाग लिया था। 1916 में एनी बेसेंट की होम रूल लीग में भी वो शामिल हुए थे। 1930 में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया था उन्हें, और साल 1927 तक दो बार कांग्रेस पार्टी के महासचिव के रूप में भी उन्होंने काम किया। 1936 में उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता की। साल 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया।
1: श्रोताओं, उन्होंने इसमें भारत के पूर्ण स्वतंत्रता की वकालत की, लोकतांत्रिक समाजवाद को बढ़ावा देने के अलावा उन्होंने पहली पंचवर्षीय योजना को पूरा करके भारत के औद्योगिकरण को बढ़ावा दिया। गुटनिरपेक्ष आंदोलन को उनकी वैश्विक उपलब्धि माना जाता है। उनके द्वारा लिखी किताबें द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, एक आत्मकथा, लेटर्स फ्रॉम अ फादर टू हिज डॉटर है।
0: और श्रोताओं, आज पुण्यतिथि के अवसर पर हम याद कर रहे हैं भारतीय सेना के साहसी और जाबाज सैनिक हंगपन दादा को, जिन्होंने कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ लड़ते हुए अपने अदम्य साहस और सर्वोच्च बलिदान के लिए उन्हें मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से भी सम्मानित किया गया था। श्रोताओं, साल 1997 में सेना की पैराशूट रेजिमेंट में शामिल हुए थे। बाद में असम रेजिमेंट और जम्मू कश्मीर में तैनात 35 राष्ट्रीय राइफल में भी अपनी सेवाएं दी और 27 मई 2016 को देश के लिए अपने प्राण उन्होंने न्यौछावर कर दिए।
1: साथ ही आज हम पुण्यतिथि मना रहे हैं मराठी लेखकों में से एक और संस्कृतवादी जाने माने विचारक लक्ष्मण शास्त्री जोशी की। उन्हें भारतीय ज्ञान परंपरा, प्राचीन हिंदू शास्त्रों और आधुनिक दर्शन का पूरा ज्ञान था। वर्ष 1923 में उन्हें कलकत्ता के संस्कृत महाविद्यालय में तर्क तीर्थ की सर्वोच्च उपाधि प्राप्त हुई थी। उन्होंने महात्मा गांधी के नेतृत्व में स्वतंत्रता संग्राम आंदोलनों में बढ़ चढ़कर भाग लिया था। साल 1955 में उन्हें उनकी कृति वैदिक संस्कृति का विकास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। साल 1992 में पद्म विभूषण, 1976 में पद्म भूषण से भी उन्हें सम्मानित किया जा चुका है। उनकी कृतियां आनंद मीमांसा, साहित्य की समीक्षा मुख्य है। 27 मई 1994 को आपका निधन हो गया।

0: और इसी के साथ श्रोताओं नमस्कार, कार्यक्रम के आज के इस अंग से दीजिए इजाजत मुझे यानी सूफिया खान
1: और मुझे मीता मुल्तानी को,
0: और स्वीकार कीजिए हमारा नमस्कार।

अभी आपने सुना मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम नमस्कार। ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलो हर्ट्स पर। सवेरे के 10 बज रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम लोक संगीत। लोक संगीत में पहली लोक रचना सुने श्रोताओं सीमा मिश्रा की आवाज़ में।

इस लोक रचना के साथ ही लोक संगीत कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलो हर्ट्स पर। सुबह के 10:30 हो रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत। सुगम संगीत का पहला गीत सुनिए श्रोताओं, जुबिन नौटियाल की आवाज़ में।

श्रोताओं, अभी आपने सुना सुगम संगीत मीडियम वेव 564.97 मीटर अर्थात 531 किलोहर्ट्ज़ पर। यह आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। सुबह के 11 बज चुके हैं, आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

श्रोताओं, अभी आपने सुना फिल्म धुरंधर से ही गीत, जिसमें बोल थे इरशाद कामिल के। आइए अगला गीत सुनते हैं फिल्म सैयारा से फाहिम अब्दुल्लाह की आवाज़ में।

0: तक।
1: आइए अगला गीत सुनते हैं फिल्म एनिमल से। अरिजीत सिंह की आवाज़ में बोल हैं गरिमा के और संगीत है श्रेयस का।

0: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिन बन गया।
1: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
2: RBI कहता है,
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: श्रोताओं, ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है और आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। आइए फिल्म संगीत में अगला गीत सुनते हैं हम फिल्म डंकी से अरिजीत सिंह की आवाज में। बोल हैं इरशाद कामिल के और संगीत है प्रीतम का।

लीजिए, अगला गीत पेश है फिल्म भूल भुलैया 2 से अरिजीत सिंह और तुलसी कुमार की आवाज़ों में। बोल हैं अमिताभ भट्टाचार्य के और संगीत है प्रीतम का।

अभी आपने सुना फिल्म क्रू से दिलजीत दोसांझ और साथियों की आवाज़ में ही गीत। आइए अगला गीत सुनते हैं फिल्म जरा हटके ज़रा बचके से अरिजीत सिंह की आवाज़ में।

श्रोताओं, अभी आपने सुना फिल्म स्त्री टू से विशाल मिश्रा की आवाज़ में ये खूबसूरत सा गीत। आइए अगला गीत सुनते हैं, फिल्म कबीर सिंह से अरिजीत सिंह की आवाज़ में, बोल और संगीत दोनों ही दिए हैं मिथुन ने।

श्रोताओं, आइए अगला गीत सुनते हैं फिल्म MS धोनी से। आवाज़ है पलक मुच्छल की, बोल है मनोज मुंतशिर के और संगीत है अमाल मलिक का।

आइए श्रोताओं, अगला गीत सुनते हैं फिल्म अजब प्रेम की गजब कहानी से आतिफ असलम और अलीशा चनोय की आवाज़ों में। बोल हैं आशीष पंडित के और संगीत है प्रीतम का।

0: morning sun like a pearl upon the ocean. Come and feel me. Come on, heal me.
1: फिल्म संगीत की आखिरी पेशकश लीजिए, सुनिए ये गीत फिल्म सिंग इज किंग से। राहत फतेह अली खान और श्रेया घोषाल की युगल आवाजों में, बोल हैं मयूरपुरी के और संगीत है प्रीतम का।

श्रोताओं, अभी आपने सुना फिल्म संगीत। ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। दिन के 12 बज चुके हैं, आइए अब सुनते हैं लोक संगीत। लोक संगीत की शुरुआत में हम आपको सुनवा रहे हैं मोती खान की आवाज़ में ये लोक रचना।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: आइए अगली लोक रचना सुनते हैं रमा देवी की आवाज में।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए, उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: आइए अगली लोक रचना सुनते हैं सीमा मिश्रा की आवाज़ में।

इसी लोक रचना के साथ श्रोताओं, लोक संगीत का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। दिन के 12:30 हो चुके हैं। आइए सुनते हैं सुगम संगीत। सुगम संगीत में हम सबसे पहले सुनवा रहे हैं आपको गुलाम अली की आवाज़ में ये गज़ल।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: आइए अगली गजल सुनते हैं अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन की आवाजों में।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: आइए अगली गजल सुनते हैं पंकज उधास की आवाज में।

0: रिटर्न गणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: आइए सुगम संगीत में आखिरी गजल सुनते हैं आबिदा परवीन की आवाज में।

श्रोताओं, अभी आपने सुना सुगम संगीत। ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। दोपहर के 1 बजने को हैं। लीजिए अब सुनिए आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से हिंदी में प्रादेशिक समाचार। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा करें।

समाचार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। सर्वोच्च न्यायालय ने एसआईआर यानी मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया को संवैधानिक और वैध बताया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत के नेतृत्व वाली बेंच ने फैसला सुनाते हुए कहा कि निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है, उसे निष्पक्ष और शुद्ध मतदाता सूची तय करने का अधिकार है। एसआईआर प्रक्रिया से ही स्वतंत्र और पारदर्शी चुनाव के लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। अदालत ने कहा कि चुनाव निर्वाचन प्रक्रिया के साथ मतदाता सूचियों की सत्यनिष्ठा, सटीकता और विश्वसनीयता पर निर्भर करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने इस दलील को खारिज कर दिया कि चुनाव आयोग की ओर से अपनाई गई प्रक्रिया लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और मतदाता पंजीकरण नियम 1960 के विपरीत थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह आज जयपुर में आयोजित किया जा रहा है। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में हो रहे इस कार्यक्रम में राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े शिरकत कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और उप मुख्यमंत्री तथा उच्च शिक्षा मंत्री प्रेमचंद बैरवा भी समारोह में मौजूद है। विश्वविद्यालय की कुलगुरु निष्ठा जसवाल ने बताया कि समारोह में 9 स्वर्ण पदक सहित 25,000 से अधिक विद्यार्थियों को उपाधियां वितरित की जा रही हैं। कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने आज जोधपुर में बीज उत्पादक कंपनियों और फैक्ट्रियों पर औचक छापेमारी की। इस दौरान उन्होंने बड़ी मात्रा में अमानक बीज जब्त करवाए। मीडिया से बातचीत में कृषि मंत्री ने कहा कि घटिया बीजों से किसानों और निर्यात प्रक्रिया को काफी नुकसान हो रहा है। उन्होंने कहा कि बरामद किए गए बीजों की जेनेटिक शुद्धता जांचने के लिए ग्रो आउट टेस्ट GOT करवाया जाएगा। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में अब तक सीबीआई 13 आरोपियों को पकड़ चुकी है। वहीं 49 जगहों पर ली गई तलाशी में कई दस्तावेज, लैपटॉप और मोबाइल फोन जब्त किए गए हैं। गौरतलब है कि 3 मई को हुई नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक के आरोपों के बाद रद्द कर दी गई है। अब ये परीक्षा 21 जून को फिर से होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के अलग अलग हिस्सों में बढ़ते तापमान के बीच लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि वे खुद को हाइड्रेटेड रखें और घर से बाहर निकलते समय अपने साथ पानी जरूर रखें। उन्होंने संवेदनशीलता बरतते हुए लोगों को पानी पिलाने का पुण्य कार्य करने का आग्रह किया है। साथ ही जानवरों और पक्षियों का ध्यान रखते हुए घरों, बालकनियों, छतों, दुकानों या दफ्तरों के बाहर पानी का बर्तन रखने को कहा है। राज्य में जारी प्रचंड गर्मी के दौर के बीच आज राज्य के 5 जिलों में हीटवेव का ऑरेंज अलर्ट है। बीकानेर और कोटा संभाग तथा शेखावाटी क्षेत्र में कहीं कहीं अधिकतम तापमान 46 डिग्री से ऊपर दर्ज होने की संभावना है। वहीं सीमावर्ती क्षेत्रों में आज और कल दिन का पारा 48 डिग्री तक पहुंच सकता है। झुलसाने वाली गर्मी से प्रदेश का ज्यादातर हिस्सा प्रभावित है। दिन के समय

0: तेज तपिश के साथ लोगों को रात में भी राहत नहीं मिल रही है। जयपुर, कोटा, जोधपुर, नागौर, बीकानेर और दौसा सहित कई शहरों में न्यूनतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर मापा जा रहा है। करीब 33 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ कोटा की रात सबसे गर्म रही। इस बीच नए पश्चिमी विक्षोभ के असर से झुंझुनू और सीकर में मौसम बदला। कल दिनभर तेज गर्मी और उमस के बाद हल्की बरसात हुई। झुंझुनू के नवलगढ़ में ओले भी गिरे। मौसम विभाग ने कल से 30 मई तक राज्य के कई हिस्सों में आंधी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। आईपीएल क्रिकेट में आज राजस्थान रॉयल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच एलिमिनेटर मैच खेला जाएगा। यह मुकाबला मोहाली के न्यू चंडीगढ़ में शाम 7:30 बजे से होगा। विजेता टीम शुक्रवार को दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटंस से भिड़ेगी। फाइनल मैच 31 मई को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। इससे पहले कल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने क्वालिफायर मैच में गुजरात टाइटंस को 92 रन से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। 255 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए गुजरात टाइटंस 162 रन पर ही सिमट गई। रजत पाटीदार को नाबाद 93 रन की पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 564.97 मीटर अर्थात 531 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। दोपहर के 1:05 हो चुके हैं। आइए अब सुनते हैं कृषक भाइयों के लिए कार्यक्रम कृषि जगत।

कई किसान भाई सब्जियां भी भावे, कई किसान भाई कद्दू वर्गीय जी की फसला है वे भी बायोडी है। जीव आप बात करा खीरो है, लौकी है, काशी फल है, करेला है, खरबूजा है, तरबूजा है, ऐसे अगला खेतारा महीने किसान भाई ले रहा क्या है। आज आपने जानकारी देवा के भाई कद्दू वर्गीय फसला महीने रोग नियंत्रण अपा किन तरह से कर सका। जीव आप बात करी की नेरा नेरा खीरा लौकी करेला खरबूजा तरबूजा ए हगला अपने खेतारा महीने बायोडा है और मानु आहार महीने महत्वपूर्ण जी को योगदान है ए दिया करे। गर्मिया महीने इनारी जी की खपत है आ मंडिया महीने बाजारा महीने बढ़ जाया करे। हमें किसान भाई रे खेता में अच्छी उपत हुए तो लाभ भी बढ़िया मिल सके। इन आते आते इनारो प्रयोग सब्जी और सलाद रूप में भी करी जा करे। पण बात आवे है की भाई रोग और कीटो सु 30% तय जो नुकसान है वो कद्दू वर्गीय फसला महीने हो जाया करे। इनारी फसला महीने भात भातरा रोग और कीड़ा लाग जाया करे। जिनरो प्रभावी जी को नियंत्रण किसान भाई करे तो उचित लाभ जी को है वो आपा कमा सका। हमें जो आद्र पतन हो जा तो इंड नियंत्रण वास्ते नर्सरी महीने मृदा हल्की बलुई होनी चाहिए। मृदा रो जी को रासायनिक उपचार है वो कैप्टोन कॉपर सल्फेट फॉर्मेलिन 0.2% किन्हीं भी एक जी को कवक नाशी है उन्होंने आपने करना चाहिए और बीज जी का आपा बोवा वे घना नहीं बोवना चाहिए। बीजोपचार थायरम 1.25 ग्राम और ट्राइकोडर्मा बिरिडी 6 ग्राम प्रति किलो बीज दर शू आपने करना चाहिए। वो शू पहला ट्राइकोडर्मा 2.5 किलोग्राम प्रति हेक्टरी दरू आपने 100 किलोग्राम और बढ़िया हरियोड़ी जी की गोबरी खाद है वह मिला परार भूमि मैंने आपने मिलावनी चाहिए। इनी तरह से मृदू रोमिल आशिता रोग जी को है वो भी कद्दू वर्गीय फसलार मैंने लागिया करे। नियंत्रण वास्ते किसान भाई कहीं करे के रोगी जी की बेलड़िया है उन्होंने बाढ़ परी जला देनी चाहिए और बीजरी बुआई पहला मेटा लेक्यूजिलू बीजो उपचार आपने करना चाहिए। रोग रा लक्षण दिखे तो उन वक्त 1% बोर्डो मिश्रण रो घोल जी को है उन रो आपने छिड़काव करना चाहिए। खीरेरी पोमटो किस्म में ओ जो को रोग है वो कम ला गया करे। इंद्र हाथे हाथे फल विलगन भी हो जाए करे तो इंद्र नियंत्रण वास्ते रोगी पौधा और फलाने आपने नष्ट कर देना चाहिए। भूमि माते बेला है या फलारा जी का नीचे पुला हुए सरकंडा है ए बिचाणु लाभ होया करे। खेत महीने पानी रिजी को भराव है वो भी नहीं होना चाहिए और रोग मान लो तेज हो जा उग्र हो जा तो उन वक्त 1% बोर्डो मिश्रण जी को छिड़काव है वो आपने करना चाहिए। एंड साथ साथ किसान भाई चुनिल आशिता जी को रोग है वो भी कद्दू वर्गीय फसल में अपने देखने जो को मिलिया करे। नियंत्रण वास्ते किसान भाई कहीं करे के खेत आड़ पाड़े जितनी भी खरपतवार घास फूस है उन्हें आप उखाड़ दे और रोग ग्रसित जी का पौधा है उनर माते गंधक है कैराथेन जड़ा कवक नाशी और जो को छिड़काव है वो किसान भाई ने करना चाहिए। एंड साथ साथ गंधक रो भुरकाव 1 हेक्टर में 25 से 30 किलोग्राम री दर्शू करना चाहिए और कैराथेन रो छिड़काव 0.1% दर्शू करा तो रोग जी को है और रुक जा और 15-15 दिन री क्षेत्रीय माते अंतराल माते 3-4 जी का छिड़काव आपने करना चाहिए। कद्दू वर्गीय फसल मैंने किसान भैया एक जी को रोग है मोजेक रोग वो भी हो जाया करे। इनकी रोकथाम वास्ते आप कई कर सका के रोगी पौधा ने अपने पार लेना चाहिए और नष्ट कर देना चाहिए। इनरे हाथे हाथे खेत आड़ पाड़े जितनी भी जी की खरपतवार है उन्हें अपने बाढ़ देनी चाहिए। खेत में जी को रोग है एफिडू फैलिया करे। एपिड ने नियंत्रण वास्ते इन रोग ने फैलना आप रोक सका और इनारा वास्ते मेटासी स्टॉक्स 0.1%

तो छिड़काव 15-15 दिन री छेती अंतराल माते आपने करना चाहिए और फल आवे उन वक्त आपने छिड़काव नहीं करना चाहिए। किसान भैया आ ही जानकारी के भाई कद्दू वर्गीय फसल महीने जी का रोग लाग जा तो उन रोज को नियंत्रण है वो आप किन तरह से कर सका। कृषि जगत प्रोग्राम रो भगत पूर्व वेरियो है आपने साथी दिनेश राणे जाने शेख दिराओ राम राम।

ये आकाशवाणी का जोधपुर केंद्र है। मीडियम वेव 564.97 मीटर अर्थात 531 किलोहर्ट्ज पर सूर्यनगरी चैनल एवं एफएम बैंड 102.1 मेगाहर्ट्ज पर एफएम सनसिटी चैनल दोपहर के 1:15 होने को हैं। आइए अब सुनते हैं ग्रामीण महिलाओं के लिए कार्यक्रम गणगौर।

0: हाँ तो पूनम,
1: हम्म,
0: 25 मई सु लेन अपने ध्यान के 2 जून ताणी नौतप्पा है वो चालेला। नवतप्पा चाल ही रही हो यार, गर्मी पड़ ही रही है। तो ये जगह 9 दिन है वे पूरे साला सबू गर्म दिन होया करे हैं। इन दिनार महीने अपन का ही लागे जाने कोई आबे में सु आग बरस रही है।
1: बिल्कुल
0: और यू भी कह करे कि सूरज भगवान है बे रोहिणी नक्षत्र र महीने आ जावे तो सूरज री तेज और सीधी किरणा है जिके धरती माते आया करे हैं। बीउ धरती है जिकी तपन लाग जाया करे और
1: बिल्कुल
0: तेज तावड़ो भी लागे है। माटी है जिकी भी वा भी एकदम यूं गर्म हो जाया करे। यू भी कह करे कि धरती माते जे कभी हानिकारक कीटाणु होया करे है बिन मार दिया करे हैं। और देखो कि नो तो अपा तो प्रकृति रो हिस्सो है, इन्हें तो अपा रोक ही नहीं सका, पर अपा कई भी अड़ा उपाय करने अपा कई अड़ी बीमारी सु बच सका। हाँ कई अड़ा छोटा मोटा उपाय कर सका। हाँ भी अपा अपनो सेहत रो ध्यान रख सका। हाँ
1: बिल्कुल सही क्यों भावना। और विज्ञान और ज्योतिष दो ही आ बात माने कि नौ तपारे मैंने तावड़ तपनो बहुत जरूरी है,
0: जरूरी भी आ करे
1: गर्मी
0: हैं।
1: होनी पड़नी जरूरी है। एक कहावत भी है अपन अटे कि तपे नौ तपा 9 दिन जोए तो पुन बरखा पूर्ण होए, यानी नौ तपारे इन 9 दिन मैंने जितनी ज्यादा गर्मी पड़ेला आने वालों चौमासा महीने उतनी चोखी और भरपूर बिरखा अपन अटे होवेला।
0: बिल्कुल सही किया।
1: और नौ तपारे महीने मौसम ठंडो नहीं पड़ना चाहिए, नहीं तो नौ तपा है जिसको खंडित हो जाया करे और प्रकृति रो संतुलन है वो बिगड़ जाया करे। तो प्रकृति रे संतुलन ने बनाए रखने वास्ते कड़कती धूप नहीं अच्छो मानियो गयो है।
0: हाँ बिल्कुल सही किया। ये भी तो जरूरी है, 9 दिन तपना भी तो बहुत जरूरी भी आ करे है। पर इन दिनों में कई कई बात रो आप ध्यान रखा नहीं तो अपन कही एक स्वास्थ्य सही दिया करे। तो इन 9 दिन महीने आपने जैसे कोई पेय पदार्थ ले होना चाहिए, दही है, दूध है, छाछ है, कोई जैसे शरबत बना लो, आम पन्ना बना लो, फ्रूट है, सलाद है, ये खावानी तो ये कही है कि अपने शरीर वास्ते चोखो रहला। तो इन 9 दिन में अपने इन बातों रो जरूर ध्यान रखना चाहिए। हन कई तरह की सावधानियां भी रखनी चाहिए, जैसे कि हो सके तो 12 बजे सु ले और 4 बजे तानी घर सु बारे निकलो ही मती। अरे इतो ही जरूरी वे घर बारे निकलना ही पड़े है, काम भी होवे तो कपड़ा सु पूरे शरीर ने ढक हन पची बारे निकलिया करो। और एडो भी वे कि घर बारे निकलना भी जरूरी है तो अपा कई करक सुती रा कोई ढीला ढला कपड़ा वे पहन निकलिया करो। हाँ
1: बिल्कुल सही की भावना। तो चलो सुनावा एक और गीत।
0: बिल्कुल।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर, माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार सुबह 11 बजे मन की बात।
1: तो देखो बेना कि हर एक 3 साल बाद में एक अधिक मास आया करे हैं, और केवे भी है कि वो महीनो है वो पूरे ही कहने की दान धर्म और पुण्य रो वो महीनो है। कई शहरा रे महीने, गांव रे महीने, मंदिरारी परिक्रमा होया करे हैं। ब्या ही अपने जोधपुर रे महीने भी अबाट चाल रही है भोगी शैल परिक्रमा। तो इन बारे रे मायने फोन रे माध्यम से जानकारी देवन खातर आमंत्रित करिया हाँ ओम प्रकाश जी सोनी, जिनसे बात करेला पूनम देवड़ा, जिनरी प्रस्तुति है राजेश लामरोड़ी और संयोजक है मनीष सोलंकी।
2: सूर्य नगरी जोधपुर री पावन धरा जटे चाल रही है अपनी ऐतिहासिक और सदिया पुरानी भोगीशैल परिक्रमा। मारवाड़ री संस्कृति और धर्म री अनूठी मिसाल भोगीशैल परिक्रमा ने मारवाड़ रो कुंभ भी किया करे है, जटे लाखों री भीड़, पग पग माते भंडारा और सगड़ा भक्ता री अटूट श्रद्धा। आज इन्हीं परिक्रमा पर जानकारी देवन सारू फोन रे माध्यम से आमंत्रित है ओम प्रकाश सोनी, जो अठे आपकी सेवा दे रिया है। आपरो घणे मानसु स्वागत है आकाशवाणी जोधपुर से प्रसारित कार्यक्रम गणगौर में, और हेट पेज सु भरियोड़ा राम राम।
3: घणा घणा घणा राम राम सा आपने। सबसे पहले तो आपने मैं और धन्यवाद देने चाहूं कि आप मैंने आकाशवाणी में इन परिक्रमा री विस्तृत जानकारी रे बाबत में मैंने आप चुनियो, और इन बाबत में मैंने जानकारी जड़ी मारे जानकारी में है, मैं आपने जरूर बताऊंगा।
2: बिल्कुल सर, तो सबसे पहले आप वही पूछनी चाहवा कि भोगीशैल परिक्रमा रो इतिहास कितो पुराना है और इन्हें मारवाड़ रुकुम क्यों किया करे?
3: भोगीशैल परिक्रमा ऐसा यात्रा बहुत अनादि कालो चलती आ रही है, जिनमें तपस्या में और ऋषि मुनिया ने विशेष भाग रहे ऐसा। मारवाड़ में पहली मरुस्थल है और पहाड़िया ही पहाड़िया है, और उन माते मरुस्थल जिकी है टिबा वगैरह है, उन माते नाग बहुत व्यवता सा। भोगी सेल रो मतलब वो है, भोगी रो मतलब नाग भी आ करे, सेल रो मतलब पहाड़ होया करे। तो आप भोगी सेल परिक्रमा हुकम पुरुषोत्तम मास में ही लागिया करे, हर 3 साल बाद क्यों लागिया करे कि ऋषि मुनि पहली वेद ब्रह्मांड ने गणना करी ही कि उनमाने 3 साल में 1 महीनो ज्यादा बढ़ जाया करे सूर्य चंद्र री गति रे अनुसार। तो उन महीना ने उन अधिक मास ने पुरुषोत्तम मास कहवायो है, इन वास्ते आ भोगी सेल परिक्रमा री पुण्य धरती हुई थी। तो उन्हें परिक्रमा रे माने इन अधिक मास में जिका भी परिक्रमा करेला उन्हें 100 गुना फल प्राप्त वेला सा, इन वास्ते आ भोगी सेल परिक्रमा करनी है, और आज सिर्फ जोधपुर में ही आयोजित वैसा।
2: और इन धार्मिक महत्व,
3: इनो धार्मिक महत्व तो बहुत ऐसा है, इन कारणों के पुरुषोत्तम भगवान यानी भगवान विष्णु ऋषि मुनिया ने आशीर्वाद दियो कि इन महीना रे माने जिको भी कोई दान तप जप दान वगैरह करेला उन्हें इन अलग अलग महीना रे माने किए गए दान पुण्य 100 गुना फल पत्तो प्राप्त वेला। तो आज की आस्था और उत्साह है मारवाड़ रे लोगा में, इन कारणों आन परिक्रमा रे माने लोग भाग ले गए।
2: तो कितना दिन

0: जी की संस्थाओं जी की है, भोजन वगैरह बना रही है, माने गैस की कोई कमी नहीं होनी चाहिए, गैस सिलेंडर दे होना चाहिए, ऐसा व्यवस्थाओं जी की, ऐसा मेडिकल की भी व्यवस्था, एम्बुलेंस लगावड़ी रखे, कटी आग लग जाए तो फायर ब्रिगेड तैयार रखे, नियंत्रण कक्ष भी लगा हुआ है, नगर निगम वाला कंट्रोल रूम भी लगा हुआ है, कोई गम जा कर जा, कोई चीज हो जा, हादसा हो जा तो वह कंट्रोल रूम में आने सूचना कर दे, कोई बच्चों गुम हो जा तो बिना आवाज सूचित कर दे, तुरंत भी आने मिला दे, तो नियंत्रण कक्ष खोलियोड़ा नगर निगम रो, मैं नगर निगम ने भी धन्यवाद दू, जेडीआर अधिकारी ने भी धन्यवाद दू, और ये सारी संस्थाओं जी की समाज रे सेवा में लागुड़ी है, उन्हें मैं धन्यवाद दू ये
1: देखो
0: कहते
1: सर,
0: जाए।
1: फिर भी नौ चौपारी गर्मी में ध्यान में रखता तक आप यात्रियावास से बहुत अच्छी सुविधा कर रखी हो।
0: तो आ सारी संस्थाओं ने मैं धन्यवाद दू सा, इन माने मैं भी एक रिटायरमेंट के बाद एक संस्थाओं जुड़ियो सा, मैंने पानी री संस्था है सा, ठंडो पानी पिलाऊनी संस्था है सा, जरे आफ्टर रिटायरमेंट मैं कई करूँ सा, कोई न कोई समाज कार्यों जुड़नो पड़े मने, समाज री ब्राह्मण स्वर्णकार कैलाश प्याऊ विकास संस्थान जी की 113 सालों अटे जोधपुर रे माने परिक्रमा रे वास्ते इस काम कर रही है, मारा समाज रा वरिष्ठ नागरिक जी का है, वे इन्हें चालू करी मंडोर उद्यान में घास फूस री झोपड़िया में मटकियां धरपरी ने पानी पिलावता, बारू लेन आवता, कंधा माता ऊंचान लावता, गाडोला में लावता सबको, आजकल तो टैंकर हो गया, ठंडा पानी री मशीना होगी, इन सेवा ने देखने मारे पूर्वजा ने जी का वे आज नहीं है, मैं उन्होंने याद करा पूर्व राज राज परिवार जी का अनिशा, वे मंडोर रमान ने माने एक साल दी इन वास्ते 24 घंटा 365 दिन ठंडो पानी की व्यवस्था कर रखी है समय।
1: साधुवाद है एडी संस्था माने जी के इतनी अच्छी व्यवस्था कर रखी। और अपने टे कहवत भी है कि पुण्य जड़ पाताल जे मायने, यानी पुण्य नो प्रभाव बहुत गहरा और स्थायी होया करे। इंसान भले ही आपरी भले ही भूल जावे, लेकिन जो निस्वार्थ भाव जी की सेवा वा करे भी नहीं जड़ा है जी की हमेशा मजबूत रहा करे और समय आने पर है जी को सुफल दिया करे। तो इन तपती धूपरे महीने भक्तारो जी को जज्बो है वे कितो देखने मिल रहे बटे।
0: अरे साहब कई बात करूं मैं, 80-80 साल की डोकरिया माते सिर माते पोटलियां बांध, सुबह साढ़े 3 बजे 4 बजे रवाना हो जा ठंडा ठंडा पौर में, अरे करीब ने कदा भाई साहब जी को ट्रका चाल रही है, हनुमान आपरो सामान दे दो, कोई तो धरे, और कोई कहते नहीं नहीं वो मारो तप है, उगाड़े पगा वे जावे और बटे दर्शन करना आगे बटे जान रेस्ट करे आ बटे पड़ा माते विश्राम करे।
1: हाँ सर बिल्कुल। तो इन यात्रा में जोधपुर रो पूर्व राज परिवार और आम जनता साथे मिलन चले, तो उनके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी दे दो।
0: मैं निवेदन करियो नहीं सा, आपने हमारी संस्था ने जो साड़ दे दी 1935 में, तो ये अलग अलग संस्थाओं ने बुलाने प्रमाण पत्र देवना, मोमेंटो देवना, बिहार संयोजक ने प्रोत्साहन देवनो, सहयोग राशि देवनी, ये सब काम समय समय माते कर ही जाए, राज
1: अच्छा।
0: परिवार रो भी मैं धन्यवाद दूं कि राजा महाराजा और जी राजवंश, तो आबार पूर्व राजा गसिंह जी ये भी बहुत करे,
1: तो आपने तो सेवा देता कितना बरस हो गया।
0: मैं हमारे रिटायरमेंट 2015 के बाद इन संस्थाओं जुड़ियो सा मैं, तो आ मने संस्था थोड़ी ठंडा प्यावरी है, पानी पानी पाऊनी संस्था है, तो मने आ बहुत इजी लगी कि भाई अपा एज में भी हो जाऊं तो पानी तो पाई सका,
1: बिल्कुल सही है सर,
0: है ना, तो
1: वो
0: इन
1: कोई
0: वास्ते
1: दोनों
0: इन
1: काम को
0: संस्थाओं
1: नहीं है।
0: जुड़ी, हाँ तो इन संस्थाओं जुड़ गई सा, और दिन रात निःशुल्क 2 टाइम भोजन चले और दिन भर ठंडो पानी चले, तो जिनको जिन्हें सेवा पड़े, मारे 100-150 कार्यकर्ता इन माने इस काम 24 घंटा लागू रहे।
1: तो पुराने और आज के टाइम ने ध्यान में रखता तथा एंड में कई बदलाव आपने देखने मिल रहा है परिक्रमा में।
0: ऐसा बहुत बदलाव है, पहले तो बुजुर्ग लोग करता, आजकल आप रे परिवार रा बुजुर्ग लोग जी की परिक्रमा रे माने जावे नहीं सा, उन्हें वे जावनो और वे बूढ़ा बूढ़ा आदमी ने वे पहुंचो ना वे, तो वीर माते भी असर पड़े, बच्चा माते भी असर पड़े, वे समझने की कोशिश करे का परिक्रमा क्यों है, जरे वे अरे माँ बाप या भाई बहन बुआ काकी मासी वे समझावे के इन ओ फल है, ओ करनो चाहिए बेटा, आ सेवा करनी चाहिए बेटा, जीवन में थोड़ा आनंद देवनो चाहिए बेटा, तो वे भी विन माने जुड़े, आ पानी संस्कृति है, जो अगर सा पानी तो मैं ही ला सका, वो गाड़िया में
1: बिल्कुल।
0: मैं ही पहुंचा सका,
1: तो मतलब कुल
0: बहुत
1: मिलाकर नवी पीढ़ी रो इन संस्कृति से जुड़ाव आपने देखने मिल रही है।
0: अच्छा जुड़ा वैसा, और
1: तो आप अटे साल दर साल सेवा दे रहे हो, तो कोई खास अनुभव जो आप मान श्रोता वाले साथ साझा करनी चाहो।
0: अबे छोटो सो अनुभव मारो अबारी जुयो, मैं शिविर स्थल में मारे प्याऊ में बैठो ने एक 85-87 साल रा एक बुजुर्ग आया, ठंडो पानी पीऊ नमाज़ते, पानी पीने 2 मिनट कूलर रहा मैं बैठा बैठा ने वे मने

0: देखियो, हाँ मैं आपको बात करूंगी चाहूँ, मैं तो बोलो सा, तुम्हारी इच्छा इच्छा है, मैं तो फरमाओ, भोजन की इच्छा है तो भोजन लान दूँ, पानी की इच्छा पानी, के पानी तो मैं पी लियो बेटा। मारी इच्छा है कि मैं 10-20 परिक्रमाओं तो जाए हो मारी उम्र में, और पहले बिछड़ियों जी भी जाओ तो लेगा, अब हटू बिछड़ियों जी बहुत दूर पड़े, रहता ना बहुत दूर पड़े, तो
1: अच्छा
0: मैंने दर्शन करा लिया बेटा, तो हमारा डोकरा हाव भाव दे क्या, तो मैं दर्शन करने चाहे, मैं हमारे गाड़ी माते बैठान, बिछड़ियों जी दर्शन करान, प्रसाद भी जो धीरान, पाचो बैठान, पाचो मारे अटे शिविर में छोड़ियो, मैं कभी अकेला की कराया, तुम्हारा टाबर तो है बाहर रहे
1: अच्छा
0: विदेशों में रहे, मैं अटे अकेले जो हमारी लुगई है नहीं, मैं अकेलो आई गयो, मैंने कोई छोड़ गयो, अब तू मैंने दर्शन करा लिया, बहुत दुआओं दी हो बहुत, और माने वो मौको मिल गयो सेवा करने, मैं सेवा करने बैठा बैठे तो
1: बिल्कुल सर।
0: माने, और एक बुजुर्ग आदमी मेरी सेवा करण में यार आंखें में आंसू आ गया सा, मैं कह रो मत, आप फिर कभी कोई कहो तो मैं तो फिर दर्शन करा लिया हूँ, आप इतनी
1: बिल्कुल
0: इच्छा है तो जरूर करांगे, ओ मारो एक अनुभव हो युग आपने सुना दिया।
1: बिल्कुल सर। तो ओम प्रकाश जी, आप भोगीशैल परिक्रमा से जुड़ी इतनी बढ़िया जानकारी मान श्रोतावा तक पहुंचाई, और आप कीमती वक्त आज माने साथे साझा करियो, तो आप पूरी जोधपुर आकाशवाणी टीम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद है।
0: आपने भी बहुत बहुत धन्यवाद, आकाशवाणी में पूरा प्रदेश सुनेला तो इन्हें कुछ कुछ जानकारी मिलेला ही मिलेला,
1: धन्यवाद
0: धन्यवाद
1: सर।
0: सर, आपने बहुत बहुत धन्यवाद।
2: तो अबार आप बोगीशेल परिक्रमा रे बारे रे मैंने जानकारी सुनी ही ओम प्रकाश सोनी सु और जिनकी बातचीत हुई ही पूनम देवड़ा री। तो इनकी प्रस्तुति ही राजेश लामरोडरी और संयोजनों मनीष सोलंकी रो। तो अब होना हो प्यारा सो गीत।

0: पूनम, देखो कि गर्मी रो मौसम तो चाल ही रही है, और सूरज है वो भी देखो नहीं कि आग रे जिया उगल रहे है, और लूरी भी तपी से वाह सगड़ा जनजीवन है भाई, रे लूरी तपीसू तो परेशानी जे दुखी जे। और शहर मायने तो देखा कि अपा एसी चाले ही है, पर जेका गांव है, गांव रे मायने बिना बिजली भी सुकून मिल जाए। कर एक एड़ो साधन है कि एसी वाली झोपड़ी भी ने किया करा, हाँ साधारण सी झोपड़ी होया करे है, बिने विनी जी की दीवार होवे वे माटी री बनी ओड़ी होवे, इन ऊपर खी पर फूस रो छप्पर होवे, और बिन ऊपर पानी रो छिड़काव कर दे तो जो के अंदर बैठा हुआ ने बिरे ठंडी ठंडी हवा आया करे, वह कहने के बिना बिजली भी मन ने सुकून दे दिया करे हैं।
1: बिल्कुल सही क्यों भावना। आज अपने लगे कि तकनीक आपने जीवन एकदम आसान बना दिए है, पर कहीं कदी आपा सोचियो कि जब बिजली कंप्यूटर या कोई भी
0: नहीं
1: डिग्री
0: आ
1: नहीं
0: हाँ
1: जिन्हें भी अपना बडेरा है जिसको प्रकृति री हर चुनौती रो की कर सामनो करता।
0: हाँ
1: तो आपा बात कर रहे देसी एसी री झोपड़ी
0: देसी
1: री,
0: ऐसी
1: तो
0: झोपड़ी।
1: इनरी छत बनाने रे मायने बांस आकड़ी री लकड़ी पाए सीढ़ियों और खीपड़ा रो उपयोग हो। तो सीढ़ियों और खीप ने भारी पत्थर सु दबाया पछे समतल करने
0: हाँ
1: खारिया या मोजड़ी सु बांध दिया जाव तो, और अब परत इतनी मजबूत रहती कि सूरज री तेज किरणा भी इनमें भेद कोनी सकती।
0: हाँ
1: पचे पानी सु इन पर छिड़काव कर देता, और जब भी गर्म लू बासती तो वह गर्म लू री की हवा होती वह इन टकरा ने ठंडी हो
0: ठंडी
1: जाती,
0: हो
1: और वह
0: जाती।
1: जब झोपड़ी रे अंदर आती तो एकदम देसी वाली एसी
0: हाँ
1: जी
0: देसी एसी रो अपने असर हो ही जाता मायने बैठवाड़ा ने।
1: एकदम ठंडक महसूस होती एसी जेडी। तो आ तकनीक पूरी तरीका से इको फ्रेंडली है, नहीं कोई बिजली रो बिल, ना कोई ग्लोबल वार्मिंग, कम लागत और ज्यादा टिकाऊपन। और आज भी आ पारंपरिक तकनीक है जिसको ग्रामीण जीवन रे मायने देखने अपने मिलिया ही करे है।
0: तो पूनम वो झोपड़ी रो सिर्फ आराम रो ही साधन नहीं है, वो इशू कही है अपन पर्यावरण भी बचाव हो जावे, और प्राकृतिक ठंडक अपने दिया करे है, और बिजली की बचत भी हो जावे आप बता ही रिया, और इन तैयार करने रो खर्चो है वो भी कम लाग्या करे है, और इरी हवा है वो अपन स्वास्थ्य रे वास्ते घणी ही चोखी दिया करे है। बैठोड़ा ने गर्मी री हवा में खेतार महीने काम कर रहे हाँ, तो गर्मी में काम करता करता इर महीना आन बैठा तो एकदम अपने ठंडक मिलिया करे है,
1: बिल्कुल
0: और ग्रामीण संस्कृति री पहचान भी है।

0: पूनम, एक कहावत तो आप सुनी होला के
1: बोलो कौन सी।
0: रुपया कई पेड़ माथे उगे है कई।
1: बिल्कुल।
0: तो आ कहावत अपने राजस्थान रे मैंने आज साची होएगी है। कहनी के आकड़े रे पौधे रे जकावे फल लागया करे है, बेनु रुपया कमाने रो साधन है वो हरु वेगो है। जेको देखो कि सालों साल ये बेकार पड़ी रहती ये आकड़े रा पौधा, और ये कहने के खरपतवार है जे ही समझता। हाँ, तो वो आज ये जगह पैसा कमाने रो साधन हो गयो है।
1: बिल्कुल, रेगिस्तान री धरती पर उगन वालों आंख रो पौधो जेटे पानी री एक एक बूंद घनी कीमती होवे, उन मरुधरा रमाई ने आंख रो पौधो बिना कोई मेहनत खाद पानी रो उग जाया करे है। पहला लोग इन्हें जहरीलो समझता, अनुपयोगी समझता, पर आज अठेरे लोगा सारू और मोटी कमाई और फौजी भायरी सुरक्षा रो मोटो जरियो बन गयो है।
0: बिल्कुल बन गयो है। तो अबार हाल ही में आपा हुनी हो कि रूमा देवी जी है वे कपड़ा विशेषज्ञ रे द्वारा इन्हें जांच करे ही इन फल री। तो इन्हें कहनी के अनोखी प्राकृतिक रेशे सु जैकेट शॉल और सूटर बेग कई तरह रा जका ऊनी कपड़ा है बे यूं बनिया करे, और इतना भी ऊनी बने कि कितनी भी ठंड हो नहीं भी हो आपा सुरक्षित रह सका। हाँ, और तो और देखो कि विदेश मैंने भी इन मांगे वह बढ़ गई भी है।
1: बिल्कुल सही की भावना। और आखिरी पाड़े सु जो चमकदार पोलो और एकदम बल्दियो रेशो निकले, जिन्हें आप बालपणे रे मैंने कहीं हापू कहता कि भाई
0: हाँ
1: हापू
0: बिल्कुल।
1: ऑर्डर आई गए, तो
0: हाँ
1: वो है जिको डेजर्ट सिल्क यानी रेगिस्तानी सिल्क रेशम है जिको कही जा करे।
0: हाँ
1: बाड़मेर जैसलमेर और जोधपुर जिला री ग्रामीण बहना और किसान खेता सु आखरी पाड़िया इकट्ठी करे, इन्हा ने धूपरे मायने जालीदार कट्टारे मायने सुखावे, जिन सु पाड़ी है जिको खुल जावे और इन माई सु जो रुई जड़ो मुलायम चमकीलो रेशो होवे वो बाहर आ जावे, पचे इनू जो भी गर्म कपड़ा बीजा है वे बनाई जा करे धागो बनाने।
0: बनाया करे है। इनी खासियत आ है पूनम की वो सूखी धरती माते ही बिना पानी रे उग जाया करे है।

0: और पनप जावे और फल भी देते करे हैं।
1: बिल्कुल सही कहो भावना। इनू जी का कपड़ा बने तो अपने फौजी भाई ने घणो फायदो मिली। सियाचिन जेडी बर्फीली जगह माते जटे -50 डिग्री सेल्सियस हार्ड कंपाती ठंड रे महीने भी शरीर है जिको पूरो गरम राखे लाओ कपड़ो। और इन अनूठे काम सुथार रही हजारों बहना ने घरे बैठे रोजगार मिल रियो है, जिनसु किसान भाई री आमदनी भी बढ़ रही है। जेको आम पहला खेता रे महीने बिल्कुल खरपतवार समझियो
0: हाँ
1: जावतो, वो आज सोनू बनन आय और रक्षा रो साधन बन रियो है।
0: बिल्कुल।

0: तो देखो पूनम की छुट्टियां चाल ही रही है अबार तब रही आ रहे।
1: हम्म।
0: और अपने टाइम रे मैंने जब छुट्टियां होती नहीं तो गर्मी री छुट्टियां पूरे ही 2 महीना ताणी होया करती है। मई और जून पूरे 2 महीना छुट्टियां होता जो को जी भर न अपा छुट्टियां मनाता हाँ। और जुलाई आते ही स्कूल जावन री इतनी उत्तावड़ होती कि स्कूल खुलता ही अपा स्कूल जा फ्रिया करता हाँ। और ई 2 महीना र महीने ही अपा देखो कि छुट्टिया र महीने अड़ी अपने घरवाला दिनचर्या अपने बनावता कि टेम माते उठनो सूर्य भगवान ने अर्घ देवनो और बड़ो रो काम करनो के यड़ उपनिया सा बे भी अपन ने पढ़ाया करता हाँ। उनरे बाद में कोई खेल है बे खेलन वास्ते अपन जाऊन देवता हाँ। जैकि कोई गिल्ली डंडा खेल है कंचा है संतोलियो है।

0: कबड्डी है, खो खो है, रस्सी कूदनो है, लंगड़ी टांग है, आंख मिचोड़ो है, तो एड़ा कई गेम होता। हाँ बे अपा सगड़ा मिल पड़ा आसपास वाला टाबरिया और वे खेले जी कब अपा खेलिया करता। हाँ आजकल
1: बिल्कुल
0: तो अपा देखा नहीं कि टाबरिया कटे मिल जावे नहीं तो सगड़ा कने अलग अलग फोन हो जाया करे है, तो वे टाबरा रहे एड़े खेल है वे भूल ही गया है अपन टेमी जड़ा खेल होया करता। हाँ पण देखो फोन रे सागे सागे आपसी प्रेम है वो भी धीरे धीरे टाबरियारो कम होने लागे हैं।
1: बिल्कुल सही क्यों भावना। आजकल तो देखा बच्चा फोन ने छोड़े ही को नहीं, मतलब कटे शारीरिक गतिविधि तो बच्चा में देखने
0: देखने
1: मिले को
0: मिले
1: नहीं।
0: को नहीं है।
1: देसी खेल जो सिर्फ खेल को नहीं होता बल्कि बच्चा ने जीवन जीना सिखाता हा। इन खेलने खेलना सो कोई मतलब कई फायदा भी होता। जान
0: हाँ
1: मोटापा जड़ी कई तरह की शारीरिक समस्या है विनु बचाव हो तो, मानसिक समस्या है उन्हों बचने में मददगार साबित हो
0: हाँ
1: तो, सहनशीलता बढ़ती, हार जीत दोनों स्वीकार करना खेल खेल में ही सीखे जाओ तो,
0: सीखी था
1: कि भाई
0: बिल्कुल
1: हार भी हो सके जीत भी हो सके। आजकल रहा बच्चा तो इन्हें स्वीकार ही कौन करे, एक बस मन ही जीतना है,
0: मन ही
1: हारना तो है
0: जीतना।
1: ही नहीं।
0: हाँ बस सही, वो सहन शक्ति नहीं है आज का ढाबरिया
1: टीम
0: में।
1: वर्क हो तो, सहयोग हो तो, नियम और पालन करना बच्चों है जिको खेल खेल रहे माध्यम से सीख जातो। ऐडा बहुत तरीका रा खेल जो आप बताइए ही हो, चार खुना रा खेल हो गया, रुमाल झपटो हो गया, स्टेचू वाड़ो हो तो जिनमें बच्चा एकदम स्टेचू बोलता और अपन एकदम सीधो खड़ो हो जानो हो तो,
0: हाँ
1: कंचा खेलना आप बताया, गड्ढा खेलता आपने ठा हो तो, कभी बॉल रे साथ खेलता, कभी यू ही
0: हाँ
1: खेलता, अष्टाचंगा हो गया, ऐडा बहुत ही पुराना खेल है जिको आप खेलता और उनसो है जिको आप सीखता भी है बहुत
0: तो
1: सी बात।
0: पूनम जदे पारंपरिक खेल खेलता नहीं तो बच्चा रे एक दूसरा सु पहचान होती ही, एक दूसरा ने पहचान करावता। हाँ और एक खेल मनोरंजन ही नहीं बल्कि अपने स्वास्थ्य, मित्रता और संस्कृति सु जुड़ोड़ एक माध्यम हो जो टाबरिया ने ध्यान पड़तो कि किन टेम कई होया करे, कई खेल खेल लिया करे, आपस में प्रेम की कर लिया करे हैं।
1: बिल्कुल सही क्यों। और जब दोपहर में तावड़ा पड़ता उन टाइम आपा घर में बैठने जो इंडोर गेम्स होता जो कैरम बोर्ड हो गया ऐ चीजें खेलता, और जब शाम हो जाती तो शाम रे पूरी गली मोहल्ला रे मायने बच्चा री धूम रहती। और आजकल तो गलियां बिल्कुल सुनी नजर
0: सुने
1: आवे,
0: दिखे
1: बच्चा कटी
0: हैं
1: नींग ही को नहीं आवे क्योंकि वे तो फोन सो
0: फोन
1: आ
0: दे
1: गई
0: में।
1: को नहीं होवे। तो कटिन कटी अपने वो वापस नवाचार लाना जरूरी है कि बच्चा ने फोन थोड़ा दूर करने, अपना जो पारंपरिक खेल है वे पाचा बच्चा ने खेलाना है।
0: बिल्कुल।

0: तो भावना, अपन गर्मी
1: हाँ
0: छुट्टियां की बात करी तो
1: हाँ
0: गर्मी छुट्टियां में अपन नानी घर जाता,
1: हाँ
0: और
1: बिल्कुल
0: नानी घर
1: जाता।
0: की तो लाड लड़ नानी अपन लड़ाती नहीं, जो
1: हाँ
0: आम रो तो ढेर लगा देती, और हर
1: हाँ
0: बच्चे ने, चाहे बच्चों का ही बूढ़ो हो कोई भी हो, आम रो बहुत शौक हुए। और आम आपरे गुण और स्वाद रे कारण ही फला रो राजा है जी को कहलाया करे। आम रो नाम सुनते ही मुँह रे मायने पानी आ
1: पानी आ
0: जावे। तो
1: जाया करे है।
0: विश्व रे 60 सू भी ज्यादा देशा रे मायने जी को आम री पैदावार होया करे। इन मीठे रसीले फल रो जादू इन कदर है कि पूरी दुनिया रे और आपरे वश्य मायने कर रियोड़ा है। इन्हीं
1: हाँ
0: बल पर इन्हें कहे जाया करे कि आम केवल आम नहीं है बल्कि कुछ खास है, और
1: हाँ
0: आम री तरह तरह री किस्मा भी अपन अट देखने मिलिया करे। तो आम री किस्मा भी बहुत अजीबो गरीब है, तो आज थोड़ी सी जानकारी वीरी भी दे दा आप सखिया ने।
1: बिल्कुल विया करे। पूनम आम री बात करे तो जिदे वो काचो आम होवे है, केरी होवे है, बिनो आम पन्नो बना दा नहीं तो मुंडे में सुबना तो बना तो अपने पानी आ जाया करे है। और आम री पक्यूड़ा आम री तो बात करो तो वो मिठास रो खजाने जो विया करे है। तो कह नहीं कि अटे कई तरह रा आम विया करे, जैसे कि केशरी आम है वो मीठो तो वही है, बिन साथे खुशबू भी बिनी बढ़िया विया करे, बिन गुद्दो है वो भी अच्छा होया करे, और बिन रस है वो बढ़िया निकलिया करे है। बी जी दशहरी आम है तो बीरो का ये कि बिनी पहचान करन वास्ते बिनो छिलको हुए वो पतलो होया करे है, और बीरा जखा अंदर रेसा होया करे वे भी कम होया करे, और खाना रमीने स्वाद मीठो और मुलायम होया करे देखन रमीने। बे ही बात कर ला कि अब हापुस आम है तो हापुस आम तो हगड़ो मैंगो और बढ़िया होया करे है आम, इरी खुशबू अलग ही जिया करे, मीठी अणुती लगे, जद पहुंगा तो मीठी अणुती लगे और छोकी विया करे है।
0: बिल्कुल। अब बात करो गुलाब खास की, तो इन वैरायटी रे मैंने गुलाबी रंग और गुलाब जड़ी खुशबू और स्वाद रे कारण इन रो नाम है जिको गुलाब खास है। और
1: हाँ
0: बात करो तोतापुरी आमरी, तो तोता रे चौच जड़ी नोक और रंग रे कारण इन्हें तोतापुरी आम कहया करे है। और
1: हरो रंग
0: सफेद,
1: भी आ करे।
0: हाँ, और
1: हाँ
0: एकदम आगू है जो नुकीलो है करे, लगे तोता री चौच है। और
1: हाँ
0: सफेदा आम, इन आम रो छिलको हल्की सफेदी वाड़ो होवे, इन वास्ते इन्हें सफेदा कहया जाया करे है। सिंदूरी आम, जिन रो छिलको हरे रंग रे अलावा सिंदूरी रंग भी दिखाया करे है।
1: हाँ
0: और एक आम होवे नूर जहां आम, वो बहुत ही दुर्लभ कीमती और विशाल आकार की किस्म आम है। वजन इनो 2-4 किलो तक होया करे, और मध्य प्रदेश रे अलीराजपुर जिला रे कठीवाड़ा क्षेत्र रे महीने वो पायो जाया करे।
1: अच्छा
0: और इनकी कीमत प्रति फल री बात करा तो 1,000 से 3,000 रुपया होया करे है।
1: बड़ो महंगो भी आ करे।
0: हाँ, पर स्वाद रे महीने मीठो और शानदार खुशबू होया करे नूर जहां आम री।
1: और अभी यही देखो की बात करा चौसा आम री, तो चौसा आम है वो कहने के जूस या अमरस बनाने वास्ते इन्हें काम में लीजिया करे, भी मैंने कहने के वो गुद्दो गणो या करे इन वास्ते इन मैंने जूस गणो निकलिया करे है। तो ए जदे आम अपा खरीदानी तो कई खरीदता टाइम कई बात आ रही अपने सावधानी रखनी भी जरूरी हुआ करे, जैकि आप आम खरीद रहे हो तो खुशबू सूंघन जरूर खरीदना चाहिए, क्योंकि अपने ध्यान पड़ जावे कि वो मीठो है कि खट्टो है नहीं। और अगर बहुत ज़्यादा चमकदार आम आपने दिख रही है तो बिसु अपने बचनो चीजें, क्योंकि कई केमिकल्स वाला पकियोड़ा भी होवे है बिहू चमक आ जाया करे है। और हाथ सु हल्को सी दबान देखनो चीज, हल्को हल्को सी दबे तो वो कहने के वो मुलायम है तो इन वास्ते वो चोखो वाला और रसदार भी होवेला। और कई बार आप आम ले रहे हाँ तो आप देखा नहीं कि काला दब्बा हुए कई जगह कटियोड़ा हुए है, तो भी आम लेनो अपने बचनो चाहिए है।
0: बिल्कुल। और हमेशा जब भी आप आम खरीदने लावा तो विने चोको धोन ठंडा पानी रे मायने माटी रो जी को पतीलो
1: हाँ
0: होया करो, उन मायने भिगोन रख देना ताकि जो तासीर है वह ठंडी हो।

0: बिल्कुल, एसी तो लाग जाला भावना, पर
1: हाँ
0: एसी सीधा गर्मी में बारे मत जाई जो।
1: नहीं तो कहने के वाह हो जाला।
0: थोड़ा
1: अब
0: सा
1: बाकी
0: नॉर्मल तापमान में रहने पचे एकदम गर्मी में बाहर निकल जाओ,
1: सही
0: ताकि कोई
1: बात है,
0: शारीरिक परेशानी अपने नहीं
1: परेशानी
0: आवे।
1: नहीं होगा।
0: तो इन बातों के साथ ही आज जो कार्यक्रम का समय भी है वो भी पूरा होवन लाग गयो है। तो आपरी दोनों सखिया पूनम देवड़ा
1: और
0: और
1: भावना लखारा
0: नेदिराव सी चाला
1: चाला
0: राम
1: राम राम।
0: राम।

0: अभी ग्रामीण महिलाएं सुन रही थी अपना कार्यक्रम गणगौर। यह आकाशवाणी का जोधपुर केंद्र है। दिन के 2:15 होने को हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के चुनाव आयोग के फैसले को बरकरार रखा। न्यायालय ने कहा ये जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुरूप है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बढ़ते तापमान के मद्देनजर नागरिकों से सावधानी बरतने का आग्रह। मौसम विभाग ने हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के विदर्भ में भीषण लू की संभावना व्यक्त की। भारत और कनाडा ने द्विपक्षीय व्यापार को 2030 तक 50 अरब अमरीकी डॉलर तक बढ़ाने के साझा लक्ष्य की पुष्टि की। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक मामले में 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया। अमेरिकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने अमेरिका ईरान वार्ता में संभावित मध्यस्थ के रूप में पाकिस्तान की भूमिका की विश्वसनीयता पर सवाल उठाया। उन्होंने इसराइल के प्रति पाकिस्तान के लंबे समय से चले आ रहे विरोध का हवाला दिया। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम एलिमिनेटर मैच में सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला होगा। अब समाचार विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि निर्वाचन आयोग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुच्छेद 324 और उसके अधीन निर्मित नियम के तहत एसआईआर करवाने की शक्ति रखता है। एक रिपोर्ट।
2: मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की एक पीठ ने उन रिट याचिकाओं पर फैसला सुनाया जिनमें पिछले साल जून महीने में चुनाव आयोग द्वारा बिहार में एसआईआर आयोजित करने के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया का उद्देश्य स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लक्ष्य को हासिल करना है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत द्वारा सुनाए गए फैसले में कहा गया कि विवादित प्रक्रिया को केवल अमान्य नहीं कहा जा सकता है क्योंकि यह नियमित पुनरीक्षण के लिए निर्धारित सामान्य तौर तरीकों के अनुरूप नहीं है। इसलिए नहीं कहा जा सकता है कि निर्वाचन आयोग ने अपनी वैधानिक शक्तियों से अधिक कार्रवाई की है। न्यायालय ने इस तर्क को खारिज कर दिया कि चुनाव आयोग द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और मतदाता पंजीकरण नियम 1960 के विपरीत थी। न्यायालय ने इस तर्क को भी खारिज कर दिया कि इस प्रक्रिया से मतदाता सूचियों में पहले से मौजूद व्यक्तियों की नागरिकता की अनुमानित मान्यता समाप्त हो जाती है। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: भारतीय जनता पार्टी ने एसआईआर को पूर्णतः संवैधानिक करार देने के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत किया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने इस फैसले को कांग्रेस समेत विपक्ष की संवैधानिक पराजय बताया। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर की प्रक्रिया 20 जून से शुरू होगी। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि मतदाता सूची का मसौदा 5 अगस्त को और अंतिम मतदाता सूची इस वर्ष 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। श्री कुमार ने बताया कि बूथ स्तर के अधिकारी बीएलओ 30 जून से दिल्ली की मतदाता सूचियों के सत्यापन के लिए घर घर जाकर सर्वेक्षण करेंगे।
3: कमीशन की तरफ से दिल्ली में एसआईआर टाइम शेड्यूल लॉन्च हो चुका है जो कि 20 जून से शुरू होगा और 7 अक्टूबर को हमारा फाइनल इलेक्टोरल रोल पब्लिश होगा। तो इसमें जो हाउस टू हाउस विजिट है बीएलओस की वो हमारी 30 जून से शुरू होगी और 29 जुलाई तक चलेगी। इस हाउस टू हाउस शेड्यूल में बीएलओ हर इलेक्टर के यहाँ जाएंगे जो भी उनका एड्रेस इलेक्टोरल रोल में है और 2 फॉर्म लेके जाएंगे इन्यूमरेशन फॉर्म। एक फॉर्म में इलेक्टर ने अपनी डिटेल भरनी है और अपने पास रखना है, दूसरा फॉर्म भर के बीएलओ को दे देना है और दोनों फॉर्म पे बीएलओ काउंटर साइन करेंगे एक्नोलेजमेंट के लिए।
1: दिल्ली के मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि मतदाताओं

0: को भरे हुए जनगणना प्रपत्र ऑनलाइन जमा करने की सुविधा भी मिलेगी। श्री कुमार ने कहा कि सत्यापन प्रक्रिया के हर चरण में जांच पड़ताल की व्यवस्था है। अधिक ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: एसआईआर का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची से न छूटे और कोई भी अपात्र व्यक्ति मतदाता सूची में शामिल न हो। मतदाताओं की भागीदारी को सुगम बनाने के लिए जागरूकता अभियान और विशेष

0: के लिए जागरूकता अभियान और विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे ताकि मतदाताओं को जनगणना प्रपत्र जमा करने में सहायता मिल सके। आम जनता की सुविधा के लिए दिल्ली में वर्ष 2002 में हुए अंतिम विशेष गहन पुनरीक्षण की मतदाता सूची आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। इस प्रक्रिया में 1 अक्टूबर तक 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी मतदाताओं को शामिल किया जाएगा। सत्यापन प्रक्रिया के हर चरण में जांच की व्यवस्था रहेगी और राजनीतिक दलों को बूथ स्तर के एजेंटों के माध्यम से इसमें शामिल किया जाएगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: केंद्र सरकार ने आज सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि ट्रांसजेंडर के अधिकारों के संरक्षण संशोधन अधिनियम 2026 के खिलाफ उच्च न्यायालयों में उसकी कई याचिकाएं लंबित हैं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष इस मामले का उल्लेख करते हुए अनुरोध किया कि स्थानांतरित की जाने वाली याचिकाओं को शुक्रवार को सूचीबद्ध किया जाए। राजस्थान उच्च न्यायालय ने आसाराम बापू को आज आंशिक राहत देते हुए पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत सामूहिक दुष्कर्म, सामूहिक यौन उत्पीड़न और आपराधिक साजिश से संबंधित आरोपों से बरी कर दिया। हालांकि न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत नाबालिग से दुष्कर्म मामले में उसकी सजा को बरकरार रखा है। इस मामले में आसाराम की आजीवन कारावास की सजा जारी रहेगी। उच्च न्यायालय ने आसाराम को आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया है। वो फिलहाल अस्थायी जमानत पर है, जिसे सप्ताह की शुरुआत में 7 दिन के लिए बढ़ा दिया गया था। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के अलग अलग हिस्सों में बढ़ते तापमान को देखते हुए लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने लोगों से कहा कि वे भरपूर पानी पिएं और घर से बाहर निकलते समय अपने साथ पानी जरूर रखें। उन्होंने सुझाव दिया कि जो भी प्यासा हो उसे एक गिलास पानी जरूर पिलाएं। प्रधानमंत्री ने सभी से यह भी कहा कि वे अपने परिवार और प्रियजनों के संपर्क में रहें और उनका हालचाल पूछते रहें। दोपहर की तेज धूप में बाहर निकलने से बचें और जितना हो सके आराम करें। उन्होंने सभी से आग्रह किया कि जानवरों और पक्षियों के लिए घरों, बालकनी, छतों, दुकानों या दफ्तरों के बाहर पानी से भरा एक छोटा बर्तन जरूर रखें। प्रधानमंत्री ने लोगों से इन मुश्किल दिनों में पूरी संवेदनशीलता और करुणा के साथ एक दूसरे का ख्याल रखने का अनुरोध किया। मौसम विभाग ने हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के विदर्भ में कुछ स्थानों और दिल्ली में भीषण लू की संभावना व्यक्त की है। पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, कोंकण और गोवा, ओडिशा, सौराष्ट्र, कच्छ, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारिकाल में गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। राजस्थान में भीषण गर्मी के बीच आज राज्य के 5 जिलों में लू की चेतावनी जारी की गई है। एक रिपोर्ट।
2: झुलसाने वाली गर्मी से प्रदेश का ज्यादातर हिस्सा प्रभावित है। जयपुर, कोटा, जोधपुर, नागौर, बीकानेर और दौसा सहित कई शहरों में न्यूनतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के ऊपर मापा गया। करीब 33 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ कोटा की रात सबसे गर्म रही। भीषण गर्मी और लू को देखते हुए प्रशासन की ओर से सड़कों पर पानी का छिड़काव करने, आश्रय स्थल बनाने और पीने के पानी की व्यवस्था लगातार की जा रही है। चिकित्सा संस्थानों में भी लू और तापघात के मरीजों के लिए बेड आरक्षित करने के साथ आवश्यक दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम गंगतोक में होने वाले सिक्किम विश्वविद्यालय के 7वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर और मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग भी इस समारोह में शामिल होंगे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सीबीआई ने इस मामले में अब तक दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम, नासिक, पुणे, लातूर और अहिल्यानगर से कुल 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। नीट प्रश्न लीक मामले में लातूर के रहने वाले डॉ मनोज शिरोडे को भी गिरफ्तार किया गया है। सीबीआई के अनुसार उन्होंने एक कोचिंग केंद्र के मालिक के बेटे सहित 3 छात्रों को आरोपी पीवी कुलकर्णी रसायन विज्ञान के प्रश्न दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। गिरफ्तार किया गया दूसरा आरोपी तेजस हर्षद कुमार शाह है, जो पुणे स्थित एक कोचिंग सेंटर डॉ अभंग प्रभु मेडिकल एकेडमी में फिजिक्स का

0: गलती है। उसे नीट परीक्षा के लीक हुए भौतिक विज्ञान के प्रश्न के आरोपी मनीषा हवलदार से मिले थे। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने केरला में पूर्व मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के आवास सहित कई स्थानों पर जांच शुरू कर दी है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने आज सुबह से तिरुवनंतपुरम में पूर्व मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के आवास सहित कई स्थानों पर निरीक्षण शुरू कर दिया है। केरलम में 10 से अधिक जगहों पर तलाशी और निरीक्षण की कार्रवाई चल रही है। हालांकि ईडी की ओर से अब तक इन कार्रवाइयों के बारे में कोई आधिकारिक जानकारी साझा नहीं की गई है। इस बीच केरलम हाईकोर्ट ने कल प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी। यह याचिका केरलम के कोच्चि स्थित एक निजी कंपनी के अधिकारियों द्वारा दायर की गई थी। ईडी की जांच उस निजी कंपनी के परिसरों में भी जारी है। तिरुवनंतपुरम से स्मिति एम पुलरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मीनाक्षी।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @HIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कनाडा की अपनी यात्रा के दूसरे दिन टोरंटो में कनाडा के वरिष्ठ नेताओं और संस्थागत निवेशकों के साथ कई उच्च स्तरीय बैठकें की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने कहा कि इस बैठक का उद्देश्य द्विपक्षीय सहयोग को प्रगाढ़ बनाना और कार्यान्वित क्षेत्रों में निवेश तथा तकनीकी साझेदारी को बढ़ावा देना है। इस यात्रा के दौरान श्री गोयल कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू से मुलाकात की। मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों ने द्विपक्षीय व्यापार को 2030 तक 50 अरब डॉलर तक बढ़ाने के लक्ष्य की पुष्टि की। प्रवासी भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने भारत कनाडा व्यापार को मजबूत करने में कनाडा में रह रहे भारतीय प्रवासियों की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया।
2: भारत और कनाडा के बीच साझेदारी की सबसे बड़ी ताकत उनकी मजबूत लोकतांत्रिक नींव है। दोनों देश इस बात पर विश्वास करते हैं कि जब सशक्त संस्थाएं कानून के शासन को मजबूती से कायम रखती है, तब दुनिया के सामने यह एक उदाहरण बनता है कि अच्छे मित्र और भरोसेमंद साझेदार किस तरह साथ मिलकर काम करते हैं। दोनों देशों की सरकारों, संस्थाओं, व्यवसायों और आम लोगों के बीच जो आपसी विश्वास और सहयोग है, वही इस रिश्ते को और अधिक मजबूत बनाता है।
0: संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वतनेनी हरीश ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान की कड़ी आलोचना की है। श्री हरीश ने कहा कि पाकिस्तान को यह स्वीकार करना होगा कि सीमा पार आतंकवाद को प्रायोजित करने के परिणाम उसे भुगतने होंगे।
3: पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ युद्ध, बिना उकसावे की आक्रामक कार्रवाइयों और लगातार सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देकर संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के सिद्धांतों का उल्लंघन किया है। हजार घाव देकर भारत को कमजोर करने की उसकी नीति आतंकवाद, धार्मिक कट्टरता और भारत विरोधी गतिविधियों को लगातार बढ़ावा देने की उसकी सोच को दर्शाती है।
4: Anti-India rhetoric has continued unabated since its creation.
0: पाकिस्तान का अब्राहम समझौते में शामिल होने से इनकार करने की रिपब्लिकन सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने कड़ी आलोचना की है। रिपब्लिकन सेनेटर ग्राहम ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ईरान से संबंधित किसी भी कूटनीति में पाकिस्तान की भूमिका अनुचित है। आईपीएल क्रिकेट में आज मोहाली के न्यू चंडीगढ़ में सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच एलिमिनेटर मैच खेला जाएगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से होगा। विजेता टीम शुक्रवार को दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटंस से खेलेगी। फाइनल मैच 31 मई को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के निर्वाचन आयोग के फैसले को बरकरार रखा। न्यायालय ने कहा ये जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुरूप है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बढ़ते तापमान के मद्देनजर नागरिकों से सावधानी बरतने का आग्रह। मौसम विभाग ने हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के विदर्भ में भीषण लू की संभावना व्यक्त की। भारत और कनाडा ने द्विपक्षीय व्यापार को 2030 तक 50 अरब अमरीकी डॉलर तक बढ़ाने के साझा लक्ष्य की पुष्टि की। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया। अमरीकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने अमरीका ईरान वार्ता में संभावित मध्यस्थ के रूप में पाकिस्तान की भूमिका की विश्वसनीय

0: नेता पर सवाल उठाया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 564.97 मीटर अर्थात 531 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल से बोल रहे हैं। दिन के 2:30 हो चुके हैं। आइए अब सुनते हैं NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम एपिसोड संख्या 1293।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं का एक बार फिर से स्वागत है उमंग कार्यक्रम में। विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। कांडला बंदरगाह कच्छ से जगदीश जौहरी जी ने सुविचार भेजा है, लिखते हैं,
2: जो बदला जा सके उसे बदलिए, जो बदला ना जा सके उसे स्वीकार कर लीजिए, और जो स्वीकार न किया जा सके उससे दूर हो जाइए, लेकिन हर हाल में खुद को खुश रखिए, क्योंकि खुश रहना आपकी जिम्मेदारी है।
3: बहुत ही सुंदर विचार, आपको धन्यवाद। आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है पोटिया कला दुर्ग से संजय कुमार साहू जी का।
2: ग्राम नागर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, प्रेम, पूजा, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा और बेबी आराध्या साहू।
3: और पगबंधी जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से कन्हैया लहरे और सेवती लहरे।
2: भदोही उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार विद्यार्थी।
3: ग्राम व पोस्ट बिरखेरा जिला हमीरपुर उत्तर प्रदेश से मनीराम पाल, मलखान सिंह पाल, सुधांशु पाल और हिमांशु पाल। बहुत बहुत धन्यवाद आपके संदेशों के लिए। और अब प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए। श्रोताओं, आज एक बार फिर से हम रोचक जानकारी लेकर आए हैं दुनिया के एक और बेहद प्रसिद्ध फूल की। तो विमलेश जी, कल हमने बात की थी चेरी के फूलों की।
2: जी, तो अब ये बताइए हमारे श्रोताओं को, आज हम किस फूल की बात करेंगे?
3: विमलेश जी, आज हम बात करेंगे ट्यूलिप फूल की। ये भी दुनिया के प्रसिद्ध फूलों में से एक है।
2: वाह जी जी, भला ट्यूलिप फूलों की सुंदरता को कौन नहीं जानता।
3: बिल्कुल।
2: तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। पहला प्रश्न श्रोताओं की ओर से मेरा ये है, ट्यूलिप फूल मूल रूप से किस देश का है, यानी इसकी उत्पत्ति का स्थान कहाँ माना जाता है?
3: विमलेश जी, वैसे दुनिया भर में ये माना जाता है कि ट्यूलिप फूल मूल रूप से नेदरलैंड्स या हॉलैंड का है, लेकिन यह सच्चाई नहीं है
2: जी।
3: तो जरा आप ही बताइए श्रोताओं को कि सच्चाई क्या है।
2: जी, श्रोताओं को बताना चाहती हूँ कि दरअसल ट्यूलिप फूल मूल रूप से मध्य एशिया के कजाकिस्तान देश का माना जाता है। यहाँ से ट्यूलिप तुर्की पहुँचा और फिर सारे यूरोप में फैल गया। तो अजीत जी, अब बात करते हैं ट्यूलिप नाम कैसे पड़ा, अब आपकी बारी।
3: जी, अब मेरी बारी। तो बता दूं कि ट्यूलिप शब्द आया है तुर्की और फारसी शब्द दुलबंद से, जिसका अर्थ होता है लंबी पगड़ी। यदि इस फूल की खुली पंखुड़ियों के मोड़ को देखें तो ये सच में मोड़दार लंबी पतली तुर्की पगड़ी जैसा ही दिखता है। 16वीं शताब्दी में जब ये फूल तुर्किस्तान के ओटोमन साम्राज्य में पहुंचा तो राजनयिक और सामाजिक रूप से प्रतिष्ठित लोगों ने इसके समान दिखने वाली टोपियां बनवाई, जिसे तुलिपा कहा जाता था। बाद में ये शब्द फ्रेंच, डच और अंग्रेजी भाषा में मिलकर ट्यूलिप बन गया।
2: जी, रंग, आकार और पंखुड़ियों के आधार पर इस फूल की 3000 से भी अधिक प्रजातियां दुनिया में पाई जाती हैं। श्रोताओं, आपको बता दें कि ट्यूलिप फूल कई रंगों के होते हैं, जैसे लाल, सफेद, गुलाबी, बैंगनी और नारंगी। लेकिन सबसे प्रसिद्ध और महंगा है काले रंग का ट्यूलिप।
3: जी,
2: ये रात में ही खिलता है, इसलिए इसे क्वीन ऑफ द नाइट कहा जाता है। हर रंग का अर्थ है।
3: जैसे
2: लाल रंग ट्यूलिप प्रेम का, पीला ट्यूलिप मित्रता का, सफेद ट्यूलिप क्षमा और शांति का, और बैंगनी ट्यूलिप राजसी गरिमा का।
3: जी, इसीलिए अक्सर अवसर और भावना के अनुसार ये ट्यूलिप फूल किसी को दिए या भेजे जाते हैं।
2: जी,
3: अब विमलेश जी, एक और प्रश्न है मेरे पास जिसका उत्तर हमारे श्रोता जरूर जानना चाहेंगे, विशेषकर वे जो बागवानी में रुचि रखते हैं। और मेरा प्रश्न ये है कि ट्यूलिप फूल कैसे उगाया जाता है?
2: अजीत जी, सबसे रोचक बात तो ये है कि ट्यूलिप फूल बीज से नहीं उगता था, लेकिन कंद या बल्ब से उगाया जाता है। एक स्वस्थ कंद कई वर्षों तक फूल उगा सकता है। जहाँ तक इन फूलों के खिलने का प्रश्न है, ये फूल मार्च से मई तक खिलते हैं।
3: जी श्रोताओं, इन फूलों की दुनिया भर में भारी मांग है। ये व्यावसायिक या कमर्शियल फूल माने जाते हैं और इनका व्यापार करोड़ों डॉलर का है।
2: अजीत जी, जब आपने कमर्शियल

0: पुल की बात की तो मुझे एक बहुत ही रोचक घटना याद आ गई।
1: हाँ, वो क्या?
0: 17वीं सदी में नेदरलैंड्स में एक अनोखी आर्थिक घटना हुई जिसे ट्यूलिप मेनिया कहा जाता है।
1: ये घटना क्या थी?
0: उन दिनों यूरोप में ट्यूलिप फूलों की भारी मांग थी। मांग इतनी अधिक थी कि कहते हैं कि ट्यूलिप फूल के मात्र एक कंद की कीमत लगभग एक घर की कीमत के बराबर हो गई थी।
1: ये तो बड़ी रोचक जानकारी विमलेश जी। श्रोताओं, नेदरलैंड्स के रंग बिरंगे फूलों के खेत दुनिया भर में बहुत प्रसिद्ध हैं। मीलों तक लहराते हुए ट्यूलिप फूलों के खेतों को देखने के लिए दुनिया भर से पर्यटक आते हैं। जहां तक भारत की बात है, भारत का सबसे प्रसिद्ध ट्यूलिप गार्डन है इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन।
0: तो अजीत जी, समाप्त करने से पहले एक और बड़ी रोचक बात श्रोताओं से साझा कर लेते हैं। ट्यूलिप के फूल आमतौर पर गंधहीन होते हैं। कुछ प्रजातियां ही हैं जिनमें बहुत हल्की सुगंध आती है। तापमान और रोशनी के अनुसार अपनी पंखुड़ियां खोल या बंद कर सकते हैं। ये अक्सर रात को लगभग बंद हो जाते हैं
1: और सुबह होते ही अपनी पंखुड़ियां खोलकर सूर्य का स्वागत करते हैं, मानो कह रहे हो गुड मॉर्निंग सन।
0: तो श्रोताओं, ये थी आज की जानकारी ट्यूलिप के सुंदर फूलों की। अब आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से।
1: तो हमारा प्रश्न है श्रोताओं कि मूल रूप से ट्यूलिप फूल किस देश का है और इसका नाम ट्यूलिप क्यों पड़ा? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: मूल रूप से ट्यूलिप फूल किस देश का है और इसका नाम ट्यूलिप क्यों पड़ा?
1: भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है। आप हमारे ईमेल यानी audio@cieet.nic.in पर भी अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं।
0: इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIET NCERT को जरूर फॉलो कीजिए। इससे आपको हमारी गतिविधियों की जानकारी मिलती रहेगी।
1: और अब बारी है श्रोताओं आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो हमारा पहला कार्यक्रम है समझदारी।
0: उर्दू की कक्षा 2 की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में संदेश दिया गया है कि आपस में प्रेम और सहयोग की भावना के साथ रहने में ही समझदारी और सबकी भलाई है।
1: जी।
2: वकार पढ़ने में बहुत होशियार था। एक दिन उसने अपने वालिद से 50 रुपए मांगे। उसके वालिद ने पूछा,
3: बेटा तुम 50 रुपयों का क्या करोगे?
4: अब्बा, मुझे इन रुपयों की जरूरत है। मुझे एक पेंसिल, एक रबर और एक पेंसिल तराश खरीदना है।
3: अच्छा ठीक है, मैं कल तुम्हें ये सब चीजें खरीद कर दे दूंगा।
4: अब्बा, मुझे इन चीजों की अभी जरूरत है। मुझे स्कूल का काम करना है।
3: लेकिन बेटा, क्या तुम ये सब चीजें खुद खरीद लोगे? क्या तुम्हें रुपयों को जोड़ना और घटाना आता है?
4: जी हाँ, मुझे रुपयों को जोड़ना और घटाना अच्छी तरह से आता है।
3: अच्छा, जरा ये तो बताओ कि इन रुपयों से तुम ये चीजें किस किस तरह खरीदोगे?
4: इन 50 रुपयों से मैं 20 रुपए की एक कॉपी, 5 रुपए की पेंसिल, 5 रुपए की रबर और 5 रुपए की पेंसिल तराश खरीदूंगा।
3: बेटा, अब जोड़ कर बताओ कि कुल कितने रुपए हुए?
4: 20 रुपए की कॉपी, 5 रुपए की पेंसिल, ये हुए 25 रुपए। अब इन 25 रुपयों में 5 रुपए रबर के जोड़ दिए तो हो गए 30 रुपए। इन 30 रुपयों में 5 रुपए पेंसिल तराश के जोड़े तो कुल हुए 35 रुपए।
3: शाबाश बेटा, तुमने बिल्कुल ठीक हिसाब लगाया है। अच्छा तो ये बताओ कि 50 रुपए में से तुमने 35 रुपए का सामान खरीद लिया, अब तुम्हारे पास कितने रुपए बाकी बचे?
4: 50 रुपयों में से 35 रुपए घटाए तो बचे 15 रुपए।
3: तुम्हें तो जोड़ना और घटाना खूब आता है। ये लो 50 रुपए और ये सभी चीजें खरीद कर ले आओ।
1: प्रिय मित्र, अब कुछ हमारे सोचने और करने के लिए। जब हम छोटे बच्चों के हाथ में कुछ पैसे देते हैं तो क्या बाद में उस पैसे का हिसाब उनसे पूछते हैं? यदि हमारा जवाब हाँ है तो भाई ये तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि ऐसा करने से बच्चे में समझदारी, जिम्मेदारी और ईमानदारी का जज्बा बढ़ता है। और हाँ, बच्चों,

0: जब घर के बड़े आपको पैसे देते हैं तो क्या आप उन्हें खुद जाकर पैसे का हिसाब देते हैं? यदि हाँ तो फिर भाई इसके लिए तो आपको शाबाशी देनी चाहिए। बड़े पूछें या ना पूछें, आप हिसाब जरूर दीजिए। आई ना बात समझ में?
1: मश्क।
2: होशियार,
1: समझदार।
2: पेंसिल तराश,
1: पेंसिल को छीलने वाला शार्पनर। सोचिए और बताइए, वकार ने अपने वालिद से 50 रुपए क्यों मांगे?
2: वकार को क्या क्या चीजें खरीदनी थी?
1: सब चीजें खरीदने के बाद वकार के पास कितने रुपए बाकी बचे?
2: बेटे से सही हिसाब सुनकर वालिद ने क्या कहा?
0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम समझदारी। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, अकादमिक समन्वय डॉक्टर रिजवानुल हक, तकनीकी निर्देशन बटी लैंगलिंगडो, वाचन स्वर शिमाइला परवेज और परवेज गौहर, ध्वनि अंकन मयंक कुमार, निर्देशन विमलेश चौधरी, निर्माण जगबंधु जाना तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत। अभी आपने सुना कार्यक्रम समझदारी और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। हमारा अगला कार्यक्रम है कैप्टन विक्रम बत्रा।
3: इस कार्यक्रम में कारगिल युद्ध के दौरान अपार वीरता का प्रदर्शन करने वाले परमवीर चक्र विजेता कैप्टन विक्रम बत्रा के शौर्य का उल्लेख किया गया है कि किस प्रकार रणनीतिक और भौगोलिक रूप से कमजोर स्थिति में भी उन्होंने सियाचिन के टाइगर हिल पर तिरंगा फहराया और अपने प्राणों की आहुति दे दी।
4: साथियों, सन 1999 में हुआ कारगिल युद्ध एक ऐसा युद्ध था जिसमें सेना के युवा अधिकारी अग्रणी रहे। इन रणबांकुरों के साहस और शौर्य भरे कारनामों को जन जन ने पहचाना और इन रणबांकुरों की भारत की जनता से पहचान करवाई मीडिया ने। सन 1999 में मीडिया ने पूरे देश को सेना के साथ एक आत्मीय बंधन में बांध दिया। लोगों ने घर बैठे सैनिकों को मोर्चे पर लड़ते देखा।
5: साथियों, मैं हूं मेघना उपाध्याय और इस समय कारगिल की युद्ध भूमि से मैं आपसे मुखातिब हूं। जैसा कि आप इस समय देख रहे हैं, चारों ओर हमारी सेना का भारी जमावड़ा है। तो आइए बात करते हैं हमारे एक सैनिक से। तो आपने बताया कि आप छुट्टी पर जा रहे थे?
6: जी, पर हमारे लिए देश और पलटन पहले हैं, घर बाद में।
5: आप तो काफी समय से घर से दूर हैं, क्या घर की याद नहीं आती?
6: हाँ, याद तो आती है, परंतु देश की रक्षा हमारे लिए सब कुछ है। समाचारों से पता चल रहा है कि पूरा देश हमारे साथ है। जिस माँ के हम बेटे हैं उससे भी बड़ी माँ है हमारी भारत माँ। उसकी सुरक्षा को छोड़कर घर चले जाए हो नहीं सकता।
5: तो देखा साथियों, ऐसे हैं हमारे सैनिक, हमें इन पर नाज है।
7: वाह, अरे वाह, क्या बात कही है।
6: क्या बात है,
7: सुनकर ही जोश आ गया।
6: हाँ
7: भाई विक्रम, तुम तो अभी अभी छुट्टी पर आए हो और अब ये लड़ाई, शायद तुम्हें भी युद्ध में जाना पड़े। संभल कर रहना भाई।
8: युद्ध में तो जाने ही है दोस्त, तुम चिंता बिल्कुल मत करो। मैं या तो विजय तिरंगे को ऊंचा फहरा कराऊंगा या फिर तिरंगे में लिपट कराऊंगा।
4: ये शब्द थे कैप्टन विक्रम बत्रा के, जो कारगिल युद्ध के दौरान शेरशाह के नाम से भी मशहूर हुए। युद्ध के समय उनकी बहादुरी के किस्से सुन सुनकर लोग दंग रह गए। वे एक के बाद एक खतरनाक मिशन पर जाते रहे और देश एकजुट होकर उनकी सलामती की दुआ करता रहा। ऐसे थे 13वीं जम्मू कश्मीर राइफल के कैप्टन विक्रम बत्रा।

विक्रम बत्रा का जन्म 9 सितंबर 1974 को हिमाचल प्रदेश के छोटे से नगर पालमपुर में हुआ। हिमाचल एक ऐसा राज्य जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और खूबसूरती के लिए जाना जाता है। इतना ही नहीं, ये मनोरम राज्य जांबाजी के लिए भी प्रसिद्ध है। यहां के रणबांकुरों ने संकट की घड़ी में कुर्बानियां देकर इतिहास रचा है, दुश्मनों के छक्के छुड़ाए हैं। कारगिल युद्ध में इस राज्य के लगभग 30 जांबाजों ने शहादत देकर कुर्बानियों की परंपरा को आगे बढ़ाया है। और इसी पावन भूमि पर जन्म लिया हमारे इस परमवीर विक्रम बत्रा ने। विक्रम बचपन से ही निडर और साहसी थे। सन 1994 में विक्रम ने एनसीसी के सदस्य के रूप में गणतंत्र दिवस की परेड में भाग लिया और जब वहां से लौट कर आए तो वे अपना लक्ष्य निर्धारित कर चुके थे और वो था भारतीय सेना में भर्ती। जुलाई 1996 में विक्रम ने भारतीय सेना अकादमी देहरादून में प्रवेश लिया। आईएमए में ट्रेनिंग के दौरान बहुत सी चीजों ने उन्हें प्रभावित किया, जैसे वहां का अनुशासन, सैनिक प्रशिक्षण और उन पंक्तियों ने जो अकादमी की बरसों से चली आ रही परंपरा है। अपने देश की सुरक्षा, सम्मान और कल्याण हमेशा और हर बार सर्वप्रथम है। फिर है आपके सैनिकों का सम्मान, कल्याण और सुविधा। आपकी अपनी सुविधा, आराम और सुरक्षा हमेशा और हर बार आखिर में आते हैं। ये पंक्तियां विक्रम की भावनाओं, विचारों और कार्यों में रच बस गई थीं। 6 दिसंबर 1997 को उन्हें 13वीं जम्मू कश्मीर राइफल्स टुकड़ी में लेफ्टिनेंट के पद पर नियुक्त किया गया। युद्ध आरंभ हो गया था। एक जून 1999 को उनकी टुकड़ी कारगिल चली गई। कारगिल युद्ध के दौरान कैप्टन विक्रम बत्रा ने कई सैनिक अभियानों में अपनी टुकड़ी का नेतृत्व किया और हर मिशन में सफलता ने उनके कदम चूमे। कारगिल युद्ध के समय उन्होंने कई मिशन में भाग लिया, कई पर्वत चोटियों यानी पॉइंट्स पर अपूर्व शौर्य दिखाते हुए उन पर कब्जा किया। मिशन वन, दिन 12 जून 1999। कारगिल में तोलोलिंग नामक स्थान पर भीषण युद्ध चल रहा था। 25,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित ये चोटी सामरिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण थी। इस चोटी से दुश्मन श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग को लगातार निशाना बना रहा था। कैप्टन विक्रम बत्रा की यूनिट को वहां लड़ रहे सैन्य दल की सहायता के लिए भेजा गया। 2 रात भयानक युद्ध चला और हमारी सेना ने कैप्टन विक्रम बत्रा के नेतृत्व में हम्प पर कब्जा कर लिया। वहीं से विक्रम ने अपने भाई विशाल को, जिसे वे प्यार से कुशु कहते थे,

0: पत्र लिखा।
1: प्यारे कुशु, तुम रोज सुन रहे होगे कि यहां घमासान युद्ध चल रहा है। मैं 15,500 फीट की ऊंचाई पर दुश्मनों से लड़ रहा हूं। जान को पूरा खतरा है, कुछ भी हो सकता है। आज हम जीत तो गए हैं, लेकिन आज का दिन हमारी बटालियन के लिए दुख से भरा है, क्योंकि आज हमने एक अफसर को लड़ाई में खो दिया है। प्यारे कुशु, मां पिताजी को संभालना, क्योंकि यहां कुछ भी हो सकता है। तुम्हारा भाई विक्रम।
2: ऐसा था इस युवा सैनिक अधिकारी का हृदय। विजय के उल्लास में भी अपने साथियों को खोने की कसक उनके मन में थी। मिशन टू, दिन 19 जून 1999, स्थान 0.5140, 15,000 फीट ऊंची ये वो चोटी थी जहां से दुश्मन हमारे दो हेलीकॉप्टर गिरा चुका था। इसे जीतना बेहद जरूरी था, क्योंकि ऊंचाई पर होने के कारण इस पॉइंट से दुश्मन हमारी सेना को भारी नुकसान पहुंचा रहा था। हमारी सेना के लिए केवल एक रात का समय था। विक्रम ने अपने सैनिकों को उस पर्वत की खड़ी ढलान पर चढ़ने का आदेश दिया। सैनिक चुपचाप पहाड़ी पर चढ़ते रहे। सुबह के 3:15 का समय था। हमारे सैनिक शत्रुओं के बंकरों के समीप थे। तभी दुश्मन की ओर से रेडियो सिग्नल आया।
3: शेरशाह, तुम क्यों आ गए बीच में? अरे तुम में से एक भी जिंदा नहीं लौटेगा।
4: एक घंटे में ही तुम्हें मालूम चल जाएगा कि ऊपर कौन रहेगा।
3: अरे देख लेंगे।
2: कैप्टन विक्रम बत्रा का दुश्मनों के बीच भी इतना नाम था कि वे इन्हें उनके कूट नाम से भी जानते थे। दुश्मन को ये तो खबर थी कि भारतीय सैनिक उनकी तरफ बढ़े चले आ रहे हैं, पर शायद इस बात से वो बेखबर था कि हमारे सैनिक उनके इतने करीब हैं। विक्रम ने अपनी घड़ी की ओर देखा। 3:24 हो गए थे। 4:30 सूर्योदय हो जाएगा। उनके पास केवल 1 घंटे का समय था। बस फिर क्या था, उन्होंने दुश्मनों के बंकर पर धावा बोल दिया। और कुछ ही देर में विक्रम और उनके साथियों ने दुश्मन को वहां से खदेड़ दिया। 0.5140 पर अब हमारा कब्जा था। इस विजय के बाद एक रिपोर्टर ने उनसे पूछा,
5: कैप्टन विक्रम, 0.5140 की विजय के बाद कैसा एहसास हो रहा है?
1: मैं और अधिक चोटियों पर कब्जा करना चाहता हूँ। ये दिल मांगे मोर।
6: क्या बात कही है?
5: ये दिल मांगे मोर। हाउ नाइस। विक्रम जी, आप पर सारे देश को नाज है, और हमारी कामना है कि इसी तरह आपका विजय अभियान चलता रहे और चलता रहे।
1: धन्यवाद।
2: इस प्रसारण को पूरा देश देख रहा था। लाखों दर्शकों ने उनका उत्साह भरा उत्तर सुना। ऐसे समय में जब लोगों की आंखें आंसुओं से नम थी और दिल डर से सहमे हुए थे, विक्रम बत्रा के इस एक जवाब ने सबके चेहरों पर एक मुस्कान छोड़ दी। देश का बच्चा बच्चा अब उन्हें जानने लगा था।

0: और अब आई बारी उस मिशन की जिसने विक्रम बत्रा को अमर बना दिया। मिशन 3 टाइगर हिल्स पिंपल पोस्ट 6 जुलाई 1999 की शाम। 13वीं जम्मू कश्मीर राइफल्स की कमान एक बार फिर कैप्टन विक्रम बत्रा के हाथों में थी।
1: हमें जो सूचना मिली है उसके अनुसार एक बात पक्की है कि हमें दुश्मन पर पीछे से हमला करना होगा।
2: जी
1: चलो संभल कर अब मंजिल पर पहुंच गए हैं। इशारा मिलते ही टूट पड़ना।
3: जी सर।
1: देखो तुम यही पोजीशन संभालो।
3: जी सर।
1: और तुम दाहिनी तरफ जाओ।
3: जी सर।
4: हमला करो दुर्गा माता की।
0: दुश्मन उनके खूंखार हमले से घबराकर पीछे हटने लगा था। तभी विक्रम ने देखा कि उनका एक सहयोगी अफसर दुश्मनों से घिरा हुआ है। जब वो उन्हें बचाने के लिए बंकर से बाहर दौड़े, उनके एक सूबेदार ने उन्हें रोकना चाहा।
5: सामजी आप मत जाइए, मैं जाता हूं।
1: नहीं, तू भी बचवा रहा है, पीछे हट।
5: नहीं लेकिन साहब जी,
1: मैंने कहा ना पीछे हट जा। मैं जा रहा हूं।
5: साहब जी।
0: अभी विक्रम लेफ्टिनेंट नवीन को घसीटते हुए बंकर की ओर ले ही जा रहे थे कि दुश्मन की एक गोली उनकी छाती में आ लगी।
1: क्या हुआ तुम्हें? नहीं।
0: और तभी उन्होंने वीर गति पाई। उस दिन भारत ने पिंपल पोस्ट पर तो विजय पा ली, परंतु भारत मां का एक शेर सपूत शहीद हो गया। उनका पार्थिव शरीर पूरे सैनिक सम्मान के साथ जब उनके जन्म स्थान पालमपुर में लाया गया तो इस अमर शहीद के दर्शनों के लिए हजारों की भीड़ उमड़ पड़ी।

0: आज उस शिखर का नाम कैप्टन विक्रम बत्रा शिखर है। उनके असाधारण शौर्य के लिए कृतज्ञ राष्ट्र ने उन्हें मरणोपरांत देश के सर्वोच्च वीरता पदक परमवीर चक्र से सम्मानित किया। याद आती है एक बार फिर वही बात जो कैप्टन विक्रम बत्रा ने युद्ध में जाने से पहले अपने मित्र को कही थी।
1: मैं या तो विजय तिरंगे को ऊंचा फहरा कराऊंगा या फिर तिरंगे में लिपट कराऊंगा।
0: कैप्टन विक्रम बत्रा ने अपने दोनों वचन निभाए। उन्होंने दुश्मन को पराजित कर भारत के झंडे को 0.5140 पर फहराया और 0.4875 नंबर शिखर पर युद्ध में प्राण देकर बड़ी शान से तिरंगे में लिपट कर घर आए।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कैप्टन विक्रम बत्रा, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: श्रोताओं, अभी आपने सुना NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम मीडियम वेव 564.97 मीटर अर्थात 531 किलोहर्ट्ज़ पर। यह आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। दिन के 3 बज चुके हैं। आज की हमारी यह सभा यहीं संपन्न होती है। शाम 5 बजे आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए।

ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर अर्थात 531 किलोहर्ट्स पर। श्रोताओं, शाम के 5 बज चुके हैं। हमारी दूसरी प्रसारण सभा अब आरंभ होती है। इस सभा की शुरुआत में आइए सुनते हैं युवा साथियों का अपना पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी।

0: माने गर्भ
1: गुमेज है कि मैं राजस्थानी हूँ। हसरत जयपुरी जी की इन लाइन्स हूँ, मैं आज रे कार्यक्रम री शुरुआत करूँ। सचड़ा माइड भाषा रे इन कार्यक्रम में आप रो घणे मान स्वागत है। सब हेतालु श्रोता, आप सुन रहे हो युवा रो मन भावनो कार्यक्रम युवाणी। आज है बुधवार रो दिन और आज युवा करे खास निम्बोड़ी फरमाइशी कार्यक्रम, जिन में मैं आपने सुनावा माइड भाषा में लिखोड़ा चोखा चोखा गीत। यदि आप भी माने फरमाइशा भेजना चाहो, आप अपने मन पसंद रा गीत सुनना चाहो, तो आप माने मारा व्हाट्सएप रा नंबर माते मैसेज करने भेज सको। मारा व्हाट्सएप रा नंबर है 94133-29-359। और आज आपरे सागे मैं हाँ आपरा दो रेडियो दोस्त, मारो नाम है देवी सिंह और मारे सागे
2: भोम सिंह।

तो साथीड़ा, आप सुन रहे हो निम्बोड़ी फरमाइशी कार्यक्रम। मैं आपके साथ हूँ, आप रेडियो दोस्त भूम सिंह। तो साथीड़ा, एंड 1 घंटे रे कार्यक्रम में कोशिश कराला आप सब गड़ा री फरमाइश आने कार्यक्रम में शामिल करने री। तो आज री आप पहली फरमाइश आई है मेघवंशी नगर बादुकला जोधपुर सु। भेजन वाला है दिनेश सोडा, रुद्राक्ष, भाव्यांश, रमनदीप, निशा, अरप्रिया सोडा।

0: साधना, आज आप सुन रहे हो बुधवार दिन खास निम्बोली फरमाइशी कार्यक्रम। कई फरमाइशा माँ दूर पहुँचती हुई है, जिन्हें सेक्टर 8 कुरुक्षेत्र हमारे साथ जुड़िया है दीपक सैनी, प्रमिला अनुश्री सैनी।
1: टीकमगढ़ मध्य प्रदेश हूँ, ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी, सोनाली, सोनम और आशीष।
0: महादेव पारासू राजस्थानी की 3 फरमाइश लिखन भेजी है मीरा, सिमरन और योगेश कुमार।
1: कलानौर हूँ, नरेंद्र शर्मा, किरण, नितिन और मयंक शर्मा।
0: रघुनाथपुरा श्रीगंगानगर से माने फरमाइश लिखन भेजी है लालगिरी गोस्वामी और हेमलता।
1: भोपालगढ़ से हूँ, राजेंद्र दिवारिया, सोनाक्षी, आरती, किशन, जयकिशन, बनवीर सिंह, पुरोहित।

0: बायां सठानी देवातड़ा सो अपने सागे जुड़िया है जबर सिंह भाटी, ओमा कंवर ओम विजयपाल सिंह भाटी, शोभा कंवर चेतन सिंह भाटी और सोमपाल सिंह भाटी।
1: औखतायो है मोती नगर दिल्ली सु भेजन वाला है कविता अनिल गौरव अरमानसी अरोड़ा।
0: कला गांव से फरमाइश लेकर भेजी है सागरमल जी सोनी।
1: मुरादाबाद यूपी सु भेजन वाला है मुकेश कश्यप शीतल सोनू सुरेश राजपाल पंकज काजल सीमा लक्ष्य सोनी मोहिनी ऋतिक और बलवीर सिंह।
0: गांव धुंधाड़ा सो फरमाइश लेकर भेजी है अलादीन धुंधाड़वी।
1: खुड़ी हाउसिंग बोर्ड सु रमेश चंद्र चौहान मोहिनी चौहान कल्पित बेबी गर्वी और हिमांशु चौहान।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार सुबह 11 बजे मन की बात।

0: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह,
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: सदना आप सुन रहे हो युवा और खास प्रोग्राम युवाणिया। आप रे सागे, मैं हूँ आपरो साथी देवी सिंह। सदना हर प्रोग्राम में, राजस्थानी भाषा रे प्रोग्राम में, मैं आपसे बात करा करा आपने प्रदेश रे एक शहर रे उनारी खास बात आ रही। सदना आज आप रे सागे में ले रही हूँ उदयपुर। उदयपुर नाम जद आपने आगे आवे तो आंख्या आगे जिला, महल और ऊंचा ऊंचा पहाड़ और इन सबारे बीच में इन शहर री साफ सुथरी हवा और मिठास। मेवाड़ क्षेत्र रो घणो चहितो और समृद्धशाली शहर इन बीच बसोड़ो सिटी पैलेस और उनरे चारों ओर बनियोड़ी झीला आपरे मन ने पिघलाण री क्षमता राखे। अठेरी दीवारां पर बनियोड़ी कलाकृतियां और चित्र कोई फिल्मा री कहानियां सु कम कोनी। सामरे टेम राजस्थानी खाने रे आनंद रे सागे जद आपा राजस्थानी नृत्य रो लावो लेवा तो आपणो उठण रो मन वठे सु नहीं करे। आप राजस्थान रा यदि हो, यदि आप राजस्थान सु बाहर हो तो आप जरूर एक बार उदयपुर ने आप री खुद री आंखियां सु देखो। यदि आप कदे भी उदयपुर गया हो तो आप रो अनुभव आप मारे सागे जरूर साझा करजो। मारा व्हाट्सएप रा नंबर है 94133 29359।

0: साथ ही ना लोकधुन और लोकगीत जखी मिठास है वह मन ने मोह लेवे है, और आपरी फरमाइशा जखी लगो लग आ रही है, और आ फरमाइश आई है मधुबनी बिहार सू, भेजन वाला है मोहम्मद साबिर और साजिद अली।
1: रायगढ़ बिहार सू और खंडवा सू फरमाइश लेकर भेजिए उमा राज, पवन उमा, संजय उमा, दीपक, दुर्गा कुमारी और सपना।
0: राजकोट सू कौशल्या, सोनाली और सुरेश जोशी।
1: भोपालगढ़ से फरमाइश लेकर भेजिए राजेश दिवारिया, नंद किशोर, आरती, सोनाक्षी और किशन।
0: डुमरा बिहार सू आसमान सानी, आजमा परवीन।
1: जलालाबाद वेस्ट से फरमाइश लेकर भेजिए है सुरेश, पूनम, विशाल, प्रिया, दिसानी और निमित आहूजा।
0: बिलाई नगर सू अनुश्री प्रदीप।
1: गांव गुड़ा आखिराज, तहसील देसूरी से फरमाइश लेकर भेजिए है हकीम खान, मोहम्मद समीर, सानिया, नीलम और हुरमत।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी। ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर अर्थात 531 किलो हर्ट्स पर। श्रोताओं, इस समय शाम के 6 बजने वाले हैं। आइए सुनते हैं हिंदी में समाचार, उसके पश्चात अंग्रेजी में समाचार, जो कि हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। कृपया करें थोड़ी सी प्रतीक्षा।

0: मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने आज सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक पीडीएस को जारी रखने की अनुमति दे दी है। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह योजना राज्य एजेंसियों को अंतर्राज्यीय खाद्यान्न परिवहन में सहायता प्रदान करेगी, उचित मूल्य की दुकानों को मदद करेगी और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण में सहयोग करेगी।
1: इस प्रोग्राम में तीन बड़े सुधार आज अप्रूव हुए हैं। सबसे पहला, राज्य सरकारों के एजेंसीज राज्य में जो एफसीआई का बड़ा गोडाउन होता है वहां से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में डिविजन्स में फेयर प्राइस शॉप तक पहुंचाने का जो कॉस्ट होती है उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे। दूसरा, फेयर प्राइस शॉप्स है उनमें डीलर्स का रिम्यूनरेशन रखा गया था उसको बढ़ाने की जरूरत थी तो वो भी फैसला लिया गया। और तीसरा फैसला, टेक्नोलॉजी का यूज करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा सार्थक पीडीएस योजना के दूसरे चरण की मंजूरी को स्वागत किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि सरकार गरीबी उन्मूलन योजनाओं को अधिक पारदर्शी और सुविधाजनक बनाने के लिए उनमें प्रौद्योगिकी का समावेश कर रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। न्यायालय ने कहा है

है कि एसआईआर प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की खंडपीठ ने उन याचिकाओं पर फैसला सुनाया जिनमें पिछले साल जून महीने में निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार में एसआईआर आयोजित करने के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले को कांग्रेस समेत विपक्ष की संवैधानिक पराजय बताया। संघ लोक सेवा आयोग ने पहली बार सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 की अनंतिम उत्तर कुंजी जारी की है। आयोग ने कहा कि परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार 31 मई शाम 6 बजे तक upscionline.nic.in पर उपलब्ध प्रश्न पत्र आपत्ति पोर्टल के माध्यम से अपनी आपत्तियां प्रस्तुत कर सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए कम से कम दो भारतीय भाषाओं सहित तीन भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य करने संबंधी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की नीति को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करेगा। शीर्ष न्यायालय ने केंद्र सरकार, बोर्ड और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद को नोटिस जारी कर 2 सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी पेपर लीक मामले में आज और 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें महाराष्ट्र के लातूर का एक डॉक्टर और पुणे स्थित कोचिंग संस्थान का एक शिक्षक शामिल है। जांच एजेंसी ने पुणे के ही एक अन्य कोचिंग संस्थान के भौतिक विज्ञान शिक्षक को भी गिरफ्तार किया है। इस मामले में अब तक कुल 13 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कनाडा की अपनी यात्रा के दूसरे दिन टोरंटो में कनाडा के वरिष्ठ नेताओं और संस्थागत निवेशकों के साथ कई उच्चस्तरीय बैठकें की। श्री गोयल ने कहा कि इस बैठक का उद्देश्य द्विपक्षीय सहयोग को प्रगाढ़ बनाना और कार्यनीतिक क्षेत्रों में निवेश और तकनीकी साझेदारी को बढ़ावा देना है। मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों ने द्विपक्षीय व्यापार को वर्ष 2030 तक $50 अरब तक बढ़ाने के लक्ष्य की पुष्टि की। कई प्रमुख मानवाधिकार संगठनों और छात्र संस्थाओं ने पाकिस्तान में बलूच नागरिकों के जबरन गायब किए जाने की बढ़ती घटनाओं की कड़ी निंदा की है। आरोप है कि इन घटनाओं को पाकिस्तानी सुरक्षा बलों द्वारा अंजाम दिया जा रहा है। इन संगठनों ने कहा कि कई प्रभावित परिवारों के लिए ईद का त्यौहार शोक, अनिश्चितता और अपनों से बिछड़ने का दर्द में बदल गया है। और खेलों में आईपीएल क्रिकेट के पहले एलिमिनेटर मुकाबले में आज शाम 7:30 बजे न्यू चंडीगढ़ में सनराइजर्स हैदराबाद का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। इस मैच की विजेता टीम शुक्रवार को दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटंस से मुकाबला करेगी, वहीं हारने वाली टीम प्रतियोगिता से बाहर हो जाएगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आज रात्रि 9:30 पर दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा कार्यक्रम चर्चा का विषय। हमारे केंद्र से चौपाल सजेगी आज शाम 7 बजे और सीमा डेरी गूंज आपको सुनाई देगी शाम 7:30 पर। आज रात्रि 9:15 पर कार्यक्रम साहित्य सुधा में आप सुन सकते हैं पूजा अग्रवाल द्वारा कविता वाचन। हमारे केंद्र से शास्त्रीय संगीत का आनंद आप ले सकते हैं आज रात्रि 10 बजे। फिल्म संगीत आप सुन सकते हैं रात्रि 8 बजे। श्रोताओं, यह था हमारे आज की सभा के शेष कार्यक्रमों का विवरण। लीजिए प्रस्तुत है कल दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी एवं उनका प्रसारण।

कार्यक्रम विशेष हिंदी रूपक आप सुन सकते हैं कल रात्रि 9:30 पर, जो कि हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। प्रांतीय मासिक नाटक का आनंद आप ले सकते हैं कल रात्रि 10:00, जो कि हमारे जयपुर केंद्र से रिले किया जाएगा। भक्ति संगीत कार्यक्रम वंदन का आनंद आप ले सकते हैं कल सवेरे 6:15 पर, और श्री रामचरितमानस आप सुन सकते हैं कल सवेरे 6:05 पर। कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत का समय रहेगा कल सवेरे 7:00। कल सवेरे 8:30 पर आप सुन सकते हैं मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम नमस्कार। कृषि जगत का आनंद आप ले सकते हैं कल सवेरे कृषि जगत आप सुन सकते हैं कल दिन में 1:05 पर। महिलाएं अपने पसंद का कार्यक्रम नारी वाटिका सुन सकती हैं कल दिन में 1:15 पर। NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम का समय रहेगा कल दिन में 2:30 पर। शाम 5:00 आप सुन सकते हैं कार्यक्रम युव वाणी। हमारे केंद्र से चौपाल सजेगी कल शाम 7:00 और सीमा डेरी गूंज सुनाई देगी कल शाम 7:30 पर। फिल्म संगीत का आनंद आप ले सकते हैं कल सवेरे 6:45 पर एवं सवेरे 11:00 और कल रात्रि 8:00। सुगम संगीत आप सुन सकते हैं कल सवेरे 10:30 पर, दिन में 12:30 पर और रात्रि 9:30 पर।

श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम विवरण। ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्यनगरी चैनल है। लीजिए, प्रस्तुत है देशगान।

0: समूह स्वर में अभी आपने सुना देश गान। यह आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर अर्थात 531 किलो हर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, शाम के 6:20 होने को हैं। आइए सुनते हैं संस्कृत में समाचार, जो कि हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। उसके पश्चात हिंदी में प्रादेशिक समाचार, जिले की चिट्ठी, राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार हमारे जयपुर केंद्र से रिले किए जाएंगे।
1: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः जतिन शर्मा। आदौ मुख्य वार्ताः। सर्वकारेण सार्वजनिक वितरण प्रणाल्याः आधुनिकीकरणार्थं 525,000 कोटि रूप्यकाणां केन्द्रीय परिव्ययेन सह सार्थक पीडीएस योजनायाः विस्ताराय स्वीकृतिः प्रदत्ता। सर्वोच्च न्यायालयेन मतदातृसूच्याः विशेष गहन पुनरीक्षणाय निर्वाचनायोगस्य अधिकारः न्यायोचितम् अंगीकृतम्। देशस्य विविधेषु भागेषु वर्धमानं तापमानं अवलोक्य प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी नागरिकान् यथाशक्यं सावधानान् भवितुं साग्रहं प्रबोधितवान्। केन्द्रीयान्वेषणाभिकरणेन राष्ट्रिय पात्रता सह प्रवेश परीक्षायाः प्रश्नपत्र गोपन भंग प्रकरणे अपरौ द्वौ अभियुक्तौ निगडितौ। अपि च आईपीएल क्रिकेट प्रतिस्पर्धायाम् अद्य सायं मोहाली नगरस्य न्यू चण्डीगढ़ क्रीडांगणे सनराइजर्स हैदराबाद दलं राजस्थान रॉयल्स दलेन सह प्रतिस्पर्धिष्यति। आर्थिक प्रकरण मंत्रिमंडल समित्या अद्य 16 वित्तायोगस्य पुरस्कार चक्रावधौ सार्थक पीडीएस इति अम्ब्रेला योजनायाः निरन्तरतायै 30,25,000 कोटि रूप्यकाणां केन्द्रीय विनियोगः करिष्यते। नवदिल्ल्यां वार्ताहरान् सम्बोधयन् सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णवः अवदत् यत् इयं योजना राज्य संस्था

0: राज्यान्तर्गत खाद्यान्न परिवहनाय साहाय्यं प्रदास्यति। सहैव उचित मूल्यापणानां सुदृढीकरणं करिष्यति तथा च सार्वजनिक वितरण प्रणाल्याः आधुनिकीकरणेऽपि सहयोगं करिष्यति।
1: इस प्रोग्राम में तीन बड़े सुधार आज अप्रूव हुए हैं। सबसे पहला, राज्य सरकारों के एजेंसीज राज्य में तो एफसीआई का बड़ा गोडाउन होता है, वहां से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में, डिविजन्स में फेयर प्राइस शॉप

0: अन्वेषणाभिकरणेन एतावता देशस्य 49 स्थानेषु सहसान्वेषणं विहितम्। यत्र अनेके आपत्तिजनक अभिलेखाः अंकीय संगणकाः दूरभाषयन्त्राणि च स्वायत्तीकृतानि। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मूः सबलं प्रोक्तवती यत् देशस्य विकासाय पूर्वोत्तर क्षेत्रस्य विकासः सर्वथा अनिवार्यः वर्तते। अद्य गंगटोक नगरे सिक्किम विश्वविद्यालयस्य दीक्षांत समारोहं संबोधयन्ती राष्ट्रपति मुर्मूः छात्रान् स्वकीय विचारैः नवोन्मेषेण परस्पर विश्वासेन च राष्ट्रनिर्माणे योगदानं विधातुं परामर्शं प्रदत्तवती। मुर्मू महोदया अवदत् यत् शिक्षा एव सशक्तिकरणस्य परम मार्गः अस्ति।
1: नॉर्थ ईस्ट का विकास देश की समग्र विकास के लिए अनिवार्य है। पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास और राष्ट्रीय विकास के लक्ष्य आपस में जुड़े हुए हैं। यहाँ के युवाओं में असीम प्रतिभा है। सिक्किम सहित अन्य राज्यों से आए हुए विद्यार्थियों से मैं आग्रह करना चाहूंगी कि आप सब एक दूसरे के संपर्क में रहे और मिलजुल कर राष्ट्रीय विकास में योगदान देने का भावना में आगे बढ़े।
0: कनाडा यात्रायाः द्वितीय दिवसे भारतस्य वाणिज्योद्योग मंत्री पीयूष गोयलः कनाडा देशस्य टोरंटो नगरे वरिष्ठ व्यापारिक नेतृभिः संस्थागत निवेशकैः च सह उच्चस्तरीयोपवेशनं विहितवान्। यात्रा प्रसंगे श्री गोयलः कनाडा देशस्य अन्ताराष्ट्रिय व्यापार मन्त्रिणा मनिन्दर सिद्धू इत्यमुना सह साक्षात्कृत्य भारत कनाडा देशयोः वर्धमान पूरकताम् अधिकृत्य चर्चां कृतवान्। तथा च सुदृढ सर्वकारोद्योग सहयोगेन चालितस्य अधिक सशक्तस्य पूर्वानुमान योग्यस्य च व्यापार पारिस्थितिकी तंत्रस्य आवश्यकतायामपि बलं प्रदत्तवान्। आईपीएल क्रिकेट प्रतिस्पर्धायां अद्य सायं मोहाली नगरस्य न्यू चंडीगढ़ क्रीडांगणे सनराइजर्स हैदराबाद दलं राजस्थान रॉयल्स दलेन सह प्रतिस्पर्धिष्यति। एषा स्पर्धा सायं सार्ध सप्तवादने समारप्स्यते। इतः पूर्वं गतरात्रौ धर्मशाला नगरे आयोजिते द्वन्द्वे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु दलेन गुजरात टाइटन्स दलं 92 धावनांकैः पराजितम्। इति वार्ताः।
2: आकाशवाणी जयपुर अजमेर से।

मुख्य समाचार। प्रदेश के ज्यादातर हिस्से भीषण गर्मी और लू की चपेट में। श्रीगंगानगर में पारा 48 डिग्री के ऊपर पहुंचा। सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया को वैध बताया। केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राशन परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक पीडीएस को जारी रखने को मंजूरी दी और आरपीएससी ने राजस्थान राज्य और अधीनस्थ सेवा के 607 पदों पर भर्ती की विज्ञप्ति जारी की। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 4 जून से शुरू होगी। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश के ज्यादातर हिस्से भीषण गर्मी और लू की चपेट में हैं। राज्य में तापमान हर दिन नए रिकॉर्ड तोड़ रहा है। आज श्रीगंगानगर में दिन का पारा 48.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जैसलमेर, फलौदी, पिलानी, बीकानेर और चूरू में तापमान 46 डिग्री से ऊपर रिकॉर्ड किया गया। राज्य के कई स्थानों पर अधिकतम तापमान 45 डिग्री दर्ज किया गया। दिन के समय तेज तपिश के साथ लोगों को रात में भी राहत नहीं मिल रही है। जयपुर, कोटा, जोधपुर, नागौर, बीकानेर और दौसा सहित कई शहरों में न्यूनतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर मापा जा रहा है। करीब 33 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ कोटा में सबसे गर्म रात रही। भीषण गर्मी से जनजीवन पर खासा असर पड़ा है। इस बीच प्रशासन की ओर से गर्मी से निपटने के लिए कई स्तरों पर इंतजाम किए जा रहे हैं। भीलवाड़ा में जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधू ने सभी विभागों को आपसी तालमेल के साथ जीरो कैजुअल्टी का लक्ष्य लेकर चलने को कहा है। सिरोही में तेज धूप और गर्म हवाओं के कारण लोगों की दिनचर्या बदल रही है। झुंझुनू से हमारे संवाददाता ने बताया कि तेज गर्मी से जिलेवासियों का हाल बेहाल है।

0: दिन के समय बाजारों में लोगों की चहल पहल कम नजर आ रही है।
1: झुंझुनू में नौतपे का असर अब साफ दिखाई देने लगा है। तापमान 45 डिग्री के आसपास पहुंच गया है, जिससे तेज गर्मी और लू ने आमजन का हाल बेहाल कर दिया है। दोपहर के समय सड़कें सूनी नजर आ रही है और लोग जरूरी काम होने पर ही घरों से बाहर निकल रहे हैं। मौसम विभाग ने आगामी दिनों में भी हीट वेव की चेतावनी जारी की है और लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। संदीप केडिया, आकाशवाणी समाचार, झुंझुनू।
0: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बढ़ते तापमान और लू के प्रभाव को देखते हुए प्रदेशवासियों से अपने स्वास्थ्य और परिवार की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का आग्रह किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने पर्याप्त मात्रा में पानी और तरल पदार्थ का सेवन करने, बच्चों, बुजुर्गों और अस्वस्थ व्यक्तियों का विशेष ध्यान रखने तथा अत्यधिक धूप में बाहर निकलने से बचने को कहा है। साथ ही प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों की पालना करने की अपील की है। इधर मौसम केंद्र जयपुर ने कल श्रीगंगानगर, बीकानेर, फलौदी और जैसलमेर के लिए लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। बाकी कई जिलों के लिए तेज गर्मी के साथ आंधी और बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। शीर्ष अदालत ने कहा है कि एसआईआर का उद्देश्य स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लक्ष्य को हासिल करना है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की एक पीठ ने कुछ रिट याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए ये फैसला दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने इस तर्क को खारिज कर दिया कि चुनाव आयोग द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और मतदाता पंजीकरण नियम 1960 के विपरीत थी। उधर सुप्रीम कोर्ट ने मतदाता सत्यापन पुष्टि पर्ची वीवीपैट से संबंधित दिशा निर्देशों में बदलाव की मांग वाली याचिका पर कहा कि इस बारे में निर्णय लेने का अधिकार निर्वाचन आयोग का है। न्यायालय ने कहा कि यह तकनीकी मामला है और निर्वाचन आयोग के अधिकार क्षेत्र में आता है। याचिका में कहा गया था कि इन पर्चियों पर समय अंकित करने से पारदर्शिता, सत्यापन और ऑडिट प्रक्रिया में सुधार होगा। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने कहा है कि विद्यार्थी कानून की शिक्षा का उपयोग जरूरतमंदों, पीड़ित और वंचित वर्ग के कल्याण के लिए करें। उन्होंने कानून की शिक्षा में राष्ट्र और समाज हित को हमेशा आगे रखने का आह्वान किया। श्री बागड़े आज जयपुर में डॉ भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय के तीसरे दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि विधि शिक्षा में भारतीय सभ्यता और संस्कृति का समावेश किया जाए तो सभी क्षेत्रों में सफलता मिल सकती है। समारोह में केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि देश के नागरिकों को न्याय दिलाने के लिए पुराने कानून बदलकर 3 नए कानून लाए गए हैं। इस दौरान 9 विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक प्रदान किए गए, वहीं 25,000 से अधिक विद्यार्थियों की ऑनलाइन डिग्रियां सौंपी गई। करौली जिले में पिछले 12 वर्ष में पानी की समस्या के हल के लिए व्यापक प्रयास किए गए हैं। जिले की मासलपुर तहसील की भावली ग्राम पंचायत के किसान सवाई सिंह ने बताया कि तालाब निर्माण कार्य से जल संरक्षण के काम को मजबूती मिली है। केंद्र सरकार की इस पहल से क्षेत्र में हुए वर्षा जल संग्रहण के परिणाम स्वरूप भूजल स्तर में सुधार देखने को मिल रहा है।
2: मेरा नाम सवाई सिंह है। इस तालाब से हमको सुविधा है। इस तालाब से पहले पानी बेसी जाता है, पानी अब डट गया है, उससे मवेशी को सुविधा भी है और जमीन में जल स्तर बढ़ गया है, बाद किसानों को सुविधा है और बढ़िया काम में आ रहा है और बढ़िया सरकार को धन्यवाद देते हैं।
0: ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने आज सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक पीडीएस को जारी रखने की मंजूरी दे दी है। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि यह योजना राज्य एजेंसियों को अंतर्राज्यीय खाद्यान्न परिवहन में सहायता प्रदान करेगी।
3: इस प्रोग्राम में तीन बड़े सुधार आज अप्रूव हुए हैं। सबसे पहला, राज्य सरकारों के एजेंसीज राज्य में एफसीआई का बड़ा गोडाउन होता है, वहां से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में, डिविजन्स में फेयर प्राइस शॉप तक पहुंचाने का जो

0: कॉस्ट होती है, उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे। दूसरा, फेयर प्राइस शॉप्स है, उनमें डीलर्स का रिम्यूनरेशन रखा गया था, उसको बढ़ाने की जरूरत थी, तो वो भी फैसला लिया गया। और तीसरा फैसला, टेक्नोलॉजी का यूज करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं।
1: समिति ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में खाद्यान्नों के अंतर्राज्यीय परिवहन और हैंडलिंग के खर्च में केंद्रीय सहायता के नियमों में बदलाव किया है। इसके साथ ही राशन दुकान के डीलरों के मार्जिन पर होने वाले व्यय को पूरा करने के लिए भी सहायता मानदंडों को संशोधित किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कल रात बीकानेर में भारत पाक सीमा पर सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए सुरक्षा समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान सीमा से सटे जिलों में सुरक्षा संबंधी मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक में हर सीमावर्ती जिले के लिए 360 डिग्री सुरक्षा फ्रेमवर्क तैयार करने का फैसला लिया गया। गृहमंत्री ने अधिकारियों को अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 15 किलोमीटर तक के दायरे में हो रहे अवैध निर्माणों को ध्वस्त करने के निर्देश दिए। उन्होंने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2 के सफल और प्रभावी क्रियान्वयन पर विशेष बल दिया। गृहमंत्री ने सीमा सुरक्षा बल, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और राज्य सरकार को मिलकर रणनीति बनाने को कहा, ताकि घुसपैठ, तस्करी, अतिक्रमण और अन्य सीमा पार अपराधों पर शिकंजा कसा जा सके। बैठक में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, फलोदी के जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षकों ने भाग लिया। राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी ने राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं भर्ती 2026 के तहत कुल 607 पदों पर भर्ती की विज्ञप्ति जारी की है। इनमें राज्य सेवाओं के 192 और अधीनस्थ सेवाओं के 415 पद शामिल हैं। इस भर्ती के संबंध में विस्तृत सूचनाएं आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। आयोग सचिव ने बताया कि इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन 4 जून से शुरू होंगे। ये आवेदन 3 जुलाई रात्रि 12 बजे तक किए जा सकते हैं। परीक्षाओं का पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट पर 9 जनवरी को ही जारी कर दिया गया था। कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने आज जोधपुर में बीज उत्पादक कंपनियों और फैक्ट्रियों पर औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बड़ी मात्रा में अमानक बीज जब्त करवाए। मीडिया से बातचीत में कृषि मंत्री ने कहा कि घटिया बीजों से किसानों और निर्यात प्रक्रिया को काफी नुकसान हो रहा है। उन्होंने कहा कि बरामद किए गए बीजों की जेनेटिक शुद्धता जांचने के लिए ग्रो आउट टेस्ट GOT करवाया जाएगा।
2: करीबन 50 करोड़ का यहाँ सीड है जो पूरी तरह से असली सीड नहीं है, घटिया मूंगफली है जिसको किसानों को बेचा जाएगा। हम इसकी सेल रोक रहे हैं, अभी हाल फिलहाल में सेल रोक के इसके सैंपल लेंगे और सैंपलों की जो GOT भी कराएंगे और लेबोरेटरी से जांच भी करेंगे।
1: राज्य में चल रहे वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान को जन आंदोलन का स्वरूप देने के लिए विभिन्न गतिविधियां आयोजित कर लोगों को इससे जोड़ा जा रहा है। कार्यक्रमों की कड़ी में आज गौशालाओं, पशु चिकित्सालयों और दुग्ध संघों में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान जल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण और गौ संरक्षण से जुड़े काम किए जा रहे हैं। जोधपुर में पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने, वहीं पाली में प्रभारी मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने गौशालाओं में वृक्षारोपण किया और पंछियों के लिए परिंडे बांधे। राजस्थान उच्च न्यायालय ने आसाराम बापू को नाबालिग से दुष्कर्म मामले में राहत देने से इनकार करते हुए उसकी सजा को बरकरार रखा है। हाईकोर्ट की जोधपुर पीठ के जस्टिस अरुण मूंगा और जस्टिस योगेंद्र कुमार पुरोहित की बेंच ने आज ये फैसला सुनाया। इस मामले में आसाराम की आजीवन कारावास की सजा जारी रहेगी। अदालत ने उसे आंशिक राहत देते हुए पॉक्सो अधिनियम के तहत सामूहिक दुष्कर्म, सामूहिक यौन उत्पीड़न और आपराधिक साजिश से संबंधित आरोपों से बरी कर दिया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश के ज्यादातर हिस्से भीषण गर्मी और लू की चपेट में। श्रीगंगानगर में पारा 48 डिग्री से ऊपर पहुंचा। सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया को वैध बताया। केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राशन परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक PDS को जारी रखने की मंजूरी दी। और RPSC ने राजस्थान राज्य और अधीनस्थ सेवा के 607 पदों पर भर्ती की विज्ञप्ति जारी की। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 4 जून से शुरू होगी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

नमस्कार। ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप रितिका गुप्ता से हनुमानगढ़ जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख मैना देवी ने तैयार किया है। राज्य के उत्तरी भाग में स्थित कृषि प्रधान जिला है हनुमानगढ़। घग्गर नदी के किनारे बसा यह जिला उपजाऊ भूमि के साथ ही प्राचीन संस्कृति के लिए जाना जाता है। इसी नदी के तट पर स्थित है भटनेर किला, जो काफी पुराना और मजबूत मिट्टी से बने किलों में से एक है। इंदिरा गांधी और भाखड़ा नहर के कारण इस क्षेत्र में गेहूं, सरसों और कपास की अच्छी खेतीबाड़ी होती है। इस जिले को फलों की टोकरी भी कहा जाता है। जिले की चिट्ठी में आप तक पहुंचाएंगे बीते दिनों की खास खबरें। सबसे पहले बात किसानों की। जिले में खरीफ 2025 सीजन के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 108 करोड़ रुपए से अधिक का बीमा क्लेम जारी किया गया। खरीफ फसल की प्राकृतिक आपदाओं और कीटों से फसलों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए ये राशि सीधे बैंक खातों में जमा की गई। जिला कलेक्टर खुशहाल यादव ने बताया कि किसान अपने बीमा दावे की स्थिति की जानकारी फार्मर कॉर्नर के जरिए हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा कृषि रक्षक पोर्टल के टोल फ्री नंबर 14447 पर संपर्क कर भी इस बारे में जानकारी ली जा सकती है। कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक डॉ. प्रमोद कुमार ने बताया कि इस भुगतान से किसानों को बड़ी राहत मिली है। इससे उन्हें आगामी खेती के लिए भी वित्तीय मजबूती मिलेगी। जिले में पिछले दिनों ग्राम रथ अभियान की धूम रही। इस अभियान के माध्यम से विभिन्न स्थानों पर लोगों को सरकार की जनहित योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने मैना वाले गांव पहुंचकर ग्राम रथ का अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों से बातचीत भी की। श्री पूनिया ने संगरिया क्षेत्र के शेरेका गांव में संध्या चौपाल में शिरकत की। चौपाल में ग्रामीणों ने बारदाना, फसल तुलाई और एमएसपी से जुड़ी समस्याएं उनके सामने रखी, जिस पर श्री पूनिया ने उचित समाधान का आश्वासन दिया। गंगा दशमी के मौके पर जिले में बारिश के पानी को सहेजने, जल स्रोतों की सफाई और मरम्मत करने तथा पानी की बचत की अलख जगाने वाला अभियान शुरू हुआ। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान का जिला स्तरीय कार्यक्रम रावतसर के लखू वाली हेड पर हुआ, जहां माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष प्रहलाद राय टांक, जिला प्रभारी सचिव डॉ. जोगाराम और जिला कलेक्टर डॉ. यादव ने जल पूजन कर और पौधा रोप कर अभियान का शुभारंभ किया। जिले में हीटवेव से बचाव के लिए विशेष जागरूकता अभियान चलाया गया। इसमें हनुमानगढ़ जंक्शन और बस स्टैंड पर यात्रियों और कर्मचारियों को ओआरएस के पैकेट बांटे गए। स्वास्थ्य कर्मियों की ओर से लोगों से लगातार तरल पदार्थों का सेवन करने और धूप से बचने की सलाह दी गई। वहीं प्रशासन की ओर से जिले भर में प्याऊ और परिंडे लगाने का अभियान भी शुरू किया गया है। जिला कलेक्टर ने कलेक्ट्रेट परिसर में परिंडे बांधकर इसकी शुरूआत की। भीषण गर्मी के प्रकोप को देखते हुए 3 से 6 साल तक के बच्चों के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों में 13 जून तक अवकाश रहेगा। बच्चों को दिया जाने वाला पोषाहार भी टेक होम राशन के रूप में घर घर पहुंचाया जा रहा है। साथ ही हीटवेव के बढ़ते असर को देखते हुए चिकित्सा विभाग अलर्ट मोड पर है। प्रचंड गर्मी के इस दौर में चिकित्सकों की छुट्टियां निरस्त कर दी गई हैं। उधर जनगणना प्रक्रिया में लगे प्रगणकों को भी लू और तापघात से बचाव के लिए इंतजाम रखने का परामर्श दिया गया है। जिला कलेक्टर ने पिछले दिनों पीलीबंगा के एक वार्ड का औचक निरीक्षण कर जनगणना प्रक्रिया की समीक्षा की। उन्होंने लोगों से गणना कर्मियों को सही जानकारी देकर राष्ट्रीय महत्व के इस काम में सहयोग करने की अपील की है। अतिरिक्त जिला कलेक्टर उम्मेदीलाल मीणा ने भी रावतसर, नोहर, भादरा और टिब्बी सहित कई क्षेत्रों में निरीक्षण कर जनगणना काम संबंधी व्यवस्थाएं जांची। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर पिछले दिनों जिले के अयालकी गांव पहुंचे। उन्होंने महात्मा गांधी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का शिलान्यास किया। ये भवन करीब 4.5 करोड़ रूपये की लागत से बनाया जायेगा। श्री दिलावर ने जिले के कई स्कूलों का मुआयना किया। उन्होंने शिक्षकों से नवाचार और नैतिक संस्कार विकसित करने की बात कही। शिक्षा मंत्री ने कहा कि सरकारी स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जा रही है। कई सरकारी स्कूल निजी विद्यालयों से बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। जिले में सड़क हादसों में घायलों को समय पर अस्पताल पहुंचाने वाले 9 गुड सैमरिटन को प्रशस्ति पत्र और 80,000 रूपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई। मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षा योजना के तहत ये राशि मददगारों के बैंक खातों में ट्रांसफर की गई। इसके साथ ही हनुमानगढ़ जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।

0: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर हूँ, पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार, प्रदेश रा घणघर हलका माए जबरदस्त तावड़ा बीच लू रो असर। श्री गंगानगर माए पारो 48 डिग्री सेल्सियस ने पार कीनो। सुप्रीम कोर्ट वोटर लिस्टाना विशेष गहन पुनरीक्षण SIR ने वैध बतायो। केंद्रीय मंत्रिमंडल री माली मामला री समिति सार्वजनिक वितरण प्रणाली रा तहत राशन लावण ले जावण और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक PDS ने जारी रखण री मंजूरी दीनी। और RPSC राजस्थान राज्य और अधीनस्थ सेवा रा 607 ओहदा माथे भर्ती सारू विज्ञप्ति जारी कीनी। ऑनलाइन तरीकाउ अर्जियां देवण रो काम 4 जून नु शुरू भेला। समाचारन सागे मैं सुदर्शन नाहर। अरब समाचार विगतवार, राज्य रा घणखर हलका माए जोरदार तावड़ो पड़ रियो है और लू बाज रही है। आज श्री गंगानगर माए सब बत्तो 48.2 डिग्री सेल्सियस तापमान नापीचियो। बीकानेर, चूरू, जैसलमेर, पिलानी और फलौदी माए अधिकतम तापमान 46 डिग्री सेल्सियस ने पार कर गयो। जयपुर, कोटा, जोधपुर, नागौर, बीकानेर और दौसा समेत कई ठोणा कम से कम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस ऊंचो चाल रियो है। करीब 33 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान सागे कोटा माए रात्रि बगती जोरदार गर्मी रही। इन बीचे प्रशासन री ओरू गर्मी रो सामोकरण सारू जरूरी इंतजाम कराया जा रहा है। भीलवाड़ा माए जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधू सगला महकमा न तालमेल सागे काम करण बाबत कहो। लूरी फेंट माए आया मरीजा सारू अस्पताल माए न्यारी व्यवस्था राखण रा हुकम दिया चिया है। सिरोही जिला माए तेज तावड़ा और उन्ना बायराऊ जिंदगी माथे घणो असर पड़ रियो है। माणा झुंझुनू खबर नवीस बतायो के जोरदार तावड़ाऊ दिन री बगत बाजारा माए लोगा री आवण जावण कम वेगी है।
1: झुंझुनू में नौतपे का असर अब साफ दिखाई देने लगा है। तापमान 45 डिग्री के आसपास पहुंच गया है, जिससे तेज गर्मी और लू ने आमजन का हाल बेहाल कर दिया है। दोपहर के समय सड़कें सूनी नजर आ रही है और लोग जरूरी काम होने पर ही घरों से बाहर निकल रहे हैं। मौसम विभाग ने आगामी दिनों में भी हीट वेव की चेतावनी जारी की है और लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। संदीप केडिया, आकाशवाणी समाचार, झुंझुनू।
0: इन बीच मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा बढ़ती गर्मी और लू रा असर न ध्यान रखता थका जनताओं सावचेती राखण रियरज कीनी है। सोशल मीडिया पोस्ट रे जरिए श्री शर्मा जनताओं जरूरी मात्रा माए पानी और पीवण री दूजी चीजा काम लेवन बाबत कहो। वे बच्चा, बुजुर्गा और मंदा लोगा रो खास ध्यान राखण और जोरदार तावड़ा री बगत कठे नी जावण सारूई कहो। मुख्यमंत्री परिंदा और जिनावरा सारूए दाना पानी और चारा री व्यवस्था करण रियरज कीनी। मौसम केंद्र जयपुर काल श्रीगंगानगर, बीकानेर, फलौदी और जैसलमेर जिला माए लू बाजन सारू चेतायो है। इसागे कई जिला माए तेज गर्मी सागे आंधी बारिश सारूई चेताई चियो है। सुप्रीम कोर्ट निर्वाचन आयोग कानून वोटर लिस्टारी विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया री वैधता बरकरार रखी है। अदालत कहो कि SIR रो मकसद स्वतंत्र और निपक्ष चुनाव करावण हो। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागचीरी पीठ लारला साल जून महीना माए चुनाव आयोग कानून बिहार माए SIR करावण री अधिसूचना ने चुनौती देवन वाली अर्जियां माथे सुनवाई करता थका वो फैसलो सुनायो। भारतीय जनता पार्टी SIR ने पूरी तरह कानूनी करार देवन रा सुप्रीम कोर्ट रा फैसला रो स्वागत कीनो है। सुप्रीम कोर्ट मतदाता सत्यापन पुष्टि पर्ची VVPAT उन जुड़िया दिशा निर्देशा माए बदलाव री मांग करण वाली अर्जियां माथे सुनवाई कीनी। अदालत कहो कि इन बारा माए फैसलो लेवन रो हक चुनाव आयोग ने है। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े कानून री भणाई जरूरतमंद लोगा पीड़ित और वंचित तबका रा भला सारू काम लेवन बाबत कहो है। वे कानून री भणाई माए देश और समाज रा भला ने हमेशा ऊंचो राखण री अपील कीनी। श्री बागड़े आज जयपुर माए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय रा तीजा दीक्षांत समारोह

0: माई बोल रहा हा। राज्यपाल कहो के कानून री भणाई माए देश री सभ्यता और संस्कृति शामिल करणो कई हलका माए कामयाबी मिल सके है। इ मौके केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल कहो के जनता ने न्याय दिरावण सारू जूना कानून बदल और 3 नुआ कानून लाइचिया। कार्यक्रम माए 9 विद्यार्थियों ने सोनारा तमगा देर नवाजीचिया जबकि 25,000 बत्ता विद्यार्थियों ने ऑनलाइन डिग्रियां तीरीची। करौली जिला माए लाडला 12 साल माए पानी री समस्या सुलझावण सारू न्यारी न्यारी कोशिशां करीची है। जिलारी मासलपुर तहसील री भावली ग्राम पंचायत माए तलाव बनावण पानी बचावण रा काम ने मजबूती मिली है। काम वाला रो कहणो है कि केंद्र सरकार री पहलू हलका माए बिरखा रो पानी भेड़ो वेवणो जमी हेठे पानी रो लेवल ही ऊंचो आ रियो है।
1: मेरा नाम सवाई सिंह है। इस तालाब से हमको सुविधा है। इस तालाब से पहले पानी बेसी जाता है, पानी अब डट गया है, उससे मवेशी को सुविधा भी है और जमीन में जल स्तर बढ़ गया है, बाद किसानों को सुविधा है और बढ़िया काम में आ रहा है और बढ़िया सरकार को धन्यवाद देते हैं।
0: समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहा हो। केंद्रीय मंत्रिमंडल री माली मामला री समिति आज सार्वजनिक वितरण प्रणाली रातेत राशन परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक पीडीएस न जारी राखण री मंजूरी दे दीनी। इसारू 25,530 करोड़ रूपया राखी चिया है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव नई दिल्ली माई खबर नवीसा ने आ जानकारी दीनी। वे बतायो कि इन योजनाओं राज्यों री एजेंसियां ने एक उन दूजा राज्य माए अनाज लावण ले जावण माए मदद मिलेला।
2: इस प्रोग्राम में 3 बड़े सुधार आज अप्रूव हुए हैं। सबसे पहला, राज्य सरकारों के एजेंसीज राज्य में तो FCI का बड़ा गोडाउन होता है, वहां से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में डिविजन्स में फेयर प्राइस शॉप तक पहुंचाने का जो कॉस्ट होती है उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे। दूसरा, फेयर प्राइस शॉप्स है उनमें डीलर्स का रिम्यूनरेशन रखा गया था, उसको बढ़ाने की जरूरत थी तो वो भी फैसला लिया गया। और तीसरा फैसला, टेक्नोलॉजी का यूज करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं।
0: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भारत पाक सरहद माथा हिफाजत रा और पुख्ता इंतजाम करण सारू काल बीकानेर माए सुरक्षा समीक्षा बैठक कीनी। मीटिंग माए सरहद कनेरा हर जिला सारू 4 ही मेर निजर राखण वालो सुरक्षा फ्रेमवर्क तैयार करण रो फैसलो करी चियो। गृहमंत्री अंतर्राष्ट्रीय सरहद 15 किलोमीटर ताई रा हलका माए गैर कानूनी बनाई चुनाई ने रोकण रा हुक्म दीना। वह वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2 ने असरदार तरीकों लागू करण माथे जोर दीनो। गृहमंत्री घुसपैठ तस्करी अतिक्रमण और सरहद पार वहवण वाला अपराधा माथे रोक लगावण सारू BSF केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB और राज्य सरकार ने मिलर रणनीति बनावण सारू ही कहो। राजस्थान लोक सेवा आयोग RPSC राजस्थान राज्य अधीनस्थ सेवाएं भर्ती 2026 रातेत 607 ओहदा माथे भर्ती री अधिसूचना जारी करती नी है। इनमाए राज्य सेवा वारा 192 और अधीनस्थ सेवा वारा 415 ओहदा शामिल है। भर्तियों जुड़ी विगतवार जानकारी आयोग री वेबसाइट माथे देखी जा सके है। आयोग रा सचिव बतायो कि आ ओहदा सारू ऑनलाइन तरीकाओं अर्जियां 4 जून 3 जुलाई 2026 री रात 12 बजे ताई दी जा सकेला। इन परीक्षा रो कोर्स आयोग री वेबसाइट माथे 9 जनवरी ने जारी करती ओचियो हो। कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा आज जोधपुर माए बीज कंपनियां और कारखाना री औचक जांच कीनी। इन दौरान मोटी तादाद माए अमानक बीज जब्त करी चिया। खबर नवीसा सागे बातचीत करता थका डॉक्टर मीणा कहो के बरामद करी जा बीजा री जेनेटिक शुद्धता री जांच सारू ग्रो आउट टेस्ट GOT करायो जावेला।
3: तकरीबन 50 करोड़ का यहाँ सीड है जो पूरी तरह से असली सीड नहीं है, घटिया मूंगफली है जिसको किसानों को बेचा जाएगा। हम इसकी सेल रोक रहे हैं अभी हाल फिलहाल में, सेल रोक के इसके सैंपल लेंगे और सैंपलों की जो GOT भी कराएंगे और लेबोरेटरी से जांच भी करेंगे।
0: राज्य में चल रहा वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान रातेत आज गौशाला में ढंडारा अस्पताल और दूध उत्पादक संघ में खास अभियान चलाई चियो। इन दौरान पानी पर्यावरण और गायों ने बचावण जुड़िया काम करी चिया। जोधपुर माए पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर, अरपाली माए प्रभारी मंत्री

0: बराबर सिंह खर्रा गौशाला में माय पौधा रोप्या और परिंदा सारू परिंडा बांध्या। सवाई माधोपुर भीलवाड़ा जैसलमेर सिरोही और सलुम्बर माई न्यारा न्यारा कार्यक्रम राखी जिया। राजस्थान हाईकोर्ट आसाराम बापू ने नाबालिगों यौन दुराचार रा मामला माय साता देवण उन्नट गयो है। हाईकोर्ट री जोधपुर पीठ रा न्यायमूर्ति अरुण मुंगा और न्यायमूर्ति योगेंद्र कुमार पुरोहित री बेंच आज मारी सजा बनाई राखण रो फैसलो सुनायो। कोर्ट आसाराम समेत तीन दोषियां री अपील माथे सुनवाई करता थका कहो कि निचली अदालत कानून सुनाई जी सजा माय कोई बदलाव नहीं करियो चावेला। हालांकि अदालत वाने पोक्सो कानून रा तहत मिलर यौन दुराचार करण यौन उत्पीड़न करण और आपराधिक साजिश जुड़िया आरोपों बरी करती नो। आईपीएल क्रिकेट होड में आज राजस्थान रॉयल्स और सनराइजर्स हैदराबाद बीच एलिमिनेटर मुकाबलो खेलू जावेला। अब थोड़ी देर पछे 7:30 बजे न्यू चंडीगढ़ में शुरू होवन वाला ई मुकाबला में जीतन वाली टीम शुक्रवार ने दूजा क्वालिफायर मुकाबला में गुजरात टाइटन्स सागे मैच खेलेला। होड रो फाइनल मुकाबलो 31 मई ने अहमदाबाद में खेलो जावेला। इनु पहली काल खेली जा क्वालिफायर मुकाबला में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु गुजरात टाइटन्स ने 92 रन हरार फाइनल में पूग की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकाशवाणी हर महीना प्रसारित करया जावन वाला खास कार्यक्रम मन की बात में 31 मई ने विचार बतावेला। इन सारू आप ही मुफ्त नंबर 1800117800 माथे 29 मई ताई राय दे सको हो। आखिर में खास समाचार एक कर फेरू सुन ले रहो। प्रदेश रा घणखर हलका में जबरदस्त तावड़ा बीच लू रो असर। श्री गंगानगर में पारो 48 डिग्री सेल्सियस ने पार कीनो। सुप्रीम कोर्ट वोटर लिस्टा रा विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर ने वैध बतायो। केंद्रीय मंत्रिमंडल री माली मामला नी समिति सार्वजनिक वितरण प्रणाली रा तहत राशन लावण ले जावण और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक पीडीएस ने जारी राखण री मंजूरी दीनी। आरपीएससी आरएएस रा 607 ओहदा माथे भर्ती सारू विज्ञप्ति जारी कीनी। ऑनलाइन तरीका अर्जियां देवण रो काम 4 जून शुरू भेला। इसागी प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो भयो। नमस्कार,
1: ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर अर्थात 531 किलोहर्ट्ज़ पर प्रस्तुत है कार्यक्रम चौपाल।

0: चौपाल कार्यक्रम सुनना सगला हेतालु श्रोताओं ने घने मानसु गुरविंदर बिश्नोई
1: और दीनदयाल शर्मा रा राम
0: राम
1: राम।
0: राम दीनदयाल भैया। आज तारीख होगी 27
1: होगी सा।
0: महीने में दिन रहा 4 लारे तो मई गई जून आयो और जुलाई में पाछे टाबरारी स्कूल खुली।
1: खुल जाए। अबार तो टाबर जी को है थोड़ा सा मौज मस्ती कर रहा है ऐसा है नी। गर्मियारी छुट्टियां रो बड़ो उड़ीक रिया करे। बाकी 11 महीना उड़ी के टाबर के कद गर्मियारी छुट्टियां आए इन कद नानी रे घरे जावा कद मौज मस्ती कर।
0: हमें देखो देखते देखते कितो बदलाव आ गयो बचपन में।
1: बिल्कुल आई गो
0: एक आपानो बचपन हो के भाई छुट्टियां हुई है तो पूरे 1.5 महीने बस तेरे कोई नेड़े ही नहीं जावता ना हाथ ही नहीं लगावता। और कोई कटी गांव जाओ तो या नानाने जाओ तो कटी जानो आनो हो तो तू में हेंग पहला तैयार।
1: बिल्कुल
0: और कटी 10 दिन रहनो कटी 5 दिन रहनो एक सामाजिक समरसतारी बा आवती घर परिवार में। खाली नानाने ही नहीं मौसी है मौसा है मामा है दूर दराज रा जका रिश्तेदार है बाने घर में भी दो दो चार चार दिन ठहरने की व्यवस्था टाबर री होती।
1: बिल्कुल
0: क्या
1: होती
0: भाई
1: सा।
0: छुट्टियां होगी फलानो टाबर आई कई टाबर मो हो तो बन बुलावता भी।
1: बिल्कुल।

0: टाइम आ गयो कि छुट्टियां है महीने डेढ़ महीने री, ये रे महीने घर वाला चाहे कि ये ने की एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट बना दूं, ये रे टाइम रो उपयोग ले लूं, ये ने कोई समर कैंप में भेजन, कहीं एक्स्ट्रा चीज सिखा दूं।
1: कई तरह का कोर्स खुल गया गुरिंदर भाई। पहले तो समर कैंप भी का है, केवल मनोरंजन वास्ते होता। आजकल अबे मनोरंजन के साथ शिक्षा होगी ने कई तरह की स्किल्स जिकी है, कौशल सिखावे है, तो बे भी समर कैंप रे मायने आई ज्ञान। कई तरह का कोर्सेज जिका है लोग क्रैश कोर्स रे रूप रे मायने ई महीना डेढ़ महीना रे टाइम रे मायने करावे। तो इन माध्यम से कही है कि बच्चा आज पाचा पैक हो गया, यूं रियूं
0: कौन मतलब है कि छुट्टियां आई, लेकिन छुट्टियां रे साथे साथे नई चीजें आई।
1: नई चीजें आएगी।
0: देखो प्रकृति जो को है परिवर्तन, प्रकृति रो नियम है,
1: बिल्कुल
0: और
1: सर,
0: बदलियोड़ी हालत रे महीने इन प्रतिस्पर्धा रे युग में आप इन डेढ़ महीने री जो की छुट्टियां है ये रो सदुपयोग करा। कहवे
1: बिल्कुल
0: नहीं कि खाली दिमाग शैतान रो घर।
1: सही
0: अब
1: है।
0: लोग आ रहे भाई जो आना जाना नहीं है, जगह हैर में रहन, घर में टाबर रहे, तो वो डेढ़ महीने घर में टाबर कहीं देखे, मोबाइल टीवी टीवी मोबाइल।
1: सही है।
0: तो इन चीजों आड़गो ले जाने वास्ते माए तो चाहे कि भाई जिन कक्षा में वो पढ़े उन कक्षा रा कहीं एक्स्ट्रा विषय पढ़ ले, या कोई एडी टेक्निकल चीज ही ले जो वे काम आवे।
1: बिल्कुल गुरिंदर भाई, एक और बात है लारे, आजकल होगी जिंदगी बड़ी भागदौड़ वाली है नी। टाइम कोई का नहीं है, तो हर आदमी और चाहे कि मैं आगे हूं आगे बढ़ू और इन टाइम रो भी सदुपयोग कर लूं। तो वो मनोरंजन वास्ते नहीं रहन कुल मिलान और टाइम भी कोई कोई रूप रे मायने सदुपयोग करते रहे इंसान। तो आप रे स्किल्स बढ़ावे, आप रा कौशल बढ़ावे, आप रो ज्ञान बढ़ावे, आप रे अनुभव री क्षमता बढ़ावे। तो इन तरह रा कई तरह रा कोर्स जिका है वे टाबर इन टाइम रे मायने
0: भाई
1: करिया
0: लोग
1: करे।
0: अगर समर कैंप री बात करा तो कई बैच का खेल है आना कैंप लागे रहा। आप टाबर अगर कोई खेल विशेष रे महीने रुचि राखे तो आप वे ने भेजो, तो हो सके वो जो खेल रे महीने वेरी रुचि है वे में वे रो टैलेंट हमें आवे। वे रे अलावा गणित है, अंग्रेजी है, विदेशी भाषावा है, और आजकल तो AI रे भी कोर्स होन लाग गया। तो इन तरह रा महीने डेढ़ महीने रो कोर्स कोई टाबर रे करियोड़ो वे नहीं, जब स्कूल पाची खुले तो वे महीने एक अलग तरह रो आत्मविश्वास हुए।
1: बिल्कुल
0: और गणित में भी आजकल कई विधा होगी है नी, कई तरह पहाड़ा या

याद करना जोड़ बाकी करण रा भी तौर तरीका आ गया। तो जद कोई टावर ज्ञान रे मुझे थोड़ो सो पढ़ियो लिखियो आगे वे तो उन क्लास रे मायने जो को वेरो कॉन्फिडेंस लेवल वे उए में बदलाव आ जा कठी वो पिछड़ो पन रो शिकार नहीं हो।

0: गुरुंद्र भाई, एक बात आप अबार कवि के गणित रा भी कई रूप आए गया। वास्तव रे मायने आपा ने जी की प्राचीन सनातन संस्कृति रे मायने गणित रो रूप हो वैदिक गणित जी का ने आपा कहता बिरी भी आजकल विशेष रूप से क्लास लागे और उन मायने कही है कि जी का आगे कॉम्पिटिशन रे वास्ते प्रतियोगी परीक्षा रे वास्ते जी का बच्चा तैयारी करे नहीं बने बहुत शॉर्ट टर्म रे मायने बड़ी बड़ी कैलकुलेशन करनी बड़ा बड़ा हिसाब किताब निकालना और बड़ी रूपरेखा गणित रे जी की सरल तरीका सु समझाई जा करे।
1: वैदिक रे अलावा एक बड़े है नहीं इसके
0: अबेकसन बिल्कुल सा।
1: तो भाई देखो अबेकसन और वैदिक तो अपनी मूल जकी संस्कृति रो भाग है।
0: हाँ।
1: ई में पाव हवायो डेडो ईरा पाड़ान ई पॉइंटरी गिनती
0: बिल्कुल
1: तो आंगलियां माते वेर जणी देखा टाबर जो एक जनो बोल बोख रहे इता जोड़ इता जोड़ इता घटान वो सही उत्तर बता
0: एकदम उत्तर बता दे
1: तो दिमाग रो जितो आप इस्तेमाल करा उतो ही दिमाग तेज हो और टाबर पने रे मायने अगर आप इन तरह रे कोर्स आर वो मायने भेजा नहीं तो उरी बुद्धि रो विकास भी चाहता हुए
0: बिल्कुल। और गुरिंदर भाई एक और विशेष रूप से बात है आज आप यदि चर्चा करा तो आज तारीख भी यदि बात करा आज 27 तारीख है एकादशी रो पर्व है
1: देखो के भारतीय सभ्यता और संस्कृति पर्व और त्योहारों रो देश है
0: बिल्कुल सर।
1: अठे हर दिन कोई न कोई पर्व है कोई न कोई त्योहार हुए दुनिया रा जितना भी लगभग धर्म है नी वे भारत में
0: बिल्कुल है सर।
1: तो आप यहाँ सभ्यता और संस्कृति कितनी विकसित है कितनी खुशबूदार है भात भात रटे फूल खिली उड़ा है और भाई ईद उल जुआ भी को नहीं
0: बिल्कुल आज ही जैसा।
1: हाँ तो कहूँ मतलब है कि हर धर्म ने धर्म रो सम्मान करनो आपने टाबर ने सिखाना चाहिए धार्मिक समरसता ही इन देश ने और आगे ले जाए कठे कोई बोली जाति क्षेत्र धर्म ऊंच नीच रिच की भावना उन टाबर में नहीं भरनी चाहिए
0: बिल्कुल। और आगे बढ़ तो रहना चाहिए आप यदि एक स्वस्थ ज्ञान री सिंचाई दिमाग रे मायने करा लानी तो निश्चित रूप से बच्चों जी को है विकसित होवेला और मेरी सोच री फसल बाबी बहुत बढ़िया औपत देवेला।
1: बात थे कई ज्ञान री सिंचाई शिक्षा है नी।
0: हाँ सर।
1: बेहेंग जका ताला बे खोल देवे
0: बिल्कुल।
1: और अगर कोई भी एड़ी विचार कहे कि नहीं मैन मारी किताब ही हाकरी है दूजी सब खोटी है ये मतलब आ बात गलत है
0: बिल्कुल।
1: दुनिया रे हर जीव जंतु रो जो को जीवन है वो तौर तरीका है वे

0: विभिन्न है। अरे भाई पांचों आंगलियां ही समान नहीं है अपने हाथ री, तो पांच अलग अलग सोच की कर शामिल हो सके, एक हाथे हो सके, एक जड़ी हो सके। तो आपने खुद ने तय करना है कि गलत कहीं है सही कहीं है।
1: बिल्कुल
0: गलत बात मात है कि नहीं मारी है तो आ खोटी सही है, आ चीज हमें देखो इन वैज्ञानिक युग में चले को नहीं।
1: नहीं चले सा। और सबों मोटी बात है कि आ गलत और सही री सोच जी की है, बात शिक्षा इज देवेला। तो इन माध्यम से आपने जानना होवेला कि आप वास्तव में मायने कहीं तो सही कर रहे हैं और कटे आप गलत कर रहे हैं।
0: देखो के पहला कितनी बुराई, बालपन रो ब्यावन मोसरन ओसरन है नी, और उरे हाथे भाई सती प्रता ही, और भाई उरे साथे साथे बा गुंगट प्रता ही ने लुगया ने पढ़ाता ही को नी, घर में ही राखता ने नी।
1: बिल्कुल
0: तो बे सब चीजा रे लारले 150 साल में होले होले बदलाव आयो और अणवास्ते कठिन कठे क्रांति आई। तो इन बदलाव ने स्वीकार करना है कि नहीं भाई आपने कठे कोई रीति रिवाज जो को आज रे टाइम में कुरीति बन गई है, बुराई बन गई है, उन रिवाज ने आपने छोड़नो पड़ी।
1: बिल्कुल
0: अगर आप वो रिवाज नहीं छोड़ा तो सरकार वे माते कानून बनाई,
1: सही
0: तो
1: बात
0: और
1: है
0: कानून बना वे रीति रिवाज की कुरीति रे रूप में है, बुराई रे रूप में है, जो को समाज रे वास्ते खराब है, वे ने आप खुद चलान बंद करा, वह ज्यादा बढ़िया है कि उनसे पहला की सरकार कानून बना।
1: आ बात बिल्कुल सही कही गुरविंदर भाई जी की रूढ़िया है नी। दरअसल बे आपने पगार मायन पड़ियोड़ी बेड़िया वाला जीव है, तो और बे बेड़िया ने तोड़नो पड़ेला जने जा आप विकास रे पथ माते आगे अग्रसर हो सकाला। और आज बात आपने आपने शिक्षा भी सिखावे और अपना जी को परंपरागत कई स्रोत है बे आ बात कहवे वास्तव में कि आप आगे बढ़न वास्ते आपने निश्चित रूप से मन मस्तिष्क ने खुलो रखना पड़ेला, शिक्षा रा द्वार खोलना पड़ेला, और चाहे लड़को है और चाहे लड़की है सबा ने शिक्षा रो समान अधिकार देवनो पड़ेला।
0: ठीक, चाहे लड़को है चाहे लड़की,
1: बिल्कुल सर
0: और मारो कहना है कि लड़की है तो उन्हें शिक्षित जरूर करना है, उन्हें पगा माते जरूर खड़ो करना है।
1: सही बात
0: हमें वो टाइम बदल गयो भाई, हमें लड़का और लड़की में भेद खत्म।
1: खत्म
0: और आपा समाज रे मैं नहीं देखा छोरा आला दुख पावे, छोरे आला छोरी आला हुक पावे। तो अगर आप आपरी बच्ची ने लड़की ने कोई रीति कोई रिवाज कोई परंपरा रे अनुसार के नहीं हूं तो ये ने घर में ही राखू, तो आप इन दुनिया रो सब मोटो पाप कर रिया हो
1: बिल्कुल
0: और
1: सर
0: इन पाप रा भागीदार बन रिया हो। इन वास्ते इन पाप ने छोड़न, लड़कियां ने पढ़ाओ लिखाओ पगा माते कामयाब करो, उवे ने इन दुनिया रे मायने स्वच्छंद विचरण कर दो, वा आप रो अच्छो बुरो हैंग हमजे। तो आप उन्हें अच्छो बुरो समझार, उन्हें भाई जब तक पगा माते खड़ी नहीं रही तो वह लड़की तो एक तरह की अधीन हुई, परतंत्र हुई, और अधीन लड़की रो कहीं बौद्धिक विकास की कर हुई। पढ़ी लिखी लड़की रोशनी है दो घर की,
1: दो घर की बिल्कुल
0: दो
1: बात
0: घरा में चांदनो भाई लोगा करनो है तो छोरिया ने पढ़ाओ, और कोई आर थारे गांव में डाणी में घर में कह के नहीं नहीं नहीं आपने रिवाज है कि आप तो लड़की ने घर में ही रखा, तो ये रो मतलब वो आदमी खोटो, और आप बात कहने वाली आदमी है जो को पापी, उन पाप रा भागीदार मत बनो।
1: बिल्कुल मत बनो। और छोरिया ने पढ़ा लिखा ने होशियार बनाओ, बेने पगा माते खड़ी करो, और पछे बिरे सगई सगपन री बात होचो, नहीं तो भाई सवाल करेला थानू के भाई मने क्यों इतनी बेगी पर नहीं क्यों मारे तकलीफ करी।

0: दान गरीबी ने,
1: हम्म,
0: और गरीबी जो को है एक तरह अभिशाप है।
1: बिल्कुल है अभिशाप। और जीवन जीवन वास्ते आपने जिका एक सही रूप हूँ, मानक रूप हूँ, यदि बात करा कि जो सुविधा में छई जाए, जिन तरह रो जीवन छई जाए, जिन तरह रो शैली छई जाए, उन वास्ते आपने जरूरी है कि भाई आप सीमित परिवार हुए तो निश्चित रूप से आप एक अच्छी सुविधाजनक तरीका से, सम्मानपूर्ण तरीका से जीवन जी सको।
0: जीवन भाई दीनदयाल एकरीज मिले, जिन तरह जियो, न तो कोई आगे है न कोई पीछे है, न कोई
1: बिल्कुल
0: ऊपर है नीचे, कोई कह नहीं, मरिए बचे ही जीवन है, मरिए बचे कहीं नहीं है। जो जीवन मन के शरीर रो आपने मिलियो है वो ओई है, इरे बाद कहीं नहीं है, सब कपोल कल्पित झूठी बाता है। मिथ और मिथ्या में नहीं आओ, आपरा टावरा ने खास कर छोरिया ने पढ़ाओ। अरे हमें दीनदयाल भाई अतही गणी उगी इन कार्यक्रम में भगत हो रही है पूरो,
1: बिल्कुल सर, टाइम हो रही है पूरा।
0: तो चौपाल कार्यक्रम संपन्न करने सारू आप रे साथी गुरविंदर बिश्नोई,
1: और दीनदयाल शर्मा ने दिलाओ सीख, राम
0: राम
1: राम।
0: राम।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चौपाल। यह आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर अर्थात 531 किलोहर्ट्ज़ पर। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम सीमा डेरी गूंज।

0: अरे मने ठा है नवलो बा
1: कमरे में आवरा
0: मैं ही तो आऊं कमरे में मने ठा है फाटक उडाली है।
1: ओ कौ है जो कह नहीं तो जूनो गीतड़ो हुनता आया थे कौन बसीम भाई
0: आज तो ओलक लियो कई बात है
1: आज तो भाई देखो
0: निजर काम करन लाग गई थी
1: काम कर कौ है कई दिन हूँ की नहीं कोई बोली नहीं हूँ जल मान थोड़ी कहूँ है पांच रो पड़ जा आज हूँ ओलख लिया जो पीरू थे आया आज पास आया जो तो कहूँ है मारे वो थारे कह बोली है नहीं मारे गुण सीरी
0: मगज में समझ गया ना
1: कान में
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: तो वो कह नहीं कुदरत रो एडो बनाएडो कह को शरीर है
0: ऐसा ना
1: फाउ में मिली ओडो है पर काम कदी कदी कर दे
0: काम तो करे है नवलोबा और अच्छा काम
1: थे और नेहरू जी आई कम कह नहीं हुनता आया नेहरू जी तो अपन देश का पहला प्रधानमंत्री
0: पहला प्रधानमंत्री हाँ नवलोबा आज को इन बात हुनता आयो हो के आज वाणी पुण्य तिथि है।
1: ओ भाई हाँ तो बड़ा पुख्ता मिनखा और ठावा मिनखा इनका कह कितनी उम्र जेल में
0: रिया
1: और देश री आजादी में आगीवान हा और बे मोटा वकील हा
0: सर
1: और मातबर घर रहा पर भाई देखो बे देश री आजादी दिरही
0: दिरही सर
1: और पर जो है जिको कह देश रा पहला पहल प्रधानमंत्री बनिया
0: बनिया ना लो
1: और कई चंद सवा काम करिया हो क्या कई बांध बनाया न कई है जिको कह नहीं के बिजली बनाई कई हड़का दूजी नटी पर बहुत झगड़ो टंटो ही हो गया
0: हो गया
1: देखी बात है
0: आप यहाँ क्या देखी बात है महाराज।

0: जो को पढ़ लिखने में जो मालूम करियो नवलोबा वा बात ही के 14 नवंबर 1890 में इलाहाबाद यूपी में पैदा होया
1: है।
0: और 14 नवंबर जो को यानो जन्मदिन हो उन्हें जो को अपन पूरे भारत देश में जो है बाल दिवस रे रूप में मनाओ हर साल।
1: ऐ
0: जो को अपने स्वतंत्रता संग्राम रा जो को मान सेनानी हा और अपने जो को भारत रा थैंके हो के भी पहला प्रधानमंत्री हा और अपने जो को भारत री आजादी वास है 9 बार जेल भी गया हा नवलोबा और घनी पोथियां भी लिखी ही है।
1: लिखी शायद कह नहीं कह तो कह भाई देखो बड़ा कह परोपकारी मैंने कहा
0: हाँ नवलोबा हा।
1: और भारत देश री नींव मिली है जो को आज देखो कितनी तरक्की है। पर एक बात है वसीम भाई है बात मिलन करे तो चौका काम कोई है मिनक मिलन करे कोई पौधा रुकड़िया लगावे और कोई कह नहीं को धुआं धोर घणो हो तावड़ी घणो पड़न रूगो और नव तपेरो आज देखो थे दिन होगा थार दूजो दूजो दूजो को तीजो दिन आए।
0: हाँ नवलोबा हो यूं के नवलोबा जुजुआ पा तरक्की करी देश में तो कही है के ईंधन ज्यादा उपयोग में ले रिया हाँ और उन उपज के कार्बन उत्सर्जन हुए नवलोबा अपन बिजली ज्यादा उपभोग भी कर रहे हैं।
1: अरे थे वल्लाह की बात मत कहो मैं तो 5-10 को तो मैं पड़ जाऊता हमें तो है क्या नहीं क्या पग भारी होगा हैंगर
0: वे नवलोबा हाजरे टाइम में क्या एक भी दही लाउनो हो नहीं तो गाड़ी सही चाहिए।
1: हम के को नहीं वो यू वो ही पड़े एक बात है को तपत कड़ी हुई है।
0: हाँ
1: पर एक बात है मन ठा है
0: कही है
1: के नव तपो में है जो को कह भाई के जोर मत है
0: ऐसा
1: तो नव तपे भी ने तो मामलो देखो पर बैठे कोनी
0: बैठे नवलोबा
1: तो नव तपे में यू कह रो है के दो मूसा दो कातरा दो चीडी दो ताव दो यारा बादी जल हरे दो बिसर दो बाव
0: कई मतलब हो इनो
1: मतलब यू है जिको नौ दिन तपी नी
0: तपी
1: और कुदरत रो खेल है क्या भाई जे मान लो पहले दिन हवनी तपियो कोई नहीं हुयो तो बस कहीं है देखो गए उंदर घने हो दूसरे दिन जे मान लो हलो तपियो नहीं तपियो तो भाई देखो कातरा घड़ी हुई कातरा है क्या नहीं क्या आपरी हाँ खत्म कर दे। तीजे दिन नहीं तपियो तो टीडी है जिसको टीडी है
0: टीडी टीडी
1: अंडा दे दी। चौथे दिन मुझे मान लो कोई ने ताव तब नहीं आयो करियो क्योंकि बारे फिरता फिर यू ना तो बस वो कह लू ला की
0: समझ गया नवलोबा। कुल मिलान बात आ है की भैया 9 दिन तपे तो जो को कही है की खेती ने आराम है और खेती वास्ते फायदेमंद है।
1: दूजो यू कह दो बाजी जल रही
0: हाँ।
1: क्या भाई देखो के जे मान लो के हावल जे नहीं तपी तो बिच्छु कांटो ही घणो ही है बिच्छु ही घणो ही है भाई है जो कह नहीं के भाई कह आप ठाणे लागे कोनी और दो बिसरे दो बाव ए जिते कह नहीं के जिको कह जीव बनायोड़ा है तो कुदरत कह नहीं के बाने पैदा करे के तो बाने पाचा है जो कह नहीं के भाई ठाणे पुगो उन्हें काम
0: करे सा नवलोबा
1: करे
0: कहावत कही नवलोबा तो मनी एक जो को इने नव तपे रे बाबत एक कहावत याद आई के रोहन तपे और मिरग बाजे रोहन तपे मिरग बाजे आदर अण चिंतिया गाजे
1: गाजे सा गाजे गाजिया नारी हैंग क्या नहीं के भाई हैंग क्या थोक होई
0: होई सा नवलोबा
1: क्या देखो हुर्ज रे हाथे हाथे कई नक्तर होया करे
0: हो सा नक्षत्र
1: नक्तर वे जो को नक्तर मुझे भेज में बात है कावता तो बड़े रा कई जो होले आना हसी है
0: हसी है नवलोबा
1: और पड़ा है भाई नव तपे में कटी आपने कोई जंजर के काम कर लो और जीव जिंदा और पंख पंख के रू रही है जो दाना पानी रो कोई जुगाड़ कर दो
0: कर लो सर
1: और एक कह नी चौका काम करी तो नर जी आई अपनी कोई मिनक याद कर
0: नव तपे में एक और बात याद आई नवलोबा के भी जब इंसान तपे नी वो जान हीरो बने
1: बहुत कहनी तपे जदि है जो कह भाई निकरे हो
0: हाँ निकरे सा।
1: निकरे जदि ना हुए
0: हुए सा नवलो
1: और यू यू कुदरत तपी में हो जद हैंग बातें हो
0: भली भली हो
1: पहले देखो लीला लहर हो लीला लहर लारे कह नहीं कह याद ही आवे
0: आवे सा नवलो
1: मैं यू करो मन बहुत नरु जी आलो गीतड़ो थोड़ो
0: हुनो नवलो बा हुनो।

0: अंग्रेजों ने भी मानी, नेहरू जी की अमर कहानी।
1: वाह भाई ओ वाह, नियाल कर दिया थे तो हो। नेहरू जी आली याद करा दी। नेहरू जी ने कहा नहीं कि कोटि कोटि नमन करा पर बाते पर
2: ढोक
1: देवान है जी को मन रेरा फूल चढ़ाओ। बड़े
2: बड़े मैं आपने बताऊ, आज जो पुण्यतिथि है सरदार हुकुम सिंह जी, जो को अपने 30 अगस्त 1895 में जन्मे हा और अपने भारत रा राजनीतिज्ञ हा और अपने लोकसभा रा तीसरा जो को है वे अध्यक्ष रहे उड़ा हा।
1: ओ हुकुम सिंह,
2: बाद में जो को अपने राजस्थान रा राज्यपाल भी रहा हा।
1: अरे हाँ शाह हुकुम हाल तो आ रो आ है जो के जग जावा काम करिया तो आने कोई भूल नहीं सके। कोटि कोटि नमन है मंदिर रा फूल चढ़ाओ। बड़े
2: बड़े मैं आपने बताऊ, आज जो को पुण्यतिथि है अजय कुमार मुखर्जी जी री, जो को अपने पश्चिम बंगाल रा भूतपूर्व मुख्यमंत्री और अपने पश्चिम बंगाल रा नौलोबा 3 बार मुख्यमंत्री रहा।
1: ओहो ठीक ठीक, बंगाल
2: बंगाल रा।
1: हाँ उठे देखो भाई, राजकाज हेतु थरपी जिया हमारिया करिया तो आप टाइम में जग जावा काम करिया तो नहीं कोई नहीं भूल सके। कोटि कोटि नमन है मंदिर रा फूल चढ़ावा
2: चढ़ावा। बड़े बड़े मैं आपने बताऊ, साहित्य री तरफ लेन चालू। साहित्य और जो लिटरेचर है अपनो के भाई, आज जो पुण्यतिथि है कंदुकुरी वीरेश लिंगम जी री।
1: और नाम
2: है तेलुगु भाषा रा प्रसिद्ध विद्वान हा नवलोबा और आधुनिक जुगो तेलुगु साहित्य है उमे जुगो गद्य ब्रह्मर नाम विख्यात था। और उन्हें बात कही है के जुगो एक बतों के लक्ष्मण शास्त्री जोशी जीजरी भी आज पुण्यतिथि है। अपने जुगो मराठी लेखक हा।
1: ठीक ठीक, आप जिन इलाके में हाजते सेवा चाकरी करी तो आपने पोतिया लिखन किया गुण विद्वान
2: मिनखा
1: कोई नहीं भूल सके। कोटि कोटि नमन है मंदिर रा फूल चढ़ावा।
2: एक बात और बताऊं नोलोबा के, आज जो को अपने भारत रा बहुत जाबान सैनिक है हंगपन दादा जी वाणी भी आज पुण्यतिथि है। वे अपने जम्मू कश्मीर में 2016 में आतंकवादियों मुठभेड़ टाइम में शहीद हो गया।
1: ओहो देश ने बात है कह नहीं भाई, देखो प्राण नचावर करना और फौजी आरो कह नहीं।

0: पानी पीने अधिकार है, कटी बहुनो अधिकार है, गाबो पैर अधिकार है, बे सब अधिकार है नी। रमा ताई जेड़ा रमा बाई जेड़ा कह नी त्यागी मिन्न कर लु गया हो या
1: नौलो बा।
0: आज आप फूका रे हाँ लेवा
1: लेवा
0: सब मैं रह जी को भले कोई वह तो बता दो कुल जन्मिया है बे बता दो टाइम ही खासो हो गो तो कह हुई होगा आज ईद ही नहीं हो।
1: आज ईद को नहीं नौलोबा कल है ईद।
0: ओ क्यों चांद दिखियो को
1: चांद उन दिन दिखियो को नहीं तो अब कल ईद मनावा नौलोबा।
0: तो आज दी ईद रहे भाई सेना ने है जो कह नहीं
1: मुबारकबाद है
0: सा। और समर बात है अल्लाह ताला है जो कह के भाई हैंग चोको चोको वे और सब ने दौलत मोहब्बत शोहरत ताकत तंदुरुस्ती बख्शीश वे
1: होवे सा नौलोबा।
0: अरे बात है तो मैं बताओ कौन है जो जलमिया
1: आज जो जन्म दिवस है रवि शास्त्री जी रो है जो अपने प्रसिद्ध पूर्व भारतीय क्रिकेटर है नौलोबा और अपने जो भारतीय टीम रा हेड कोच भी रहे है वर्तमान में बहुत अच्छा कमेंटेटर है क्रिकेटरी जो को है क्या तो देख हाल बता
0: क्रिकेट के खेल लड़ो तो आने कोई नहीं भूल सके चौका खेल खेलिया था कोटी कोटी बधाई है
1: ऐसा नौलोबा।
0: भगवान हाजत है जरा के आने बड़े
1: बड़े मैं आपने बताऊं कि अपने जो को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री है नितिन गडकरी जी वाणी भी आज जन्म दिवस है।
0: ओहो बस भाई है हूँ आऊँ एक दो बार मिलियो कोई जलसे में आया क्या वो कहूँ क्या हड़का हरू करी नी टोल लागा चल
1: हाँ
0: हूँ वहाँ मिली हो जो है तो बड़ा हसमुख मिनक है
1: ऐसा ना
0: और कह रही देश की तरक्की है जो हड़का ने मार पर जोर करावे
1: करे सर
0: और तो ऐडा कह रही बिरला मिनक है कोटी कोटी बधाई
1: है ऐसा ना
0: और भगवान हाजत है जरा के देश की तरक्की में यही काम करता

0: आन बड़े
1: बड़े आज को जन्म दिवस है भालचंद्र नेमाडी जी रो। आज को अपने भारतीय मराठी लेखक हा, उपन्यासकार, कवि और समीक्षक भी हा। आज को अपने मराठी लेखन में बहुत मोटा मोटा काम करिया, वन वास्ते यहाँ साहित्य अकादमी पुरस्कार और पद्मश्री और ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिले।
0: मान सम्मान मोटो है भगवान बड़े
1: बड़े। मैं आपने बताऊ, आज जन्म जयंती है बिपिन चंद्र जी री। अपने कांगड़ा हिमाचल प्रदेश ताल्लुक रखता हा नौलोबा, और अपने प्रख्यात इतिहासकार हा और राष्ट्रीय पुस्तक न्यास जी को ही वाणा पूर्व अध्यक्ष भी रहे।
0: गुणी विद्वान मैंने कह चौका काम करिया तो आने तो मंदिरेरा फूल चढ़ा दू,
1: बिल्कुल चढ़ा दो सन,
0: कोटी कोटी नमन कर दू। बड़े
1: बड़े मैं आपने बताऊंगा, आज को जन्म जयंती है ONV कुरुप जीरी। अपने प्रसिद्ध मलयाली कवि गीतकार हा नौलोबा, और अपने कवि रूप में कई देशारी यात्रा भी
0: करी
1: भी नौलोबा ज्ञानपीठ पुरस्कार
0: तो कह नहीं विद्वान मैंने कहा कह नहीं कहा अपनी पोतिया लेकिन गया तो भाषा बोली कोई वो करी हो राजीव है ठीक है नहीं तो आनी कोटी कोटी है जो को नमन करा और मंदिरेरा फूल चढ़ाओ। बड़े
1: बड़े आज को जन्म जयंती है पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी जी री। अपने छत्तीसगढ़ तालुक रखता है नवलोबा, और अपने सरस्वती पत्रिका रा कुशल संपादक है और साहित्य वाचस्पति और निबंधकार रहा है।
0: वाह लिखा रहा गुड़ी विद्वान मिनक है तो आनी कोटी कोटी नमन है मंदिरेरा फूल चढ़ावा।
1: हाँ
0: यू करो नी वसीम भाई,
1: हाँ
0: ईद की कोनी कल
1: है
0: दाओ थे आज कबूल कर लो,
1: कर ली सर
0: ठीक है नी। ईद आलो कोई बढ़िया कह नहीं मद करो, नमाज आलो कोई वह तो बो कोई अर्जिशियो हुनाओ
1: हुनाओ
0: तो मारो जीव हो रो जी। और मैं है जी को देखो के हुनाओ फटो फट
1: लो सा नवलबा।

0: अफवाह भाई हो, मारे एकदम चीज ठाणा
1: आई गयो।
0: ओ हैंग बातें
1: तो आज जो मोटी मोटी बात होगी नवलोबा।
0: हाँ मैं हूँ आई कू भाई नव तपो है जो थे कटी उठी घड़ा कह नहीं कह हल और तो खाई जो मत
1: नहीं नहीं नहीं
0: फिर ता फिर जो मत कहू कह बेड़ू तैयार हुए जिते हूँ फेर लू माड़ा।
1: हाँ
0: हमें तारा ही खासा ऊंचा आई गया है
1: आई गया नवलोबा
0: प्रोग्राम रो टाइम ही होगो पूरो तो भाई सेना लेवा ही
1: राम राम।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सीमा डेरी गूंज। ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर अर्थात 531 किलो हर्ट्स पर। आइए अब आनंद लिया जाए फिल्म संगीत का। फिल्म संगीत में लीजिए पहला गीत आपको सुनवाते हैं। फिल्म का नाम है 1942 लव स्टोरी। इस गीत को गाया है कविता कृष्णमूर्ति ने, संगीत आर डी बर्मन का, और इस गीत के बोल लिखे हैं जावेद अख्तर ने। तो आइए सुनते हैं फिल्म संगीत की कड़ी में ये पहला नगमा।

फिल्म लव से ये गीत अभी आपने सुना। एसपी बाला सुब्रमण्यम और चित्रा की युगल आवाजें थी। इस गीत के बोल लिखे मजरूह सुल्तानपुरी ने और संगीत आनंद मिलन का।

प्यार तो होना ही था फिल्म से गीत अभी आपने सुना श्रोताओं। कुमार सानू की मधुर आवाज थी, गीतकार विनोद मेहरा और संगीतकार जतिन ललित।

श्रोताओं, ये गीत अभी आपने सुना फिल्म दिल क्या करे से। अलका याग्निक की मधुर आवाज थी। इस गीत के बोल लिखे आनंद बख्शी ने और संगीत जतिन ललित का।

अभिजीत की आवाज में ये गीत अभी आपने सुना श्रोताओं, फिल्म का नाम दिल ही दिल में। समीर ने इस गीत के बोल लिखे और संगीत नदीम श्रवण का।

मिनमिनी की मधुर आवाज में ये गीत अभी आपने सुना फिल्म रोजा से। पीके मिश्रा ने इस गीत के बोल लिखे और संगीत एआर रहमान का।

उदित नारायण और अलका याग्निक की युगल आवाजों में ये गीत अभी आपने सुना। फिल्म का नाम मैंने दिल तुझको दिया। इस गीत के बोल लिखे फैज अनवर ने और संगीत देबू मलिक का।

0: और प्यार हो गया फिल्म से गीत अभी आपने सुना श्रोताओं, उदित नारायण की मधुर आवाज़ थी। इस गीत के बोल लिखे जावेद अख्तर ने और संगीत नुसरत फ़तेह अली खान का था। और इसी के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। यह आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है, मीडियम वेव 564.97 मीटर अर्थात 531 किलो हर्ट्स पर। श्रोताओं, रात्रि के 8:45 होने को हैं। आइए सुनते हैं हिंदी में समाचार, उसके पश्चात अंग्रेजी में समाचार जो कि हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।
1: भारती केंद्र ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए सार्थक पीडीएस योजना के विस्तार को मंजूरी दी। योजना पर 25,500 करोड़ रुपए से अधिक खर्च होंगे। मध्य और उत्तर पश्चिम भारत में अगले 2-3 दिन तक भीषण लू की चेतावनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बढ़ते तापमान के मद्देनजर जरूरतमंद और संवेदनशील वर्ग के लोगों का ध्यान रखने का आह्वान किया। सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के निर्वाचन आयोग के निर्णय को बरकरार रखा। कहा, यह प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव को बढ़ावा देती है। असम विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पारित, यूसीसी लागू करने वाला तीसरा राज्य बना। भारतीय निशानेबाज ईशा सिंह ने आईएसएसएफ विश्व कप में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में विश्व रिकॉर्ड तोड़ते हुए स्वर्ण पदक जीता। और भारत 2027 एशियाई रिले और 2028 एशियाई इंडोर चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। अब समाचार विस्तार से। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने आज सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक पीडीएस को जारी रखने की अनुमति दे दी है। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण में सहयोग करेगी।
2: इस प्रोग्राम में 3 बड़े सुधार आज अप्रूव हुए हैं। सबसे पहला, राज्य सरकारों के एजेंसीज राज्य में तो एफसीआई का बड़ा गोडाउन होता है, वहां से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में डिविजन्स में फेयर प्राइस शॉप तक पहुंचाने का जो कॉस्ट होती है उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे। दूसरा, फेयर प्राइस शॉप्स हैं उनमें डीलर्स का रिम्यूनरेशन रखा गया था, उसको बढ़ाने की जरूरत थी तो वो भी फैसला लिया गया। और तीसरा फैसला, टेक्नोलॉजी का यूज करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से देश के प्रत्येक जरूरतमंद लोगों को समय पर अनाज पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि इस दिशा में इस प्रणाली को और अधिक आधुनिक तथा प्रभावी बनाने का निर्णय लिया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा सार्थक पीडीएस योजना के विस्तार की मंजूरी का स्वागत किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि सरकार गरीबी उन्मूलन योजनाओं को अधिक पारदर्शी और सुविधाजनक बनाने के लिए उनमें प्रौद्योगिकी का समावेश कर रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि निर्वाचन आयोग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुच्छेद 324 और उसके अधीन निर्मित नियम के अंतर्गत एसआईआर करवाने

0: की शक्ति रखता है। एक रिपोर्ट।
1: मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की एक पीठ ने उन याचिकाओं पर फैसला सुनाया जिनमें पिछले साल जून महीने में चुनाव आयोग द्वारा बिहार में SIR आयोजित करने के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। फैसले में कहा गया कि विवादित प्रक्रिया को केवल अमान्य नहीं कहा जा सकता है क्योंकि ये नियमित पुनरीक्षण के लिए निर्धारित सामान्य तौर तरीकों के अनुरूप नहीं है। इसलिए नहीं कहा जा सकता है कि निर्वाचन आयोग ने अपनी वैधानिक शक्तियों से अधिक कार्रवाई की है। समाचार कक्ष वैष्णवी।
2: भारतीय जनता पार्टी ने SIR को पूर्णतः संवैधानिक करार देने के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत किया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने इस फैसले को कांग्रेस समेत विपक्ष की संवैधानिक पराजय बताया। दिल्ली में SIR की प्रक्रिया 20 जून से शुरू होगी। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि मतदाता सूची का मसौदा 5 अगस्त को और अंतिम मतदाता सूची इस वर्ष 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। श्री कुमार ने बताया कि बूथ स्तर के अधिकारी 30 जून से दिल्ली की मतदाता सूचियों के सत्यापन के लिए घर घर जाकर सर्वेक्षण करेंगे। असम विधानसभा ने आज समान नागरिक संहिता विधेयक पारित कर दिया है। इसके साथ ही असम ऐसा कानून पारित करने वाला पूर्वोत्तर का पहला और देश का तीसरा राज्य बन गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस विधेयक को विधानसभा के पहले सत्र में सोमवार को पेश किया गया था।
3: असम में समान नागरिक संहिता विधेयक का उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक कानूनी व्यवस्था स्थापित करना है। संवैधानिक संरक्षण और पारंपरिक रीति रिवाजों को सुरक्षित रखने के लिए अनुसूचित जनजातियों को इस विधेयक के दायरे से बाहर रखा गया है। वहीं विभिन्न धर्मों पर आधारित व्यक्तिगत कानूनों के स्थान पर समानता और लैंगिक न्याय सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक समान कानूनी ढांचा लागू करने का प्रावधान किया गया है। विवाह संबंधी प्रावधानों के तहत विधेयक में एक विवाह की व्यवस्था अनिवार्य की गई है तथा वर की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और वधु की न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई है। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
2: गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य विधानसभा में समान नागरिक संहिता पारित होने पर असम की जनता को बधाई दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि समान नागरिक संहिता भाजपा का स्थापना दिवस से ही संकल्प रहा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
2: मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2 से 3 दिनों तक मध्य और उत्तर पश्चिमी भारत में लू की स्थिति बनी रहेगी। विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में लू का रेड अलर्ट जारी किया। दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, ओडिशा, पंजाब, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में भी कल लू का प्रकोप बना रहेगा। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के कई भागों में भीषण गर्मी के और लू के मद्देनजर जरूरतमंद और संवेदनशील वर्ग के लोगों का विशेष ध्यान रखने की अपील की है। एक रिपोर्ट।
3: आज केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने सभी मंत्रियों के साथ मौजूदा लू की स्थिति पर चर्चा की। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि उन विशेष कदमों पर चर्चा हुई जिन्हें प्रत्येक मंत्रालय और विभाग अपने अपने कार्यक्षेत्र में उठा सकते हैं।
4: प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट में मौसम की जो हीट वेव की परिस्थिति है उसका भी सभी मंत्रियों के साथ चर्चा की और माननीय प्रधानमंत्री

0: मंत्री जी का जो राष्ट्र के प्रति आह्वान है, उसी आह्वान के तहत सभी से अपने अपने मंत्रालय में सुविधा पहुंचाने की किस तरह की सुविधाएं की जा सकती है, उसके ऊपर भी चर्चा हुई।
1: आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के मेडिसिन विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर नवल किशोर विक्रम ने लोगों को लू से बचने के लिए खुद को हाइड्रेटेड रखना और ORS जैसे इलेक्ट्रोलाइट युक्त तरल पदार्थों का सेवन करना और दिन के समय तपती धूप में बाहर निकलने से बचने की सलाह दी। अनुपम मिश्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: उधर राजस्थान में भी राज्य के 5 जिलों में लू की चेतावनी जारी की गई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: दिन और रात के बढ़ते तापमान से प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में जनजीवन पर असर पड़ा है। दिन के समय गांवों और शहरों में सड़कों और बाजारों में लोगों की आवाजाही सीमित हो गई है। विभिन्न जिलों में प्रशासन की ओर से गर्मी से निपटने के लिए कई स्तरों पर इंतजाम किए जा रहे हैं। साथ ही विभिन्न संस्थाएं भी ठंडे पेय का वितरण कर लोगों को राहत पहुंचाने के जतन में जुटी है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने प्रदेशवासियों से प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों की पालना करने की भी अपील की है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
2: सर्वोच्च न्यायालय ने भी आज सभी न्यायाधीशों से अपील की कि वे भीषण गर्मी को देखते हुए मामलों की सुनवाई ऑनलाइन करें। न्यायालय ने कहा कि वह इस संबंध में न्यायिक निर्देश जारी नहीं कर सकता। न्यायालय दिल्ली में बढ़ती हुई गर्मी को देखते हुए सभी अदालतों में ऑनलाइन कार्यवाही करने के निर्देश देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रहा था। सर्वोच्च न्यायालय ने ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों पर सरकार द्वारा पूर्व प्रभावी 28% GST को बरकरार रखते हुए इसे वैध बताया है। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म केवल मध्यस्थ नहीं है बल्कि उन्हें आपूर्तिकर्ता माना जाना चाहिए और उन पर वस्तु तथा सेवा कर GST लागू होता है। सर्वोच्च न्यायालय ने कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए कम से कम 2 भारतीय भाषाओं सहित 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य करने संबंधी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की नीति को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करेगा। शीर्ष न्यायालय ने केंद्र सरकार, बोर्ड और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद को नोटिस जारी कर 2 सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने नीट UG पेपर लीक मामले में आज 3 और लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इनमें महाराष्ट्र के लातूर का एक डॉक्टर और पुणे स्थित कोचिंग संस्थान का एक शिक्षक शामिल है। जांच एजेंसी ने पुणे के ही एक अन्य कोचिंग संस्थान के भौतिक विज्ञान शिक्षक को भी गिरफ्तार किया है। इस मामले में अब तक कुल 13 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। संघ लोक सेवा आयोग ने पहली बार सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 की अनंतिम उत्तर कुंजी जारी की है। आयोग ने कहा कि परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार 31 मई शाम 6 बजे तक upssconline.nic.in पर उपलब्ध प्रश्नपत्र आपत्ति पोर्टल के माध्यम से अपनी आपत्तियां प्रस्तुत कर सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 के लिए उच्च शिक्षा विभाग ने नामांकन आमंत्रित किए हैं। नामांकन राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल www.awards.gov.in के माध्यम से 5 जुलाई तक भेजे जा सकते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि देश की उन्नति के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास बेहद आवश्यक है। आज गांगटोक में सिक्किम विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने शिक्षा को सशक्तिकरण का मार्ग बताया और विद्यार्थियों से कहा कि वे अपने विचारों, नवाचारों और आपसी विश्वास के जरिए राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाएं। और खेलों में म्यूनिख में ISSF निशानेबाजी विश्व कप में ईशा सिंह ने महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में 43 हिट लगाकर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने जूनियर और सीनियर दोनों वर्ग में विश्व रिकॉर्ड कायम किया। फाइनल में ईशा ने पूर्व विश्व चैंपियन मिरोस्लावा मिंचेवा और कोरिया की शीर्ष खिलाड़ी जीन यांग को हराकर पहला स्थान हासिल किया। डेरिन वेनेकैम्प दूसरे

0: और मिरोस्लावा मिनिचेवा तीसरे स्थान पर रहीं। उधर न्यू चंडीगढ़ में आईपीएल क्रिकेट के एलिमिनेटर में सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक राजस्थान रॉयल्स ने 16वें ओवर में 4 विकेट पर 211 रन बना लिए हैं। वैभव सूर्यवंशी ने 97 रन की पारी खेली। भारत ने एशियन इंडोर चैंपियनशिप 2027 और एशियन रिले 2028 की मेजबानी के अधिकार हासिल कर लिए हैं। वर्ल्ड एथलेटिक्स के उपाध्यक्ष आदिल सुमरेवाला ने आज इस बात की पुष्टि करते हुए बताया कि एशियन इंडोर चैंपियनशिप 2027 का आयोजन भुवनेश्वर में जबकि चंडीगढ़ एशियन रिले 2028 की मेजबानी करेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए सार्थक पीडीएस योजना के विस्तार को मंजूरी दी। मध्य और उत्तर पश्चिम भारत में अगले 2-3 दिन तक भीषण लू की चेतावनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बढ़ते तापमान के मद्देनजर जरूरतमंद और संवेदनशील वर्ग के लोगों का ध्यान रखने का आह्वान किया। सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के निर्वाचन आयोग के निर्णय को बरकरार रखा। असम विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पारित, यूसीसी लागू करने वाला तीसरा राज्य बना। और भारतीय निशानेबाज ईशा सिंह ने आईएसएसएफ विश्व कप में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में विश्व रिकॉर्ड तोड़ते हुए स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Centre approves extension of Sarthak PDS scheme to modernise public distribution system with outlay of over 25,500 crore rupees. Severe heat wave conditions to continue over central and northwest India during next 2 to 3 days. Prime Minister Narendra Modi urges citizens to take care of vulnerable people amid soaring mercury. Supreme Court upholds legality of Election Commission's SIR drive, says exercise advances free and fair elections. Assam Assembly passes Uniform Civil Code Bill, becoming third state in the country to adopt the legislation. Indian shooter Isha Singh breaks world record in women's 25-meter pistol event, clinching gold at ISSF World Cup in Munich. And India to host 2027 Asian Relays and 2028 Asian Indoor Championships. The Cabinet Committee on Economic Affairs, CCEA, today approved the continuation of the scheme to modernise the public distribution system, PDS, including ration transport, dealer support and technology upgrades till March 2031. The umbrella scheme, called Scheme for Assistance in Ration Transport and Handling Income with Automation in PDS, Sarthak PDS, has been cleared in the 16th Finance Commission cycle award period with an outlay of 25,530 crore rupees as central share. Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav made the announcement regarding the Cabinet's decision while briefing media in New Delhi.
2: इस प्रोग्राम में तीन बड़े सुधार आज अप्रूव हुए हैं।
3: थ्री मेजर रिफॉर्म्स हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड इन दिस प्रोग्राम टुडे। फर्स्ट, द गवर्नमेंट विल सपोर्ट द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इनकर्ड इन मूविंग फूड ग्रेन्स फ्रॉम लार्ज एफसीआई वेयरहाउसेस इन द स्टेट्स टू फेयर प्राइस शॉप्स अक्रॉस डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स एंड डिविजन्स। सेकंड, देयर वाज अ नीड टू इंक्रीज द रेम्युनरेशन ऑफ फेयर प्राइस शॉप डीलर्स एंड ए डिसीजन हैज बीन टेकन इन दिस रिगार्ड एज वेल। थर्ड, एफर्ट्स विल बी मेड टू मॉडर्नाइज द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम थ्रू द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी।
2: पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं?
1: The minister said the scheme will work towards fulfilling the government's commitment to 81.35 crore persons covered under the National Food Security Act. Prime Minister Narendra Modi has said the government is committed to ensure that food grains reach every needy person in the country on time through PDS. In a social media post, the Prime Minister said the CCEA's decision will make the delivery, logistics and transportation arrangements under the PDS more transparent and efficient, while also speeding up the resolution of complaints. Home Minister Amit Shah also hailed the approval of Sarthak PDS Phase 2 by the Union Cabinet. Normal life has been severe.

0: Yeji and claimed the gold medal. India has been awarded the hosting rights for the 2027 Asian Relays and the 2028 Asian Indoor Championships. The decision was taken at the Executive Council meeting of the Asian Athletics Association held in Hong Kong ahead of the Asian Under-20 Championships beginning tomorrow. World Athletics Vice President Adil Sumariwala said the 2027 Asian Relays will be held in Chandigarh, while Bhubaneswar will host the 2028 Asian Indoor Championships. In IPL cricket, Rajasthan Royals were 234 for 6 in 18.1 overs against Sunrisers Hyderabad in the eliminator match in New Chandigarh when reports last came in. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Centre approves extension of Sarthak BDS scheme to modernise public distribution system with outlay of over 25,500 crore rupees. Severe heat wave conditions to continue over central and northwest India during next 2 to 3 days. Prime Minister Modi urges citizens to take care of vulnerable people amid soaring mercury. Supreme Court upholds legality of Election Commission's SIR drive, says exercise advances free and fair elections. Assam Assembly passes Uniform Civil Code Bill, becoming third state in the country to adopt the legislation. Indian shooter Aisha Singh breaks world record in women's 25-meter pistol event, clinching gold at ISSF World Cup in Munich. That is all in the news at 9. Good night.
1: ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है. मीडियम वेव 564.97 मीटर अर्थात 531 किलो हर्ट्ज पर. लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम साहित्य सुधा. आज आप सुनेंगे पूजा अग्रवाल से कविता वाचन.
2: मेरी पहली कविता का शीर्षक है बहू कहाँ से लाएगा. हूँ मैं एक पर हूँ हर कहीं, हर जगह है मेरा नया रूप. हूँ मैं एक पर हूँ हर कहीं, हर जगह है मेरा नया रूप. पर मैं कोई छलावा नहीं, ना ही पहेली. कई रिश्तों में घिरी पर अकेली मैं हूँ. कहीं बेटी, कहीं बहन, कहीं बहू, कहीं पत्नी और कहीं माँ. हर एक रूप में हूँ मैं, पर कैसी विडम्बना. पर कैसी विडम्बना कि मेरे जन्म पर ना बटी मिठाई, ना ही दी गई बधाई. गिरती पड़ती खुद ही संभली, गिरती पड़ती खुद ही संभली. बड़ी हुई तो मेरी चंचल हंसी ने महकाया माँ का आंगन. पर पा सकी ना दादी का दुलार, ना ही पिता का प्यार. क्यों? क्योंकि थी मैं एक लड़की जिसने फेरा था पानी परिवार की आशाओं पर. कुलदीपक की चाह में तड़प रहा था जो आंगन, वहां बनकर मैं रह गई अभागन. कुलदीपक की चाह में तड़प रहा था जो आंगन, वहां बनकर रह गई मैं अभागन. वक्त से पहले वक्त ने कर दिया मुझको बड़ा, वक्त से पहले वक्त ने कर दिया मुझको बड़ा. अभी बचपन बीता भी न था कि सामने नजर आया बुढ़ापा खड़ा. अभी बचपन बीता भी न था कि सामने नजर आया बुढ़ापा खड़ा. आ गया बोझ दो परिवारों का मेरे नाजुक कांधों पर, जिसे ढोना था उन रूढ़ियों और रीतियों को जो बनी थी मेरे जन्म से पहले. सोचने पर हुई मैं मजबूर, सोचने पर हुई मैं मजबूर. आखिर क्या है मेरा कसूर? क्या अब चलना होगा मुझे उन रास्तों पर जो पहले से तय थे मेरे लिए? क्या मैं जिंदा हूँ? क्या अब चलना होगा मुझे उन रास्तों पर जो पहले से तय थे मेरे लिए? फिर उठा एक सवाल मन में, क्या मैं जिंदा हूँ? क्या है मेरा वजूद? अगर हाँ तो क्या चलना होगा अब मुझे मुर्दों की शह पर? जब जलते देखा मैंने खुद को, कभी सती के नाम पर, कभी दहेज के नाम पर बलि चढ़ते, तो कांप उठी मेरी आत्मा और मेरा मन. कहाँ सोचा करती थी मैं कि क्यों मार डालना चाहा मेरी माँ ने मुझे जन्म से पहले. कहाँ सोचा करती थी मैं कि क्यों मार डालना चाहा मेरी माँ ने मुझे जन्म से पहले. पर आज मैं समझ सकती हूँ उसका दर्द और बेबसी. कैसे देख पाती वो मुझे जिंदा जलते, कभी दहेज की भेंट चढ़ते तो कभी सती होते. कब तक, आखिर कब तक, कब तक चलेगा ये वहशियत का नंगा नाच? झूठी मर्यादाओं की आड़ में कब तक चढ़ूंगी मैं बलि? बस बस बहुत हुआ. हाँ मैं लड़की हूँ, हाँ मैं लड़की हूँ, पर ये मेरा गुनाह तो नहीं. मुझी से शुरू हुई थी ये दुनिया और खत्म हो जाएगी मेरे ही साथ. समझना होगा तुझे ए पुरुष प्रधान समाज, समझना होगा तुझे ओ पुरुष प्रधान समाज. जो है तू बस मेरे ही दम से है आज. गर मुझे यूं जन्म से पहले मारेगा या जिंदा जलाएगा, गर मुझे जन्म से पहले यूं मारेगा या जिंदा जलाएगा, तो सोच जरा अपने कुलदीपक की बहू कहाँ से लाएगा. तो सोच जरा अपने कुलदीपक की बहू कहाँ से लाएगा। मेरी अगली कविता का शीर्षक है छला।

माना प्यार सब भावनाओं में भारी है, माना प्यार सब भावनाओं में भारी है, पर क्या ये सिर्फ प्रिय और प्रियतम की जिम्मेदारी है? माना प्यार सब भावनाओं में भारी है, पर क्या ये सिर्फ प्रिय और प्रियतम की जिम्मेदारी है? जो गीले में सोई रातों को जागी है, जो गीले में सोई रातों को जागी है, वो माँ कितनी अभागी है। वो बाप जिसका तुझबिन कोई आधार नहीं, वो बाप जिसका तुझबिन कोई आधार नहीं, क्या करता तुझसे प्यार नहीं? क्या उनका तुझ पे कोई अधिकार नहीं? वो गुड़िया जो बड़े नाजों से पली है, कहीं वो टुकड़ों कहीं गठरी में मिली है। वो गुड़िया जो बड़े नाजों से पली है, कहीं टुकड़ों कहीं गठरी में मिली है। प्यार ये प्यार नहीं महज एक छलावा है, प्यार ये प्यार नहीं महज एक छलावा है। मत जा मत जा, ये मौत का बुलावा है। माना किसी की जान है तू, माना किसी की जान है तू, पर माँ बाप का गुरूर है अभिमान है तू। एक बार तो सोच जरा भागने से पहले, एक बार तो सोच जरा भागने से पहले, कितनी रातें जागे होंगे तेरे जागने से पहले। तेरे लिए जो सारी दुनिया से लड़े हैं, देख आज कैसे सर झुकाए खड़े हैं। तेरे लिए जो सारी दुनिया से लड़े हैं, देख आज कैसे सर झुकाए खड़े हैं। हर फर्ज उन्होंने बखूबी निभाया है, हर फर्ज उन्होंने बखूबी निभाया है। झुकता नहीं था जो कभी, हर बाजी तुझसे उसने हारी है। कुछ तो ख्याल कर, कुछ तो ख्याल कर, अब फर्ज निभाने की तेरी बारी है। कुछ तो ख्याल कर, अब फर्ज निभाने की तेरी बारी है। मेरी अगली कविता का शीर्षक है बह जाने दो। बह जाने दो पलकों पर भार बने उन आंसुओं को, बह जाने दो पलकों पर भार बने उन आंसुओं को, जो व्यर्थ ही संजो रखे हैं तुमने गए वक्त पर बहाने के लिए। बह जाने दो पलकों पर भार बने उन आंसुओं को, जो व्यर्थ ही संजो रखे हैं तुमने गए वक्त पर बहाने के लिए। बह जाने दो व्यर्थ अधूरे और अर्थहीन रिश्तों की पीड़ा, बह जाने दो व्यर्थ अधूरे और अर्थहीन रिश्तों की पीड़ा। बुझा दो मन में आधे अधूरे सुलगते मरणासन सपनों की आग, बुझा दो मन में आधे अधूरे सुलगते मरणासन सपनों की आग। बह जाने दो एक तरफा मोह के कांटे जिनमें उलझा है मन, बह जाने दो एक तरफा मोह के कांटे जिनमें उलझा है मन। कब तक ढोते रहोगे इन्हें? खाली हो जाने दो आंखों की अंजलियों को, खाली हो जाने दो आंखों की अंजलियों को, समेट लेने को नई खुशियां और सपने। बह जाने दो पलकों पर भार बने उन आंसुओं को, जो व्यर्थ ही संजो रखे हैं तुमने गए वक्त पर बहाने के लिए। मेरी अगली कविता का शीर्षक है बेहतर है। बेहतर है यकीनन, यकीनन बेहतर है कुछ स्मृतियों का मर जाना, यकीनन बेहतर है कुछ स्मृतियों का मर जाना, जो तोड़ देती है हो, जो तोड़ देती हो अंदर तक अंतर्मन को। बेहतर है कुछ स्मृतियों का मर जाना, जो तोड़ देती हो अंदर तक अंतर्मन को, झकझोर देती हो हमारे अस्तित्व को, जो अतीत से निकलकर अचानक खड़ी हो जाती है मन पटल पर। झकझोर देती है हमारे अस्तित्व को, जो अतीत से निकलकर अचानक खड़ी हो जाती है मन पटल पर। रिश्ती है जख्मों सी, रिश्ती है जख्मों सी, रह रहकर टीस के साथ घेर लेती है अकेला पाते ही तुझको मुझको, घेर लेती है अकेला पाते ही तुझको मुझको, और भर देती है मन में निराशा, असहनीय पीड़ा और वेदना, जो काट देती है खुद से खुद को ही, जो काट देती है खुद को खुद से ही। हताश सा कोई परिंदा जो होना चाहता हो आजाद, हताश सा कोई परिंदा जो होना चाहता हो आजाद इस भ्रम जाल से, हताश सा कोई परिंदा जो होना चाहता हो आजाद इस भ्रम जाल से। इसलिए यकीनन बेहतर है कुछ स्मृतियों का मर जाना, इसलिए यकीनन बेहतर है कुछ स्मृतियों का मर जाना। सब जायज है, कविता का शीर्षक है सब जायज है। तेरे शिकवे शिकायतें उल्हाने सब जायज है, तेरे शिकवे शिकायतें उल्हाने सब जायज है, गर किसी दिन सूरज पश्चिम से निकले, अगर किसी दिन सूरज पश्चिम से निकले, धूप रात को ढलने लगे, चांद दिन में चलने लगे। तेरे शिकवे शिकायतें उल्हाने सब जायज है, अगर किसी दिन सूरज पश्चिम से निकले, धूप रात को ढलने लगे, चांद दिन में चलने लगे। समंदर अपनी सारी सीमाएं तोड़ दे, समंदर अपनी सारी सीमाएं तोड़ दे, बहा ले जाए सब कुछ, नदियां छोड़ दे बहना किनारों के साथ, नदियां छोड़ दे बहना किनारों।

के साथ तारे टिमटिमाने लगे दिन में, तारे टिमटिमाने लगे दिन में, जर्रा जर्रा भूल जाए मर्यादा अपनी। तो तू उस दिन कहना मुझे, तो तू उस दिन कहना मुझे, तेरे शिकवे शिकायतें उल्हाने, तब मैं मान लूंगी सब जायज है। मेरी अगली कविता का शीर्षक है बेजार सी जिंदगी। जिंदगी बेजार सी लगती है, जिंदगी बेजार सी लगती है, महज खरपतवार सी लगती है। जिंदगी बेजार सी लगती है, महज खरपतवार सी लगती है, बहुत बोझिल सी हैं धड़कने, बहुत बोझिल सी हैं धड़कने, सांसें भी यहाँ उधार सी लगती है, बहुत बोझिल है धड़कने, सांसें भी यहाँ उधार सी लगती है। नाजुक बहुत है रिश्ते, नाजुक बहुत है रिश्ते, संभल कर जरा, नाजुक बहुत है रिश्ते, संभल कर जरा, तलक जुबान तेज धार सी लगती है, तलक जुबान तेज धार सी लगती है। जरा एहतियात से रखना कदम यहाँ, जरा एहतियात से रखना कदम यहाँ, अपनों के बीच छुपी कटार सी लगती है, जिंदगी बेजार सी लगती है। बन तो

0: जिल है, धड़कने सांसें भी यहाँ उधार सी लगती है। नाजुक बहुत है रिश्ते, नाजुक बहुत है रिश्ते, संभल कर जरा। नाजुक बहुत है रिश्ते, संभल कर जरा। तलख जुबान तेज धार सी लगती है, तलख जुबान तेज धार सी लगती है। जरा एहतियात से रखना कदम यहाँ, जरा एहतियात से रखना कदम यहाँ। अपनों के बीच छुपी कटार सी लगती है, जिंदगी बेजार सी लगती है। बन तो जाते हैं अनजाने ही रिश्ते कई, बन तो जाते हैं अनजाने ही रिश्ते कई। चुभन उनकी तेज तलवार सी लगती है, चुभन उनकी तेज तलवार सी लगती है। दिखाई नहीं देती दूरियां मगर, दिखाई नहीं देती दूरियां मगर, हर रिश्ते में खड़ी एक दीवार सी लगती है। दिखाई नहीं देती दूरियां मगर, हर रिश्ते में खड़ी एक दीवार सी लगती है। कहीं डुबो ही ना दे नाव माझी, कहीं डुबो ही ना दे नाव माझी। अजनबी के हाथ पतवार सी लगती है, जिंदगी बेजार सी लगती है। सांसें भी यहाँ अक्सर उधार सी लगती हैं। अंतिम सत्य, अगली कविता का शीर्षक है अंतिम सत्य। जीत कर अपने मन को छोड़ दी हैं सारी कुंठाएं, जीत कर अपने मन को छोड़ दी है सारी कुंठाएं। सीख लिया है नियंत्रित करना अपनी खींच को, छोड़कर सारी कुंठाएं। सीख लिया है नियंत्रित करना अपनी खींच को, जो निकलती थी अक्सर खुद ही पर। एक अबोला सा बिखर जाता था जो, एक अबोला सा बिखर जाता था जो मेरे अंदर और बाहर। सीख लिया है शायद मैंने मन में इधर उधर शब्दों को जोड़ना, सीख लिया है मैंने मन में इधर उधर बिखरे शब्दों को जोड़ना। विचलित करते भावों को मीठी सी फटकार लगाकर और जिम्मेदारियों की ओर मोड़ना, विचलित करते भावों को मीठी सी फटकार लगाना और जिम्मेदारियों की ओर मोड़ना। शायद बढ़ चली हूं मैं विसर्जन के उस मार्ग पर जो अंतिम सत्य है जीवन का, बढ़ चली हूं अब मैं विसर्जन के उस मार्ग पर जो अंतिम सत्य है जीवन का। मेरी अगली कविता का शीर्षक है पंछी। सांझ ढलने लगी है, सांझ ढलने लगी है, थका मांदा सा हर पंछी लौट रहा है अपने अपने नीड़ को। सांझ ढलने लगी है, थका मांदा सा हर पंछी लौट रहा है अपने अपने नीड़ को। ज्यों ज्यों बढ़ता है घर की तरफ थकान बढ़ने लगती है, ज्यों ज्यों बढ़ता है घर की तरफ थकान बढ़ने लगती है। वजह लौटने की मेहनत नहीं, वजह लौटने की मेहनत नहीं, वो इंतजार करते अपने जिनकी आगोश में बस समाना चाहता है थका मांदा सा हर पंछी। वो इंतजार करते अपने जिनकी आगोश में बस समाना चाहता है थका मांदा सा हर पंछी। अगली कविता है अधूरा शब्द। अधूरा शब्द अपने आप में अपूर्णता का एहसास दिलाता हुआ चला आ रहा है सदियों से। अधूरा शब्द अपने आप में अपूर्णता का एहसास दिलाते हुए चला आ रहा है सदियों से, और जूझता रहा है पूर्णता के लिए, और जूझता रहा है पूर्णता के लिए। आखिर कब खत्म होगा ये अभिशाप, आखिर कब खत्म होगा ये अभिशाप। मनुष्य से जुड़ी है अपूर्णता इस कदर, मनुष्य से जुड़ी है अपूर्णता इस कदर, अटूट रिश्ते से कि दो अधूरे मनुष्य मिलकर भी नहीं बन पाते पूरे, कि दो अधूरे मनुष्य मिलकर भी नहीं बन पाते पूरे।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे साहित्य सुधा के अंतर्गत कविता पाठ पूजा अग्रवाल द्वारा। यह आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है।

यह आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर अर्थात 531 किलो हर्ट्स पर लीजिए। प्रस्तुत है कार्यक्रम चर्चा का विषय, जो कि हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा।

0: चर्चा का विषय है।
1: सीमाएं सिर्फ नक्शों पर खींची गई रेखाएं नहीं होती, ये किसी देश की पहचान होती हैं, उसकी सुरक्षा, उसकी संस्कृति और उसके भविष्य की सबसे मजबूत दीवार होती हैं। लेकिन जब इन्हीं सीमाओं को पार कर अवैध घुसपैठ देश के भीतर प्रवेश करती है तो सवाल सिर्फ सुरक्षा का नहीं रह जाता, सवाल उठता है जनसंख्या संतुलन का, सामाजिक ढांचे का, रोजगार, संसाधनों और राष्ट्रीय पहचान का। क्या बदलती जनसंख्या तस्वीर भारत के सामाजिक और आर्थिक ताने बाने को प्रभावित कर रही है? क्या सीमाओं से शुरू होने वाली ये चुनौती अब शहरों और गांवों तक पहुंच चुकी है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आने वाले वर्षों में ये भारत की आंतरिक सुरक्षा और सामाजिक स्थिरता के लिए गंभीर संकट भी बन सकती है? इन्हीं महत्वपूर्ण सवालों पर आज हम चर्चा करेंगे हमारे विशेष कार्यक्रम चर्चा का विषय है में। मैं हूं आनंद श्रीवास्तव। हमारा आज का विषय है जनसंख्या परिवर्तन का सामाजिक आर्थिक ढांचे पर प्रभाव। आज हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक प्रफुल्ल केतकर और सीमा सुरक्षा की चुनौतियों को बेहद करीब से देखने वाले पूर्व बीएसएफ प्रमुख और असम के पूर्व डीजीपी प्रकाश सिंह। आप दोनों का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
2: जी नमस्कार।
3: नमस्कार
1: प्रकाश जी, आपसे ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो सबसे बड़ी चुनौती इस समय भारत के सामने है वो दूसरे देशों से आए लोग हैं। दो तरह के लोग हैं, एक शरणार्थी हैं और दूसरे घुसपैठिए हैं। इसको लेकर जो हमारे बॉर्डर स्टेट हैं वहां पर कई तरह की समस्याएं देखने को मिल रही है। क्या लगता है, चूंकि आप खुद बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के प्रमुख रह चुके हैं, असम एक ऐसे राज्य के आप डीजीपी थे जहां पर इस तरह की बहुत बड़ी समस्या है, कैसे देखते हैं आप इसे भारत के नजरिए से?
3: देखिए, भारत के नजरिए से तो बहुत साफ है और अलग अलग समय पे बड़े बड़े हस्तियों ने इस विषय पे रोशनी डाली है कि ये देश के सामाजिक ढांचे के लिए, देश की अर्थव्यवस्था के लिए और देश की सुरक्षा के लिए, तीनों ही दृष्टिकोण से ये बहुत बड़ी चुनौती है और बहुत बड़ा खतरा है। घुसपैठिए जो है आज से नहीं, ये स्वतंत्रता के बाद से, इंडिपेंडेंस के बाद से ही शुरू हो गया था। पर यह है कि इसकी प्रक्रिया अगर हम 1971 के बाद देखें, 1971 में बांग्लादेश बन गया तो उसके पहले जो कुछ उत्पीड़न हुआ था पाकिस्तान आर्मी द्वारा, उस समय आप जानते हैं लाखों की तादाद में बांग्लादेशी आए थे और यहाँ पे उन्होंने शरण ली थी। बाद में बहुतों को वापस भेजा गया, कुछ गए, शायद कुछ नहीं भी गए होंगे। परंतु 1971 के बाद भी ये समस्या ऐसा नहीं है कि इसका समाधान हो गया। हम लोग ये समझते थे कि अब ये बांग्लादेश इंडिपेंडेंट हो गया और भारत के सहयोग से हुआ है तो अब हिंदू वहां पे सुरक्षित अपने आप को महसूस करेंगे, मुस्लिम तो वहां पे रहेंगे। परंतु बहुत सारे कारण ऐसे हुए जिसकी वजह से ये घुसपैठ की समस्या बराबर बनी रही। सबसे बड़ा कारण जो था आर्थिक था, वो बांग्लादेश तो बन गया पर उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि वो इतनी बड़ी जनसंख्या को सबको एम्प्लॉयमेंट दे सके, सबको रोजी रोटी की व्यवस्था हो सके। नतीजे ये हुए कि आर्थिक कारणों से बहुत भारी संख्या में 1971 में बांग्लादेश के बनने के बाद भी यहाँ पलायन होता रहा, लोग आते रहे सीमा पार से और जितने बॉर्डरिंग स्टेट से वहां पे बढ़ते गए। इस समस्या से सारी सरकारें अवगत थी। आपको याद होगा कारगिल युद्ध के बाद चार टास्क फोर्सेस बनी थी बॉर्डर की समस्या देखने के लिए, इंटरनल सिक्योरिटी की, डिफेंस की, इंटेलिजेंस की, और चारों टास्क फोर्स बड़े हाई पावर्ड बॉडीज थी। इसमें एक बॉर्डर मैनेजमेंट वाली जो बॉडी थी वो माधव गोडबोले उसका नेतृत्व कर रहे थे, जो भारत सरकार के गृह सचिव थे और बड़े योग्य आईएएस अधिकारी थे। उन्होंने अपनी रिपोर्ट जो अगस्त 2000 में प्रस्तुत की और उस रिपोर्ट में ये लिखा कि हर वर्ष करीब 3 लाख बांग्लादेशी भारत में घुसपैठ कर रहे हैं और इस समय वर्तमान में 2000 में उनकी संख्या 1,50,00,000 है। ये 2000 की बात है, उसके बाद भी बढ़ता ही रहा होगा। आज की तारीख में 3 करोड़ हो गया हो, 3.5 करोड़ हो गया, कुछ कहा नहीं जा सकता। अलग अलग समय पे भारत सरकार ने इसका अलग अलग एस्टिमेट दिया है। 2001 में एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बना था, ये ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने चारों टास्क फोर्सेज के रिपोर्ट को इवेल्युएट किया था, उसका आकलन किया था और इन्होंने भी बहुत स्पष्ट शब्दों में लिखा था कि इतनी बड़ी संख्या में घुसपैठियों को

0: होना देश की सुरक्षा, सामाजिक सौहार्द और अर्थव्यवस्था के लिए बहुत बड़ा खतरा है। फिर बाद में आ जाइए 2005 में सुप्रीम कोर्ट के सामने ये मामला गया, सोनोवाल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया केस था एक 2005 में, उसमें उन्होंने कहा था कि दिस इज ए डेमोग्राफिक एग्रेशन और एक्सटर्नल एग्रेशन में इसको उन्होंने क्लासिफाई किया था, ये एक्सटर्नल एग्रेशन है ऑन इंडिया, और कहा था इसके लिए भारत की संप्रभुता, अखंडता और आंतरिक सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। तो ये समस्या आज से नहीं, बहुत पहले से चली आ रही है। और अगर आप और पहले जाना चाहें तो 1998 में जब जनरल सिन्हा आसाम के राज्यपाल थे तो उन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को 8 नवंबर 1998 में एक रिपोर्ट भेजी थी जिसमें लिखा था कि असम में जो घुसपैठ हो रही उससे जनसंख्या में जो परिवर्तन हो रहे हैं, हो सकता है कि कालांतर में मतलब बहुत कुछ वर्षों बाद बांग्लादेश ये मांग करे कि असम के जो सीमावर्ती मुस्लिम बाहुल्य प्रदेश हैं इन्हें बांग्लादेश में मिला दिया जाए क्योंकि ये मुस्लिम मेजोरिटी डिस्ट्रिक्ट हो गए। तो ये तो स्थिति है, ये आज से नहीं, कम से कम 1998 से बराबर एक चेतावनी हमको मिल रही है। अब 26-27 साल हो गए हैं, वर्तमान सरकार को इस बात का श्रेय तो हम देंगे कि इन्होंने इस समस्या की नोटिस ली है और मोदी जी ने अपने इंडिपेंडेंस डे के स्पीच में कहा है कि एक डेमोग्राफिक कमीशन बनाएंगे तो इस समस्या को गंभीरता से उसको स्टडी करके अपने रिकमेंडेशन देंगे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कई अवसरों पर कहा है कि घुसपैठिए राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है।
2: जब डेमोग्राफी परिवर्तन होता है, सीमावर्ती क्षेत्रों में डेमोग्राफी में परिवर्तन होता है, तब राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए संकट पैदा होता है। देश की एकता, अखंडता और प्रगति के लिए ये संकट पैदा, सामाजिक तनाव के बीज बो देता है और कोई देश अपना देश घुसपैठियों के हवाले नहीं कर सकता है, दुनिया का कोई देश नहीं कर सकता है। तो हम भारत को कैसे कर सकते हैं? हमारे पूर्वजों ने त्याग और बलिदान से आजादी पाई है, हमें स्वतंत्र भारत दिया है, उन महापुरुषों के प्रति हमारा कर्तव्य है कि हम हमारे देश में ऐसी हरकतों को स्वीकार न करें, उनकी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और इसलिए मैं आज लाल किले की प्राचीर से कहना चाहता हूं, हमने एक हाई पावर डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया है। इस मिशन के द्वारा ये जो भीषण संकट नजर आ रहा है, भारत पे मंडरा रहा है जो संकट है, उसको निपटाने के लिए तय समय में सुविचारित सुनिश्चित रूप से अपने कार्य को करेगा, उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं।
1: जी हाँ, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2025 को उच्च स्तरीय जनसांख्यिकी मिशन की घोषणा की थी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 11 सितंबर 2025 को इस प्रस्ताव को मंजूरी दी और अब न्यायमूर्ति प्रकाश प्रभाकर नवेलकर सेवानिवृत्त समिति के अध्यक्ष होंगे। जनगणना आयुक्त के अतिरिक्त 3 विशिष्ट विशेषज्ञ श्री दुर्गा शंकर मिश्रा सेवानिवृत्त IAS, श्री बालाजी श्रीवास्तव सेवानिवृत्त IPS और डॉक्टर शमिका रवि समिति के सदस्य होंगे और गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव भी समिति के सदस्य सचिव होंगे। ये समिति एक वर्ष के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। आवश्यकता पड़ने पर गृह मंत्रालय समिति का कार्यकाल 6 महीने तक बढ़ा सकता है। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो 15 अगस्त 2025 को घोषणा की थी उच्च स्तरीय कमेटी की, अब उसका गठन हो गया है और घुसपैठियों के बुरे दिन की शुरुआत भी इसी के साथ हो गई है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
3: भारत सरकार ने ये तय किया है कि हम न केवल घुसपैठ को रोकेंगे, एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर देश के बाहर निकालेंगे और हमारी जनसांख्यिकी में अकुत्रिम बदलाव नहीं होने देंगे। ये जो जनसांख्यिकी का बदलाव करने का षड्यंत्र है, इसको सीमा सुरक्षा बल ने रोकना है। और आज मैं बड़ी शांति से, निश्चिंत मन से आपको कह रहा हूं कि अब त्रिपुरा, आसाम और पश्चिम बंगाल तीनों जगह ऐसी सरकारें हैं जो नीतिगत रूप से मानती है कि देश में घुसपैठ नहीं होनी चाहिए।
1: प्रफुल्ल जी, आपसे ये समझने की कोशिश करेंगे कि सीमावर्ती जिलों और देश के कुछ चुनिंदा महानगरों में अचानक आई इस जनसांख्यिकी बदलाव के संकेत जो मिल रहे हैं, क्या आपको लगता है कि सामाजिक और सांस्कृतिक ताने बाने को ये प्रभावित कर रहा है?
4: जी निश्चित, वैसे तो ये अचानक नहीं आया है, लेकिन समस्या के रूप में अचानक उसको अभी देखा जा रहा है। जैसे हमने हाल ही में देखा, नोएडा में अचानक से एक इरप्शन हुआ मूवमेंट के रूप में, और बहुत सारे सोसाइटीज में, क्रिमिनल एक्टिविटीज में जब भी नाम आता था तो शुरू में इसके बारे में चर्चा जरूर होती थी लेकिन कोई एक्शन नहीं होता था। हमको ये ध्यान में रखना चाहिए, अभी IMDT एक्ट 1983 में बना, उस एक्ट का नाम ही था इलीगल माइग्रेंट्स डिटर्मिनेशन बाय ट्रिब्यूनल। इसका मतलब पहली बार तो समस्या उस समय से शुरू कम से कम मानी गई कि इलीगल माइग्रेंट्स है। अब इसमें दो तरीके के अलग अलग थे, एक जो 1971 से पहले या 1971 के बाद, फिर 1990 के दशक में भी, 92 के बाद खासकर

0: के अयोध्या के आंदोलन के रिएक्शन में वहां पे जो मंदिर गिरा गया, और केवल हिंदू ही नहीं, हिंदू बुद्धिस्ट वहां की सो कॉल्ड जिनको हम माइनॉरिटीज बांग्लादेश के संदर्भ में कह सकते हैं, ऐसे लोग भारत में उनको शरण लेनी पड़ी, जिनके लिए सीएए जैसा प्रावधान करना पड़ा। लेकिन दूसरा एक बहुत बड़ा वर्ग था जिसने इलीगल इमिग्रेंट्स की या इलीगल माइग्रेशन की एक बहुत बड़ी इकोनॉमी इसके आधार पर खड़ी कर दी। प्रकाश सिंह जी ने जैसे बताया, कुछ कारण तो पर्यावरणीय, कुछ कारण आर्थिक भी रहे होंगे, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं, आप यदि इंटरनेशनल इंडेक्स निकाल लो तो बहुत सारे पैरामीटर्स में असम के सीमावर्ती जिले या बंगाल के सीमावर्ती जिले उनकी तुलना में बांग्लादेश की इकोनॉमी उस समय बहुत अच्छा कर रही थी। तो ऐसे में उनको क्या माइग्रेट होने की जरूरत पड़ी? मुझे लगता है कि इसके पीछे आर्थिक और पर्यावरणीय एनवायरमेंटल कारणों की वजह से, क्योंकि कुछ हिस्से ऐसे है बांग्लादेश के जहां पे बाढ़ की स्थिति आती है और वहां से माइग्रेशन होता है, लेकिन मुझे लगता है कि इसके पीछे एक सोची समझी राजनीति थी, एक सोची समझी रणनीति भी थी। काउंटरफिट करेंसी का एक बहुत बड़ा नेटवर्क, जब कालियाचक की पुलिस चौकी को जलाया गया था बंगाल में, तो उस समय उजागर हुआ था। ये साफ साफ दिखाता है, या इलीगल जो आर्म्स का ट्रेडिंग है उसका एक इम्पोर्टेंट रूट रहा है, ड्रग ट्रैफिकिंग का ये एक इम्पोर्टेंट रूट रहा है। यही रास्ता है जहां म्यांमार से बांग्लादेश में गए हुए रोहिंग्या रेफ्यूजीज भी सीधे आकर उसी रूट से कोई जम्मू कश्मीर तक, कोई हैदराबाद तक पहुंच गया। वो यदि रेफ्यूजी थे तो वो वहीं पे शरण ले सकते थे, उनको जम्मू कश्मीर तक जाने की क्या जरूरत थी? किसने पहुंचने के लिए उनको मदद की? उनके कार्ड्स भी बन जाते थे वहां, बॉर्डर क्रॉस करने से पहले उनको सारे आधार कार्ड और डॉक्यूमेंट्स बनाने की प्रक्रिया एक चलाने का प्रयास शुरू हुआ, और उसके बहुत सारे नेटवर्क भी भारत के अन्य शहरों से एक्सपोज हुए। क्या हुआ दुर्भाग्य से, 1980 के बाद, मुझे याद है उस समय ममता बनर्जी का एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट पार्लियामेंट में था 2005 में शायद, और उस समय वो लेफ्ट गवर्नमेंट को और बुद्धदेव भट्टाचार्य को घेर रही थी, और उस समय वो पूछ रही थी कि कब तक इन इलीगल माइग्रेंट्स को वोट बैंक बनाकर अपने लिए पोसोगे। दुर्भाग्य से वही ममता बनर्जी बाद में वही नीति आगे बढ़ाने लगी, तो सामाजिक ताना बाना बिगड़ता है, वहां की सांस्कृतिक स्थिति खराब होती है, वहां के रिसोर्सेस पर अतिरिक्त भार पैदा होता है, और ये इलीगल एक्टिविटीज को बढ़ावा भी मिलता है। तो एक समग्र दृष्टि से आंकड़े अलग अलग होंगे, क्वेश्चन ये है कि पहली बात, किस कारण से इसको बढ़ावा मिला, दूसरा उसको रोकने की, तीसरा जो भारत में आ गए है उनको आइडेंटिफाई करने की। तो डिटेक्शन इज द फर्स्ट स्टेज, एक्सेप्टेंस एंड डिटेंशन जब तक डिटेक्ट नहीं होंगे उसके बाद तो बाकी सारी प्रोसेस आएंगी कि उनको वोटर्स लिस्ट से डिलीट करना है या डिपोर्ट करना है, ये तो बाद की स्टेज है। उनको वर्क परमिट्स भी दिए जा सकते हैं, लेकिन कम से कम आइडेंटिफाइड हो कि विदेशी मूल का नागरिक है, बिना पासपोर्ट के आया है, और हमारे पास उसका एक ठोस डेटा है। और पूरे विश्व भर में ये होता है, उसमें भारत को अलग से कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। हमने यदि बांग्लादेश और पाकिस्तान, ये दो अलग अलग बॉर्डर्स पार्टीशन के बाद एक्सेप्ट किए हैं, तो वैश्विक नियमों के अनुसार उनको भारत में आना है तो वीजा लेकर ही आना चाहिए, लीगल तरीके से ही आना चाहिए, इलीगल इन्फिल्ट्रेशन उसका रास्ता नहीं हो सकता। तो इसके नेटवर्क को डिसमेंटल करना, ये राष्ट्रीय सुरक्षा और सामाजिक सांस्कृतिक आधार पर भी एक महत्वपूर्ण विषय है, और मुझे लगता है आने वाले समय में ये जो समिति बनी है वो उस दिशा में एक साल के अंदर समग्र रिपोर्ट भी देगी और इसके आधार पर नीति भी बनेगी।
1: जी हां, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा है कि शरणार्थी और घुसपैठियों को अलग अलग तरह से देखना चाहिए, क्योंकि दोनों के साथ अलग तरह की चुनौतियां हैं। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
2: शरणार्थी और घुसपैठिया दोनों को एक पेज पर रखकर नहीं सोचना चाहिए। जो हमारे संविधान को जानते हैं, जो हमारे इतिहास को जानते हैं, हमारे देश की राजनीतिक इतिहास को जानते हैं, उन्होंने कम से कम ये गलती नहीं करनी चाहिए। हमारा संविधान बहुत स्पष्ट है, घुसपैठ कर आते हो, अलग अलग उद्देश्यों से आते हो, तो आपको जरूर घुसपैठे का लेबल लगेगा, और वो लगाना चाहिए शासन में। फिर कुछ लोग दलील करते हैं कि अगर वो भारत में ही रहना चाहते हैं तो हम क्यों सीमित करते हैं। कुछ सीमित नहीं करते हैं, इसके लिए भी कानून है। किसी भी धर्म का व्यक्ति एप्लीकेशन करे और एप्लीकेशन करके वैध तरीके से पासपोर्ट लेकर वीजा लेकर आए, हम उनके क्रेडेंशियल देखकर उनको नागरिकता देंगे, ये रास्ता खुला ही है। मगर आप अवैध तरीके से घुसपैठ करोगे तो सीमाएं पोरस नहीं हो सकती, सीमाओं से घुसपैठ नहीं होनी चाहिए, और उनको संभालना भी चाहिए।
1: प्रकाश जी चूंकि

0: इन चुनौतियों को आपने काफी करीब से देखा है और अक्सर देखा जाता है कि सीमा पार करने के बाद जो घुसपैठिए हैं वो स्थानीय आबादी में घुल मिल जाते हैं। सुरक्षा बलों और स्थानीय राज्य पुलिस या खुफिया एजेंसियों के बीच जो तालमेल है उसको आप कैसे देखते हैं इस समस्या के निराकरण में?
1: देखिए, ये तालमेल तो बहुत जरूरी है, पर मेरा अपना अनुभव यह है कि जो सिक्योरिटी एजेंसीज है अगर वो डिटरमिंड है तो इसका बहुत तरह से उपाय है। मैंने एज आईजी बीएसएफ पंजाब कुछ ऐसा काम किया है जिसको 25 साल तक तो उसको गोपनीय रखा मैंने, उसके बाद उसकी किताब में मैंने खोल कर रख दिया। बहुत सारे भारी बांग्लादेशी जो थे, भारी मुसलमान बांग्लादेश से चलते थे और वो पंजाब में आ जाते थे और पंजाब में गुरुद्वारों में लंगर खाते थे, फिर जब उनको मौका मिला तो बॉर्डर पार करते थे। अब मेरे जाने के पहले बीएसएफ क्या करती थी, उसको बॉर्डर पे रोकती थी, उनको पंजाब पुलिस को हैंडओवर करती थी, पंजाब पुलिस दो चार दिन रखते थे, उसके बाद कहते थे हम आतंकवाद से लड़ें कि इनको कलकत्ते पहुंचाएं, ये छोड़ दो इनको, फिर थोड़े दिन बाद फिर वो वापस जा रहे हैं। तो मैंने अपने जिम्मेदारी पे बिना किसी होम मिनिस्ट्री के सैंक्शन के चिदम्बरम साहब से जब मैंने पूछा तो उनका यू बी डूइंग दिस एट योर ओन रिस्क, आई कैन नॉट परमिट दैट ऑफिशियली। मैंने अपनी कहा जितने लोग हैं इनको अपने बीएसएफ के कैंप्स में रात भर रखो और जब अंधेरी रात हो तो इनको सीमा पार से इनको पाकिस्तान भेज दो। मैंने कम से कम 25-30 हजार आदमी तो भेज दिए। इसका उपाय हर आदमी अपने लेवल पे काम कर सकता है। मैंने पर इसका ढिंढोरा नहीं पीटा, कोई इनाम नहीं मांगा, इसका ढोल नहीं बजाया, चुपचाप ये काम हो गया। फिर 25 साल बाद मैंने कहा कि मैंने इस तरह का काम मैंने किया था। पर यह है कि अभी भी इस समस्या का देखिए कुछ निदान हमें ढूंढना पड़ेगा। कुछ सुझाव तो गोडबोले साहब ने अपनी कमेटी की रिपोर्ट में दे रखा है, मैं कहूंगा कि उस रिपोर्ट को फिर से अध्ययन किया जाए सरकार द्वारा और जिन समस्याओं के लिए डेमोग्राफी कमीशन बन रहा है उन समस्याओं पे गोडबोले साहब ने बहुत गहन चिंतन किया है। इसके अलावा देखिए अभी जैसे प्रफुल्ल जी ने कहा उनको हमें डिटेक्ट करना है, आइडेंटिफाई करके उसके बाद उनको डिपोर्ट करना है। अब डिपोर्टेशन में दिक्कत आ सकती है, बांग्लादेश उसको नहीं मानेगा तो उसका क्या करना होगा ये हमें बाद में देखेंगे। पर अगर मान लीजिए एक संख्या कोई आपने रखी है जो होल्डिंग सेंटर्स बनाए हैं उनको कहिए कि भाई अगर तुम हिंदुस्तान में रहना है तो हम तुम्हें रहने देंगे पर तुम्हें अपना सिटीजनशिप कार्ड या आधार कार्ड तो सरेंडर करना पड़ेगा और तुम्हें एक बांग्लादेश का एक कार्ड दिया जाएगा कि तुम बांग्लादेश के नागरिक हो, इस देश में तुम्हें 2 साल रहने की और काम करने की इजाजत दी जाती है, 2 साल बाद फिर हम इसको रिव्यू करेंगे कि तुम्हारा क्या किया जाए। और पर इन आदमियों को जिनको ये बांग्लादेश का कार्ड जाता है ये हमारे आई कार्ड से रंग में फर्क होना चाहिए, केवल कार्ड को देखकर ही मालूम हो जाए कि ये बांग्लादेश का ये आदमी। और इस आदमी को 2 कंडीशन होनी चाहिए कि तुम हिंदुस्तान में रह सकते हो और अपनी जीविका उपार्जन कर सकते हो परंतु तुम वोट नहीं दे सकते और कोई अचल संपत्ति नहीं खरीद सकते। ये 2 कंडीशन उस पर इम्पोज की जाए और उसको सख्ती से लागू किया जाए कि मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं खरीदोगे और तुम्हारा नाम इलेक्टोरल लिस्ट में नहीं होगा। तो इसमें हमें थोड़ा ह्यूमैनिटेरियन कंसिडरेशन भी रखना पड़ेगा और कालांतर में मैं कहता हूं कि इस पे हमें बांग्लादेश से सख्ती से कहना पड़ेगा, देखिए आपके अभी भी हमारे पास 2.5 करोड़ जितना भारत सरकार का आंकलन हो इतने आदमी है, या तो आप इन्हें वापस लीजिए या इसके बदले में हमें जमीन दीजिए। और वो जमीन हम मांगे ठीक चिकन नेक के अगल बगल रंगपुर डिवीजन में मांगे, हमारा चिकन नेक की समस्या भी हल हो जाएगी और इन आदमियों को हम वहां बसाएं या जहां भी बसाएं, पर हम कहीं इतने आदमियों को रहने के लिए इतने वर्ग फुट हमें जमीन चाहिए, इतनी जमीन आपको देना पड़ेगा, तो सख्ती तो करनी पड़ेगी या तो इनको वापस लो। तो एक स्ट्रिक्ट लाइन ऑफ एक्शन लेना पड़ेगा हमें और उसकी भी शायद नौबत कालांतर में आएगी। पर यह है कि इस समस्या का हमें निदान ढूंढना है वरना ये तो हमारे ऊपर बोझ है आज की तारीख में।
0: जी प्रफुल्ल सर, आपसे ये समझना चाहेंगे कि जो अवैध रूप से जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं जब स्थानीय श्रम बाजार यानी लेबर मार्केट में शामिल होते हैं तो रोजगार, सब्सिडी, राशन और स्वास्थ्य सेवाओं जैसे सीमित सरकारी संसाधनों पर इसका जो असर पड़ रहा है वो एक राज्य सरकार और केंद्र सरकार के लिए चुनौती है और वो कितनी गंभीर समस्या बनते जा रही है भारत जैसे देश में जहां की आबादी 140 करोड़ से ज्यादा है।
2: देखिए, आज की भाषा में जैसे कहा जाता है कि डेमोग्राफी इज डेस्टिनी, और डेमोग्राफी इज डेस्टिनी ये मोर रिलेवेंट हो जाता है जब आपकी डेमोक्रेसी, क्योंकि उस डेमोक्रेसी में आपको सरकार चुनने का भी अधिकार मिल जाता है और उस सरकार से दिए हुए योजनाओं का लाभ लेने का भी। मैं उस पर आऊंगा लेकिन उससे पहले और एक बिंदु मैं श्रोताओं के लिए स्पष्ट कर देना चाहता हूं।
0: जी
2: 1983 में जो आईएमडीटी एक्ट बना, जनरल सिन्हा की रिपोर्ट में उस पर बहुत डिटेल में ये दिया था और वेंकैया नायडू उस समय मंत्री थे, मुझे स्मरण है, शायद ठीक बता रहा हूं, तो उन्होंने पार्लियामेंट में उसको लेकर स्टेटमेंट भी दिया था, गोडबोले कमेटी ने भी उसका रेफरेंस लिया था। आईएमडीटी एक्ट ने एक बहुत बड़ा लूपहोल था। आईएमडीटी एक्ट में जो इलीगल व्यक्ति जो आया है वहां से उसको अपनी नागरिकता प्रूव करने का कोई भी बंधन नहीं था। जो कंप्लेन उसके विरोध में करेगा कि ये बाहर से आया हुआ है और ये भारत का नागरिक नहीं है, उस पर ओनस था कि वो ये प्रूव करे कि ये भारत का नहीं है। और ऐसे में भारत

0: में स्वाभाविक रूप से मानसिकता होती है और इसने भारत में कॉम्पिटिटिव वोट बैंक पॉलिटिक्स को जन्म दिया। शायद मुझे पता नहीं है जानबूझकर रखा गया था उस समय का उसका क्या लॉजिक था, क्या कारण थे, लेकिन इसने इस समस्या को बढ़ाया। अब आपने जो पूछा कि सरकार की योजनाएं हो, चाहे वो खाद्यान्न से जुड़ी हुई हो या अन्य योजनाओं का लाभ हो, इन सबके लिए अल्टीमेटली बेनिफिशियरी कौन होता है, जिसका हक ये मारते हैं? भारत का जो गरीब तबका है उसके अधिकारों का, उनके रिसोर्सेस का एक तरीके से ये इलीगल माइग्रेंट जो है, जो रोजगार के नाम पर या अन्य किसी नाम पर आते हैं, मैं नहीं मानता रोजगार पर, भारत के लोग नहीं जाते क्या रोजगार के लिए बाहर? लेकिन क्या वो इलीगल बाउंड्री क्रॉस करके जाते हैं? बाउंड्री क्रॉस करके जाते हैं तो भी भारत उनको स्वीकार करता है। ऐसी कुछ घटनाएं बाहर के देशों में हुई तो हमने कहा कि भाई हम उनको कोई भारत बढ़ावा नहीं देता है। तो हमको वही नीति हमारे पड़ोसी देशों के बारे में या भारत और नेपाल के बीच में बहुत सारे लोग आते जाते हैं, लेकिन उसके लिए भी एक प्रावधान बना हुआ है, एक आई कार्ड दिखाकर वो आते हैं, वर्क परमिट के नाते यहाँ पे रहते भी है। तो मुझे लगता है इसका जो परिणाम होता है वो स्थानिक संसाधनों पर होता है, सरकारी योजनाओं के लाभ लेने के कारण होता है, राष्ट्रीय सुरक्षा पर होता है, और खास करके असम में जो समस्या आई स्थानिक संस्कृति, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारे जंगलों के, और अभी पूर्वोत्तर के बहुत राज्यों में ही आ रहा है जहां पे भारत के सामान्य व्यक्ति को भी जाने के लिए एक परमिट लेना पड़ता है, इनर लाइन परमिट जिसको कहते हैं। बांग्लादेशी घुसपैठिए वहां पर आकर बैठ गए हैं, वहां के जंगल संसाधनों का नुकसान कर रहे हैं। तो ये हमारा मल्टीपल रिसोर्सेस का एक तरीके से एक्सप्लॉयटेशन भी है, उन पर स्ट्रेन भी है। तो मुझे लगता है कि ये भी डायमेंशन हमको, जब हम रिलीजियस इम्बैलेंस तो है ही, वो इम्बैलेंस क्रिएट होता है जिसके कारण समाज में एक तनाव पैदा होता है, लेकिन सांस्कृतिक और आर्थिक साधनों के आधार पर भी ये घुसपैठ बहुत बड़ी समस्या सीमावर्ती क्षेत्र में बनी हुई है, जिसके कारण इस समिति का गठन करना पड़ा है।
1: असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने भी कहा है कि बाहर से आए हुए लोग देश की समस्या के साथ साथ असम के लिए भी एक बड़ी चुनौती बनते जा रहे हैं। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
2: आई थिंक चैलेंज हैज बिकम मोर ग्रेव, दैट डेमोग्राफिक पैटर्न इज चेंजिंग फास्ट। टुडे ऑलमोस्ट 40% ऑफ आवर टोटल पॉपुलेशन विल बी from those who has come from Bangladesh at some point of time. Legalities apart, today Assamese is marginalized in our own land, our culture is marginalized in our own land, economy is fast shifting to those people who were never associated with our culture and with our history. So the challenge continue, but one good thing is that there is a collective spirit today to face the challenge, and I am sure that our new generation will fight, will keep on fighting, and God will bless us, will survive.
1: प्रफुल्ल जी, आप बहुत समय से भारत के अलग अलग विषयों पर पैनी नजर रखते हैं। ये जो समिति बनी है और प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त 2025 को लाल किले की प्राचीर से इसकी घोषणा की थी, क्या लगता है कि इस समिति के बनने से क्या कुछ बदलने वाला है निकट भविष्य में?
0: देखिए, मुझे इसमें सबसे बड़ा जो बदलाव लग रहा है बंगाल के चुनाव के बाद, मुझे लगता है एजेंसीज के बीच में कोऑर्डिनेशन से भी ज्यादा इसमें अलग अलग स्टेट्स की कोऑर्डिनेशन की बड़ी समस्या रहती थी। बांग्लादेश से एंटर कर रहे हैं असम में जा रहे हैं, असम से एंटर कर रहे हैं बिहार तक पहुंच रहे हैं या झारखंड तक पहुंच रहे हैं, और ऐसे में फिर एक राज्य दूसरे राज्य पर ये चीज झकेल देता था कि ये तो हमारी समस्या नहीं है, ये तो आपको रोकना है, और फिर ये वहां का राज्य एक केंद्र पर कि ये तो आपको बीएसएफ के लेवल पर हैंडल करना चाहिए, लेकिन बॉर्डर की जो लैंड है वो पोरस रखेंगे, उसको ट्रांसफर नहीं करेंगे बीएसएफ को। तो ये सारा कॉम्प्लेक्स सिनारियो था। आज अभी राजनीतिक स्तर पर मुझे लगता है प्रधानमंत्री ये निर्णय ले पाए, उसमें एक महत्वपूर्ण कारण आज ये है कि इस सीमावर्ती क्षेत्र में झारखंड छोड़कर लगभग सारे हिस्सों में सत्ताधारी दल एक ही है, और या वो एनडीए का हिस्सा है या भाजपा से जुड़ा हुआ है, तो ऐसे में ये समन्वय, ऐसे ही हुआ था नक्सलवादी समस्या के बारे में, तो तुरंत बॉर्डर क्रॉस करके चले जाते थे, और फिर छत्तीसगढ़ का ये कहता था नहीं मध्य प्रदेश की समस्या है, मध्य प्रदेश वाला कहता था तुम, उसने क्राइम तो हमारे यहाँ पे नहीं किया है, वो तो महाराष्ट्र भाग गया है। तो ऐसे में पहली मीटिंग जब की थी गृहमंत्री, मुझे याद है चारों राज्यों के गृहमंत्री और डीजीपी को लेकर मीटिंग की थी। अब ये समन्वय संभव हो पाएगा केंद्र सरकार ने जब ये समिति बनाई है, तो मुझे लगता है समिति एक तो इसका समग्रता से अध्ययन करेगी, पिछले रिपोर्ट्स के आधार पर इसका एक, जिसको हम कह सकते हैं, क्लियर पिक्चर इसके कारण सामने आएगा। दूसरा, मुझे लगता है कि इसके समस्या के निराकरण के लिए भी

0: नीतिगत सीधा सीधा एक मुझे लगता है कि क्लियर कट पिक्चर सरकार के सामने भी आएगा कि नीतिगत विषय में इसको आगे कैसे बढ़ाना है और समन्वय के नाते कौन कौन सी एजेंसी इसकी क्या क्या भूमिका रहेगी, ये भी स्पष्टता इस समिति के गठन के कारण आने की संभावना है। तो आने वाले जैसे शब्द तीन चले, डिटेक्ट डिलीट एंड डिपोर्ट, लेकिन मुझे लगता है कि कम से कम डिटेक्शन और आने वाले कालखंड में इसको फिर से और आगे ना बढ़े, ये इलीगल माइग्रेशन ना बढ़े, जो है उनको डिटेक्ट करके क्या करना है वो तो है ही, लेकिन वो ना बढ़े इसके लिए क्या हो, इसके लिए निश्चित रूप से हमको एक नीतिगत दिशा मिलने की संभावना इस समिति से बनेगी, यह मेरा विश्वास है।
1: जी हाँ बिल्कुल, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर तालमेल अगर होगा तो इस चुनौती से पार पाया जा सकता है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
2: सिर्फ सीमाओं की सुरक्षा कर हम देश की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर सकते, हमने क्षेत्रीय सुरक्षा का राज्य सरकारों के साथ रहकर चिंता भी करना पड़ेगा और वो जिम्मेदारी का निर्वहन भी करना पड़ेगा। हमारी जिम्मेदारी है कि सीमा से नजदीक 50 किलोमीटर के किसी भी गांव में कोई अवैध निर्माण होता है तो हम सिविल प्रशासन को सूचित कर, कलेक्टर को सूचित करें, एसपी को सूचित करें। हमारी जिम्मेदारी है कि 50 किलोमीटर की बॉर्डर तक के सभी गांवों में जनसांख्यिकी का परिवर्तन हो रहा है, कृत्रिम परिवर्तन हो रहा है, तो उसके प्रति सजग रहकर राज्य सरकार को आगाह करें।
1: प्रकाश जी, एक और सवाल आपसे समझना चाहेंगे कि 2014 के बाद इस समस्या को लेकर वर्तमान केंद्र सरकार ने बहुत सारी कोशिशें की हैं और उसी दिशा में इस समिति का गठन भी है, कैसे देखते हैं पिछले 12 वर्षों के मौजूदा सरकार के प्रयासों को घुसपैठियों और ये जो डेमोग्राफिकल चेंज है इससे पार पाने की दिशा में?
3: देखिये, समस्या की गंभीरता को समझा गया है, उसको स्वीकारा गया है और उसके निदान के लिए कुछ कदम उठाए गए हैं, ये तो यहाँ तक तो सार्थक है। अब हमें अपनी लॉ एनफोर्समेंट मशीनरी से ये काम लेना पड़ेगा और ये काम मतलब वर्तमान सरकार लेने में सक्षम है। उन्होंने नक्सलियों को कहा कि हम मार्च 2026 तक खत्म कर दें, उन्होंने खत्म कर दिया, ठीक है, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है। इस समस्या के लिए भी उनको कुछ टारगेट रखना पड़ेगा और इसकी मंथली ईयरली या क्वार्टरली कुछ इसकी मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी। हम पहले ये एस्टिमेट बनाए कि हर स्टेट में कितने कितने बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, उसके बाद हर स्टेट पे कहें कि इस महीने में आपने इनके खिलाफ क्या कार्रवाई की, इनको कितने को डिटेक्ट किया, कितने होल्डिंग सेंटर में है, किनको डिपोर्ट करने के लिए क्या कार्रवाई की, इसका रेगुलर मॉनिटरिंग होनी पड़ेगी। इसमें सख्ती बहुत जरूरी है, मैं समझता हूं कि वर्तमान सरकार करने में सक्षम है, इन्होंने नक्सल समस्या पे विजय पा ली है तो इस समस्या का भी ये समाधान प्रभावी ढंग से ढूंढ सकते हैं, इसके लिए सख्ती करनी पड़ेगी और मैं समझता हूँ कि सरकार ये सख्ती कर सकती है।
1: प्रफुल्ल जी, कार्यक्रम के अंत में एक और सवाल बहुत संक्षेप में आपसे समझना चाहेंगे कि आज के दौर में जब सोशल मीडिया का जमाना है तो सोशल मीडिया और फेक डॉक्यूमेंट नेटवर्क, आपको क्या लगता है ये घुसपैठ को बढ़ाने में कितनी भूमिका निभा रहे हैं?
0: देखिए, मैंने जैसे पहले कहा कि इसके जुड़ी हुई एक इकोनॉमी है, ये केवल फेक डॉक्यूमेंट नेटवर्क नहीं है, ये फेक करेंसी नेटवर्क है, ये ड्रग ट्रैफिकिंग का नेटवर्क है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का नेटवर्क है, इसमें आर्म्स के ट्रैफिकिंग का नेटवर्क है और एक क्रिमिनल सिंडिकेट के रूप में ये काम करता है। तो मुझे लगता है कि ये निश्चित रूप से जिम्मेदार है और आज के जमाने में सोशल मीडिया इसको एम्पलीफाई करता है ह्यूमैनिटेरियन के नाम पर। जैसे ही ऐसी कुछ केसेस होती है, डिपोर्टेशन के लिए कुछ बात बढ़ती है तो सोशल मीडिया में एक्टिविज्म चलता है, राजनीतिक कारणों से भी चलता है, कुछ धार्मिक कारणों से भी चलता है, कुछ इंटरनेशनल कॉन्स्पिरसीज के द्वारा भी चलता है। तो ऐसे में एक बड़ा मुश्किल हो जाता है किसी भी देश के लिए किसी भी इलीगल माइग्रेंट्स के विरोध में सख्त कदम लेना। और आज जब टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग एक अच्छा उपयोग हो सकता है गवर्नेंस में आइडेंटिफाई करने के लिए, चाहे सीसीटीवी कैमरेज के रूप में, चाहे सेंसर्स के रूप में, हम बहुत सारी चीजों का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन ये सिंडिकेट्स डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग करना, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। तो मुझे लगता है कि जब अननेचुरल डेमोग्राफिक चेंज के बारे में सोचा जाएगा तो इसके टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट्स, मीडिया एक्टिविज्म के एस्पेक्ट्स और अन्य जो इससे जुड़े हुए सिंडिकेट और क्रिमिनल एस्पेक्ट्स है, इस पर भी मुझे लगता है ये समिति सोचेगी भी और उस पर कुछ उपाय योजना भी सरकार को बताएगी।
1: सीमाओं की सुरक्षा सिर्फ जवानों की जिम्मेदारी नहीं होती, ये पूरे राष्ट्र की सामूहिक चेतना का विषय है। जनसंख्या परिवर्तन और अवैध घुसपैठ जैसे मुद्दे केवल आंकड़ों की बहस नहीं है, इनका सीधा संबंध देश की सामाजिक स्थिरता, आर्थिक संसाधनों और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य से है। आज की चर्चा ने यह साफ कर दिया है कि चुनौती केवल सीमा पार से आने वालों की नहीं बल्कि उस सोच की भी है जो राष्ट्रीय हित से ऊपर व्यक्तिगत और राजनीतिक

0: लाभ को रख देती है। जरूरत है सजग नीति की, मजबूत सीमा प्रबंधन की और सबसे बढ़कर जागरूक समाज की। प्रफुल्ल केतकर जी आपका, प्रकाश सिंह जी आपका, आकाशवाणी के इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए बहुत बहुत आभार।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
2: धन्यवाद, नमस्कार।
0: इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
3: चर्चा का विषय है।
4: ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्यनगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर अर्थात 531 किलो हर्ट्ज पर। श्रोताओं, रात्रि के 10 बज चुके हैं। आइए अब सुनते हैं शास्त्रीय संगीत। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज सुनते हैं पंडित बसंत काबरा से सरोद वादन। सबसे पहले पंडित बसंत काबरा सरोद पर राग भैरव प्रस्तुत कर रहे हैं, जो कि झप ताल में निबद्ध है। तो आइए सुनते हैं।

अभी आप सुन रहे थे पंडित बसंत काबरा से सरोद वादन। लीजिए अब सुनते हैं हरिप्रसाद चौरसिया द्वारा बांसुरी वादन। हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी पर राग शुद्ध नट प्रस्तुत कर रहे हैं। तबले पर संगत कर रहे हैं अनिदो चैटर्जी और बांसुरी पर संगत कर रहे हैं रूपक कुलकर्णी।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे हरिप्रसाद चौरसिया से बांसुरी वादन। आइए अब सुनते हैं जाकिर हुसैन से तबला वादन, राग चंपाकली है जो कि स्वरी ताल में निबद्ध है।

Tuck a dick,

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे जाकिर हुसैन द्वारा तबला वादन राग चंपा कली, जो कि स्वर स्वरी ताल में निबद्ध थी। और इसी के साथ शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है, मीडियम वेव 564.97 मीटर अर्थात 531 किलो हर्ट्स पर। श्रोताओं, रात्रि के 11 बजने वाले हैं। आइए सुनते हैं हिंदी में समाचार, उसके पश्चात अंग्रेजी में समाचार, जो कि हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। कृपया करें थोड़ी सी प्रतीक्षा।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं चंद्रशेखर शर्मा। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने आज सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक पीडीएस को जारी रखने की अनुमति दे दी है। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण में सहयोग करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर देते हुए कहा कि यह अभियान केवल बुनियादी ढांचे के निर्माण तक सीमित न रहे बल्कि नियमित निगरानी जनभागीदारी और विभिन्न पक्षों के समन्वय से ठोस परिणाम सुनिश्चित किए जाएं। नई दिल्ली में आज 51वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रधानमंत्री ने राज्यों से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी परियोजनाओं जैसे कचरा प्रसंस्करण और गोवर्धन संयंत्रों को तेजी से पूरा करने को कहा। बैठक में रेलवे बिजली और सड़क क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए लागत वाली 7 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा की गई। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि निर्वाचन आयोग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुच्छेद 324 और उसके अधीन निर्मित नियम के अंतर्गत एसआईआर कराने का अधिकार रखता है। एक रिपोर्ट।
1: मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की एक पीठ ने उन याचिकाओं पर फैसला सुनाया जिनमें पिछले साल जून महीने में चुनाव आयोग द्वारा बिहार में एसआईआर आयोजित करने के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। फैसले में कहा गया कि विवादित प्रक्रिया को केवल अमान्य नहीं कहा जा सकता है क्योंकि ये नियमित पुनरीक्षण के लिए निर्धारित सामान्य तौर तरीकों के अनुरूप नहीं है। इसलिए नहीं कहा जा सकता है कि निर्वाचन आयोग ने अपनी वैधानिक शक्तियों से अधिक कार्रवाई की है। समाचार कक्ष वैष्णवी।
0: भारतीय जनता पार्टी ने सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले का स्वागत किया है। पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में इस निर्णय को कांग्रेस समेत विपक्ष की संवैधानिक पराजय बताया।
2: सर्वोच्च न्यायालय ने एसआईआर यानी विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया को पूर्णतः संविधान सम्मत स्वीकार कर दिया है। राजनीतिक पराजय के बाद अब यह विपक्ष और विशेषकर कांग्रेस पार्टी की संवैधानिक धरातल पर भी यह पराजय हुई है।
0: असम विधानसभा ने आज समान नागरिक संहिता विधेयक पारित कर दिया। इसके साथ ही असम ऐसा कानून पारित करने वाला पूर्वोत्तर का पहला और देश का तीसरा राज्य बन गया है। इस विधेयक को विधानसभा के पहले सत्र में सोमवार को पेश किया गया था। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने नीट यूजी पेपर लीक मामले में आज 3 और लोगों को गिरफ्तार किया। इनमें महाराष्ट्र के लातूर का एक डॉक्टर और पुणे स्थित कोचिंग संस्थान का एक शिक्षक शामिल है। जांच एजेंसी ने पुणे के ही एक अन्य कोचिंग संस्थान के भौतिक विज्ञान शिक्षक को भी गिरफ्तार किया है। इस मामले में अब तक कुल 13 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल गंगटोक के पालजोर स्टेडियम में सिक्किम पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित करेंगी। इस सम्मान को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां और पूर्वोत्तर क्षेत्र का तीसरा राज्य होगा। राष्ट्रपति पुलिस ध्वज देश में किसी पुलिस बल को दिया जाने वाला सर्वोच्च औपचारिक सम्मान है। राष्ट्रपति ने ईद उल जुहा के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि यह पर्व समर्पण त्याग और निस्वार्थ भावना का प्रतीक है। मौसम विभाग ने कहा कि अगले 2 से 3 दिनों तक मध्य और उत्तर पश्चिमी भारत में लू की स्थिति बनी रहेगी। विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल लू का रेड अलर्ट जारी किया। दिल्ली चंडीगढ़ राजस्थान छत्तीसगढ़ हरियाणा हिमाचल प्रदेश कोंकण गोवा ओडिशा पंजाब तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में भी कल लू का प्रकोप बना रहेगा। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के कई भागों में भीषण गर्मी और लू के मद्देनजर जरूरतमंद वरिष्ठजन और बच्चों का विशेष ध्यान रखने की अपील की है। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 के लिए उच्च शिक्षा विभाग ने नामांकन आमंत्रित किए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

101.97 मीटर अर्थात 531 किलो हर्ट्ज पर। श्रोताओं, रात्रि के 11:10 हो चुके हैं। हमारी आज की प्रसारण सभा अब यहीं समाप्त होती है। कल सवेरे 5:51 पर आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद।